सुप्रभात। FM के 101.7 MHz पर आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948, भाद्र माह की तिथि 6, तदनुसार 28 अगस्त ईस्वी सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

ये आकाशवाणी का चाय भाषा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि अभी 1500 से अधिक लोग लापता हैं, जिनमें कई विदेशी नागरिक शामिल हैं। लापता लोगों में 30 से अधिक देशों, मुख्य रूप से भारत, अमेरिका, मलेशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी और रूस के लोग शामिल हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि प्रभावित इलाकों से लगभग 1500 से अधिक लोगों को बचाया गया है, इनमें घायल लोग भी शामिल हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद के बाद प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक अहम पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में आज ही के दिन की थी। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली के कृषि

वन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। भाई भी अपनी बहनों को उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने रक्षाबंधन के पर्व पर देशवासियों को बधाई दी है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ संपन्न होगी। 57 दिन तक चली ये यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। यात्रा का समापन पवित्र गुफा मंदिर में महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में पवित्र छड़ी मुबारक के पहुंचने के साथ होगा। इस वर्ष पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से 4,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने ये यात्रा पूरी की है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और बिहार में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। खेलों में हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने नीदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया है। वर्ष 1974 में हुए पहले विश्व कप में चौथा स्थान हासिल करने के बाद ये भारतीय महिला टीम का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

शोक संताप और ग्लानी के सागर में डूबते उतराते सुमंत्र ने सारा दिन अयोध्या नगरी के बाहर एक पेड़ की छांव में बैठकर बिताया। जब शाम का अंधकार घिरने लगा तो उन्होंने नगर में प्रवेश किया। महामंत्री का अकेले वापस आना सुनकर रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल प्रेतों के निवास स्थल जैसे लगने लगे। सुमंत्र को मौन तथा व्याकुल देखकर रानी कौशल्या उन्हें अपने महल में लिवा ले गईं। वहां का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक है। आभूषण रहित मलिन राजा दशरथ धरती पर पड़े हैं। वाणी के नाम पर हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी मात्र यही शब्द सुनाई पड़ते हैं। सुमंत्र ने जय जीव कहकर प्रणाम किया तो राजा ने उठकर उन्हें हृदय से लगा लिया।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री राम चरित मानस गान महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में। जय श्रोताओं, हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम समर्पण में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आप सबों को आकाशवाणी चायवासा की ओर से रक्षाबंधन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब श्रोताओं, आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में ये भजन।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में ये भजन, और अब आइए सुनते हैं ओम व्यास के स्वर में ये रचना।

श्रोताओं, ये रचना आप सुन रहे थे ओम व्यास के स्वर में। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। और अब आइए सुनते हैं अनूप जलोटा के स्वर में ये भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब आइए जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर बाद यानी सवेरे 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप आनंद ले सकेंगे आनंद मोहन पाठक के स्वर में संगीत रचनाओं का। सवेरे 7 सुनिएगा कार्यक्रम जोहार चाईबासा। सवेरे 8 समाचार प्रभात का प्रसारण होगा आकाशवाणी दिल्ली से। यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे सवेरे 8:15 पर। उसके बाद आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण होगा सवेरे 8:30 पर। उसके बाद हमारे केंद्र से आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक। इस कार्यक्रम में आज आप आनंद ले सकें कुरमाली लोकगीतों का कलाकार होंगे लालू महतो और साथी सवेरे 8:40 पर। श्रोताओं, सवेरे 9 सुनिएगा कार्यक्रम विविधा। सवेरे 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। सवेरे 10 सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। सवेरे 10:30 से आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण। यहीं से 1:10 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। 1:20 पर आकाशवाणी रांची के अन्य कार्यक्रम। दिन के 2:55 पर प्रादेशिक समाचार। दिन के 3 आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। शाम 4 मुख्य समाचार। शाम 4:02 पर आकाशवाणी रांची के अन्य कार्यक्रम। शाम 5 मुख्य समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से। श्रोताओं, हमारे केंद्र से शाम 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। शाम 5:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे एक ही गीतकार द्वारा लिखे गए फिल्मी गाने। श्रोताओं, शाम 5:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम

कार्यक्रम खेती गृहस्थी। इसमें आज की चर्चा का विषय होगा बागवानी एवं कृषि में खरपतवार नियंत्रण। मनोरंजन कीजिएगा पंच परगनिया लोकगीत से प्रताप चंद्र सिंहदेव और साथियों के स्वरों में। भेंटवार्ता का आज का विषय होगा कंदवर्गीय सब्जियों की खेती। भेंटवार्ताकार होंगे गुरुचरण नायक, उनसे बातें कर रहे होंगे कमलेंदु महतो। साथ ही आप आनंद ले सकेंगे उड़िया लोकगीत का सुरोबी पान और साथियों के स्वरों में। वस्तुओं के बाजार भाव की जानकारी भी इस कार्यक्रम में आप प्राप्त कर सकेंगे। श्रोताओं, शाम 6 बजे सुनिएगा मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। शाम 6:02 पर सुनिएगा क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अकड़ा। इस कार्यक्रम में चर्चा और भेंट वार्ताओं के अलावा आप आनंद ले सकेंगे हो लोकगीतों का। श्रोताओं, शाम 6:30 पर सुनिएगा बच्चों को संबोधित कार्यक्रम नन्ही दुनिया। शाम 7 बजे प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी रांची से। यहीं से जिले में आजकल का प्रसारण होगा शाम 7:10 पर। शाम 7:15 पर हमारे केंद्र से आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। शाम 8 बजे सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम रजनीगंधा। शाम 8:45 पर समाचार संध्या का प्रसारण होगा आकाशवाणी दिल्ली से। यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 9:15 से आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण। उसके बाद हमारे केंद्र से रात्रि 10 बजे सुनिएगा गजलों का प्रोग्राम महफिल। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग होगा रात्रि 10:30 पर। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार होंगे आकाशवाणी दिल्ली से। यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 11:05 पर। और रात्रि 11:10 पर संपन्न होगी हमारी आज की सभा। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आइए आनंद लेते हैं आनंद मोहन पाठक के स्वर में संगीत रचनाओं का। सबसे पहले आइए सुनते हैं ये भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप आनंद ले रहे थे आनंद मोहन पाठक के स्वर में संगीत रचनाओं का। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। और प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहार चाईबासा।

जोहार चाय भाषा कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आप सबों को हमारा जोहार और नमस्कार और साथ ही रक्षाबंधन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रोताओं, धागा एक पर रिश्ते हजार बांधता है। चलिए आज के इस कार्यक्रम में सुनते हैं वो गाने जो भाई बहन के इस प्यार को और गाढ़ा करते हैं। श्रोताओं, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम है अनपढ़।

0: जोहार चाईबासा कार्यक्रम का ये पहला गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था अनपढ़। श्रोताओं, रक्षाबंधन के दिन ये जो भाई और बहनों का ये त्यौहार है, इसमें श्रोताओं रेशम के धागों में ढेर सारा प्यार छुपा होता है। भाई बहन के इस रिश्ते में एक अलग ही निखार होता है। आप सबों को रक्षाबंधन का ये त्यौहार एक बार फिर से मुबारक हो, ये पावन मौका, क्योंकि आया है खुशियों का ये खूबसूरत त्यौहार। अब श्रोताओं बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की ओर। इस गीत को गाया है सुमन कल्याणपुर ने। फिल्म का नाम है रेशम की डोरी।
1: शिमारू के नए और बेलाइक

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में फिल्म रेशम की डोरी का ये गीत। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि भाई और बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता होता है, जहाँ एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ भी होती हैं लेकिन प्यार भी बहुत होता है। श्रोताओं, चलिए इसी प्यार के नाम सुनते हैं ये अगला गाना।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में फिल्म अंधा कानून का ये गीत। और अब आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: श्रोताओं, इस संदेश के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम जोहार चायवासा में। श्रोताओं, रक्षाबंधन के इस पावन पर्व के इस मौके पर आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की ओर। फिल्म का नाम है काजल। इस गीत को गाया है आशा भोसले ने।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे फिल्म अनजाना का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। श्रोताओं, भाइयों के लिए बहनों की क्या अहमियत है ये कोई भाई ही समझ सकता है। श्रोताओं, ये एक ऐसा रिश्ता है जिसे शब्दों में बयां कर पाना संभव नहीं है। श्रोताओं, हर भाई अपनी बहन की सलामती के लिए हमेशा सोचते हैं कि बहन का हमेशा भला हो, किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, वो हमेशा खुश रहें।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म छोटी बहन का ये गीत। दोस्तों, आज रक्षाबंधन है, भाई बहन के प्यार का दिन है, लेकिन इस त्यौहार की शुरुआत और इसकी असली रौनक हमारी माँ के बिना अधूरी है। श्रोताओं, सुबह सुबह रसोई से आती हैं और पकवानों की खुशबू, थाली सजाना, भाई को तिलक लगवाना और बहन को टोकना की राखी ठीक से बांध, ये सब माँ ही तो संभालती है। तो श्रोताओं, भाई बहन के इस पर्व में जो सबसे ज़्यादा खुश होती है वो होती है माँ। तो एक गीत आइए माँ के नाम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म राजा और रंग का ये गीत। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। और अब आइए सुनते हैं अगला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है सच्चा झूठा।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अपने रेडियो दोस्त उदयपान के साथ इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार चाईबासा। श्रोताओं, आज हवा में एक अलग ही मिठास है, क्योंकि आज दिन है उस रिश्ते का जो दुनिया में सबसे अनोखा है, यानी रक्षाबंधन। श्रोताओं, एक ऐसा रिश्ता जहाँ जो है भाई बहनों में लड़ाइयाँ भी होती है, फिर कुछ ही देर में क्या होता है कि शिकायतें लगने लगती हैं, लोग मम्मी यानी माँ से शिकायतें करते हैं, और शाम होते होते ये होता है कि कलाई पर रेशम का धागा बांधते ही सारा गुस्सा गायब हो जाता है। श्रोताओं, जो भाई बहन आज साथ हैं, भाई खूब मिठाइयाँ खाइए, बहनों को बढ़िया सा जो है तोहफा दीजिए, और कंजूसी ना करें। तो श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

श्रोताओं, लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे चंबल की कसम, फिल्म का ये गीत। और अभी श्रोताओं, अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप आज का ये त्यौहार अपने परिवार के साथ अच्छे से मना रहे होंगे। तो अपने परिजनों के साथ आज का ये रक्षाबंधन त्यौहार आप अच्छे से मनाइए श्रोताओं। और कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं हम साथ साथ हैं फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं कविता कृष्णमूर्ति, हरिहरन, अनुराधा पौडवाल, कुमार शानू, उदित नारायण और अलका याग्निक की।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे, और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने इतिहास रचा, ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत हुई। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता हैं।
3: नेपाल के अधिकारियों ने 910 व्यक्तियों के लापता होने की जानकारी दी है। तिब्बत के अधिकारियों ने बताया कि 558 व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। बचाव कर्मी लोगों की तलाश कर रहे हैं। अभी क्षेत्र में संकट टला नहीं है। भोटो कोशी नदी स्रोत के पास कई झील बन गई हैं। डर यह है कि इनके टूटने से पानी का एक तेज बहाव आ सकता है, इससे आपदा और गंभीर हो सकती है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने बाढ़ प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इधर भारत ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि नेपाल में 290 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक भारत ने 84 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री वालेंद्र शाह के साथ बातचीत की और उन्हें भारत की ओर से पूरी मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
2: वहीं नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
4: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
2: चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार नेपाल में छोचेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। झील में अगले कुछ दिनों में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष है 9111-2308-8718 और 9111-2308-8719 पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779816321।

0: एक साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक प्रमुख पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आज ही के दिन की थी। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें कुल 3,17,000 करोड़ रुपए की जमा राशि है। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल के रूप में यह योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को लगातार नए आयाम दे रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में है, जबकि लगभग 56% खाता धारक महिलाएं हैं। धन खाता धारकों को 41 करोड़ से अधिक रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं। प्रति खाते औसत जमा राशि 5,356 रुपए है। इस योजना ने लाखों लोगों, विशेष रूप से वंचित वर्गों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके उनके सामाजिक आर्थिक हालात को बेहतर बनाया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी पहलों के कारण भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक इस साल 67 हो गया है, जो 2018 में 53.9 था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीलंका के नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल डेमियन फर्नांडो भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना संबंधों को आगे बढ़ाना है। वाइस एडमिरल फर्नांडो ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के साथ संयुक्त अभियानों, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और समुद्री सुरक्षा सहित द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि रक्षाबंधन का त्यौहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ सम्पन्न होगी।
3: महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा।
4: 57 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा आज औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगी। इस साल जुलाई 3 को शुरू हुई इस यात्रा के दौरान तकरीबन 4,80,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। अगरचे 9 अगस्त को इस यात्रा को मौसम की खराबी की वजह से रोका गया, लेकिन छड़ी मुबारक का सफर परंपरा के अनुसार जारी रहा। इधर आज महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में छड़ी मुबारक पंचतरणी से निकलकर पवित्र गुफा पहुंचाई जाएगी, जहां विशेष पूजा और पारंपरिक रस्मों के बाद इस साल की यात्रा संपन्न हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
3: महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा।
0: इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में सालाना बुद्ध अमरनाथ यात्रा भी आज संपन्न होगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रक्षाबंधन का पर्व आज विशेष धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जा रहा है।
5: श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर आज तड़के भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को करीब 2 फीट की विशेष राखी चढ़ाई गई। ये राखी पुजारी परिवार की महिलाओं ने कई दिनों की मेहनत से तैयार की थी। रेशमी कपड़े और धागों से बनी इस राखी में रुद्राक्ष, मोर पंख, ओम, त्रिनेत्र और त्रिपुंड को शामिल किया गया है। राखी तैयार करते समय महिलाओं ने जय महाकाल और ओम नमः शिवाय का जाप किया। धार्मिक परंपरा के अनुसार भगवान महाकाल को राखी अर्पित करने के बाद ही पुजारी परिवार की महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: केरल में सबरीमला मंदिर ओणम पूजा के बाद आज रात 10 बजे बंद हो जाएगा। इस वर्ष

0: त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने तिरुओणम के दिन मंदिर में ओणम भोज का आयोजन किया। मंदिर 16 तारीख सितंबर को पुनः खुलेगा। आज समाज सुधारक श्री नारायण गुरु की 172वीं जयंती मनाई जा रही है। केरलम में सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री नारायण गुरु की जन्मभूमि चेम्पा छंती में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री 2015, 2016 और 2022 में इस मध्य एशियाई देश का दौरा कर चुके हैं। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव भी 2018 और 2019 में भारत आ चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र में मध्य एशियाई अध्ययन के प्रोफेसर राजन कुमार ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि बार बार की गई ये यात्राएं ही दर्शाती है कि उज्बेकिस्तान भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
2: भारत को अगर यूरेशिया में कोऑपरेशन बढ़ाना है तो वैसे में मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया के देश काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और सेंट्रल एशिया के देश जो है उसमें उज्बेकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसकी मिलिट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है।
1: इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन सहयोग संबंधी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे। दोनों नेता विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब खेल खबरों का रुख कर लेते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कल रात अमेरिका के सेंट लुइस में फाइनल में मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआनो को 15-13 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। प्रज्ञानंदा ने $200,000 का पहला पुरस्कार जीतकर अगले साल के ग्रैंड शतरंज टूर में अपनी जगह भी पक्की कर ली है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार कल रात स्क्वैश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोटरानी को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज रात वेलवन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बाला अजफारकत से होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर एफआईएच विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1994 में हुए पहले माफ कीजिएगा इससे पहले 1994 में हुए पहले विश्व कप में टीम 4थे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। नेपाल में आए भीषण सैलाब की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। अमर उजाला लिखता है, नई झील से फिर सैलाब का खतरा, बिहार और उत्तर प्रदेश में अलर्ट। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, 290 भारतीयों का अब तक सुराग नहीं, समय के साथ उम्मीदें भी घटती जा रही। हिंदुस्तान की सुर्खी है, तिब्बत से फिर आ सकती है तबाही, नियंत्रण कक्ष स्थापित। नहीं थम रहा स्वाइन फ्लू, 24 घंटे में 166 नए मामले, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, बिना डॉक्टर की सलाह ना लें कोई दवा। खेलो इंडिया संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया गया संदेश जनसत्ता ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, प्रधानमंत्री ने जताई चिंता, कहा 2036 ओलंपिक खेलों के लिए आज से ही तैयारी करें खिलाड़ी। आईपीओ में लौटी तेजी, नए शेयरों का एक साल में 18% रिटर्न पर निफ्टी 7% टूटा। दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है, गिरते नजर आने लगे चीनी के दाम, खुदरा बाजार में भाव करीब 63 रुपए प्रति किलो, लोकसत्ते की सुर्खी है। ब्रेन सर्जरी में पहला एआई सफल उपयोग, ट्यूमर निकालकर बचा ली आंखों की रोशनी, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज सम्पन्न होगी।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने इतिहास रचा। ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: R. Pragyanandan creates history, becomes the first Indian to win Grand Chess Tour. For details of this stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: वेक्टर जनित रोग, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
3: बुखार होने पर ओझागुनी के पास न जाएं, अपने गाँव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जाँच और उपचार कराएं।
2: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड हाई कोर्ट ने पाकुड़ के पैनम कोल माइंस में कथित अवैध खनन मामले की एससीबी से जांच कराने का दिया आदेश। राज्य सरकार के जवाब पर जताया असंतोष। सीआईडी ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी मामले में दो आरोपियों सोमांश प्रकाश और उसके सहयोगी राहुल कुमार को दिल्ली से किया गिरफ्तार। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को एक ही खतियान से जुड़ी वंशावली वाले मतदाताओं की जांच करने का दिया निर्देश। देशभर में आज मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। राष्ट्रपति ने देशवासियों को दी बधाई। परिवार और समुदायों के बीच रिश्तों को मजबूत करने का संकल्प लेने का किया आह्वान। और 65वीं सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल कप के अंडर 17 बालिका वर्ग में झारखंड ने मिजोरम को 2-0 से पराजित कर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के खिताब पर जमाया कब्जा। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड हाई कोर्ट ने पाकुड़ के पैनम कोल माइंस में कथित अवैध खनन पर राज्य सरकार के जवाब पर असंतोष जताते हुए मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एससीबी से कराने का आदेश दिया है। अदालत ने कल सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि एससीबी 5 नवंबर तक अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे। गौरतलब है कि पैनम माइंस नाम की कंपनी को 2015 में सरकार ने पाकुड़ और दुमका जिले में कोयला खनन की लीज दी थी, लेकिन उसने लीज से अधिक खनन किया जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। झारखंड हाईकोर्ट ने 2010 में हजारीबाग में एनटीपीसी के परियोजना कार्यालय के उद्घाटन के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़े आपराधिक मामले में पूर्व कांग्रेस मंत्री योगेंद्र साव को बरी कर दिया है। अदालत ने पाया कि इस बात का कोई विशिष्ट साक्ष्य मौजूद नहीं है कि उन्होंने किसी पर हमला किया था या भीड़ को उकसाया था। हाईकोर्ट ने निचली अदालतों के उन निष्कर्षों को रद्द कर दिया जिनमें योगेंद्र साव को दोषी ठहराया गया था। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित अनियमितता मामले में सीआईडी ने दो आरोपियों सोमांश प्रकाश और उसके सहयोगी राहुल कुमार को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। सीआईडी की विशेष कोर्ट में पेशी के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दोनों वर्तमान में दिल्ली में रह रहे थे। सीआईडी के अनुसार सोमांश प्रकाश जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के संचालन से संबंधित कार्यों से जुड़ा था। जांच के दौरान उसके सहयोगी राहुल कुमार की भूमिका भी सामने आई थी। खान और खनिज संशोधन अधिनियम पर प्रदेश भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि एमएमडीआर संशोधन अधिनियम का पूरे देश में कहीं कोई विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन झारखंड में कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है।
5: झारखंड में सरकार शेष के नाम पर लूट मचा कर रखी है। डीसीसीएल का कितना हालत लोगों ने बिगाड़ दिया है। इतनी बड़े पैमाने में चोरी हो रही है। आज स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि अगर केंद्र की सरकार बीसीसीएल को पैसा नहीं दे तो वहाँ के कर्मचारियों का भुगतान वहाँ के रेवेन्यू से नहीं हो पाएगा। झारखंड में बार बार जनता को गुमराह करना या मुद्दे को भटकाना चाहता है।
4: वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

0: केशव महतो कमलेश ने एमएमडीआर संशोधन के विरोध को झारखंड के संवैधानिक अधिकार, राजस्व, आदिवासी हित और खनिज संपदा की रक्षा की लड़ाई करार दिया है।
1: इससे हमारे झारखंड को राजस्व की काफी क्षति होने जा रही है, इसलिए हम लोग इसको सड़क से सदन तक ये आवाज उठाने का काम करेंगे। आगामी 7 सितंबर को लोकभवन में हम लोग इस तरह रोषपूर्ण धरना प्रदर्शन कार्यक्रम करेंगे और 9 से लेकर 16 तारीख तक सभी प्रखंड मुख्यालय में ये कार्यक्रम होगा।
0: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को एक ही खतियान से जुड़ी वंशावली वाले मतदाताओं की जांच करने का निर्देश दिया है। उन्होंने एसआईआर की समीक्षा के दौरान कहा कि होम टू रोल सत्यापन, एक परिवार एक मतदान केंद्र, नए पात्र भारतीय नागरिकों के पंजीकरण, नो मैप और तार्किक विसंगति वाले मामलों के नियम अनुसार निष्पादन को प्राथमिकता के साथ पूरा करें। उन्होंने कहा कि एक ही परिवार या एक ही घर के मतदाता अलग अलग मतदान केंद्रों पर सूचीबद्ध हैं तो उन्हें उनके नजदीकी और एक ही मतदान केंद्र पर सूचीबद्ध करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का पर्व रक्षाबंधन आज देशभर में पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने हर नागरिक से परिवार और समुदायों के बीच रिश्तों को मजबूत करने का संकल्प लेने का आग्रह किया। इधर रांची के नामकुम स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की 4 छात्राएं रोशनी लकड़ा, विभा कुमारी, नेहा कुमारी और सिमरन आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में राष्ट्रपति को राखी बांधेंगी। रांची नगर निगम बोर्ड ने शहर के विकास, नगर निगम की व्यवस्था, जलापूर्ति, सफाई, राजस्व और बाजार से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य कराने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी। मेयर रोशनी खलखो ने बताया कि शहर को व्यवस्थित करने के लिए निगम स्तर पर कई आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
2: बैठक में बहुत सारे एजेंडों को लाया गया है। बकरी बाजार का जो अभी एरिया है, जो स्टोर है, उस स्टोर को हमने शिफ्ट करने को कहा है और उसे शिफ्ट करके जो आप देख रहे होंगे बिरसा मुंडा पार्क के सामने में ट्रैकर स्टैंड है, उसके पीछे बहुत जमीनें हैं, तो उसे हमें वहां पर हम लोग शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। वहां पर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है।
0: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने इस दौरान कई जिलों में भारी बारिश के साथ साथ तेज हवा चलने और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। कल चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम के दौरान कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के सैकड़ों युवाओं के साथ संवाद किया। वर्चुअल माध्यम से श्री मोदी ने खिलाड़ियों से वर्ष 2036 ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को आज से ही तैयारी करने को कहा। युवाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें खेल क्षेत्र में आगे बढ़ने और नशे से बचने की सलाह दी।
3: मोदी जी ने कहा कि युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए और खेल को लेकर हमें अपने ज्ञान और अपनी प्रतिभा को दिखाना चाहिए, साथ ही साथ नशा मुक्ति से भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि आज नशा जो है युवाओं को अपने प्रति आकर्षित कर रहा है, जिससे हमारा देश का भविष्य खतरे में आ सकता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि खेल जो है हमारे मेंटल और फिजिकल दोनों ही चीजों को डेवलप करता है और हमें पढ़ाई और साथ ही साथ अपने को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए प्रेरित करता है।
0: नई दिल्ली में कल 65वीं सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल कप के अंडर 17 बालिका वर्ग के फाइनल में झारखंड की संत पैट्रिक स्कूल गुमला की टीम ने मिजोरम की एनसीसी टीम को 2-0 से हरा दिया और तीसरी बार राष्ट्रीय चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर जिले के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने पूरी टीम को बधाई दी है। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने नेपाल में आई भीषण तबाही और दोबारा आने वाले

संभावित बाढ़ को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने लिखा है 290 भारतीयों का अब तक सुराग नहीं, समय के साथ उम्मीदें भी घटती जा रही। प्रभात खबर ने नेपाल की विनाशकारी बाढ़ में रांची निवासी रामप्रसाद घोष के लापता होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने JSSCGL मामले में दिल्ली से दो आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। वहीं हिन्दुस्तान ने CISF के 3 अधिकारियों को घूस लेते गिरफ्तार किए जाने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड हाईकोर्ट ने पाकुड़ के पैनम कोल माइंस में कथित अवैध खनन मामले की SCB से जांच कराने का दिया आदेश। राज्य सरकार के जवाब पर जताया असंतोष। CID ने JSSCGL परीक्षा में कथित गड़बड़ी मामले में 2 आरोपियों सोमांश प्रकाश और उसके सहयोगी राहुल कुमार को दिल्ली से किया गिरफ्तार। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को एक ही खतियान से जुड़ी वंशावली वाले मतदाताओं की जांच करने का दिया निर्देश। देशभर में आज मनाया जा रहा रक्षाबंधन का त्योहार। राष्ट्रपति ने देशवासियों को दी बधाई। परिवार और समुदायों के बीच रिश्तों को मजबूत करने का संकल्प लेने का किया आह्वान। और 65वीं सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल कप के अंडर-17 बालिका वर्ग में झारखंड ने मिजोरम को 2-0 से हरा कर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के खिताब पर जमाया कब्जा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार का प्रसारण आकाशवाणी रांची से। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 8:45 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम माटी की महक। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आइए आनंद लेते हैं। कुरमाली लोकगीतों का कलाकार हैं लालू महतो और साथी।

विविधा कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को मेरा यानी उदयपान का प्यार भरा नमस्कार, और साथ ही भाई और बहन के अटूट प्रेम के पर्व यानी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रोताओं, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप रक्षाबंधन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे होंगे। श्रोताओं, रक्षाबंधन का जो त्यौहार है इसके बारे में आइए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। श्रोताओं, भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये त्यौहार भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधता है। श्रोताओं, इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा का बंधन बांधती है, जिसे राखी कहते हैं। ये एक हिंदू व जैन त्यौहार है जो प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। श्रोताओं, श्रावण यानी सावन में मनाए जाने के कारण इसे श्रावणी या सावनी या सलूनो भी कहते हैं। रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व है। राखी कच्चे सूत जैसे सस्ती वस्तु से लेकर रंगीन कलावे, रेशमी धागे या सोने या चांदी जैसी महंगी वस्तु तक की हो सकती है। रक्षाबंधन के दिन बहनें भगवान से अपनी भाइयों की उन्नति के लिए प्रार्थना करती हैं। सामान्यतः बहनें ही भाइयों को राखी बांधती हैं, परंतु जो है कुछ समुदायों में छोटी लड़कियों द्वारा सम्मानित संबंधियों को भी बांधी जाती है। श्रोताओं, कभी कभी सार्वजनिक रूप से किसी जो है प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी राखी बांधी जाती है। रक्षाबंधन के दिन भाई अपने बहन को राखी के बदले कुछ उपहार देते हैं। श्रोताओं, इस दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर लड़कियां और महिलाएं पूजा की थाली सजाती हैं। थाली में राखी के साथ हल्दी, चावल, दीपक, मिठाई और कुछ पैसे भी होते हैं। लड़के और पुरुष तैयार होकर टीका लगवाने के लिए पूजा या किसी उपयुक्त स्थान पर बैठते हैं। पहले अभीष्ट देवता की पूजा की जाती है, इसके बाद रोली या हल्दी से भाई का टीका करके चावल के टीके पर लगाया जाता है और सिर पर छिड़का जाता है। उसकी आरती उतारी जाती है। दाहिनी कलाई पर राखी बांधी जाती है और जो है पैसों से नौछावर करके उन्हें जो गरीबों में बांट दिया जाता है। श्रोताओं, भारत के अनेक प्रांतों में भाई के कान के ऊपर भोजली या भुजरियां लगाने की प्रथा भी है। भाई बहन को उपहार या धन देता है। इस प्रकार रक्षाबंधन के अनुष्ठान को पूरा करने के बाद ही भोजन किया जाता है। प्रत्येक पर्व की तरह उपहारों और खाने पीने की विशेष पकवानों का महत्व रक्षाबंधन में भी होता है। आमतौर पर दोपहर का भोजन महत्वपूर्ण होता है और रक्षाबंधन का अनुष्ठान पूरा होने तक बहनों द्वारा व्रत रखने की भी परंपरा है। पुरोहित तथा आचार्य सुबह सुबह यजमानों के घर पहुंचकर उन्हें राखी बांधते हैं और बदले में धन, वस्त्र और भोजन आदि प्राप्त करते हैं। श्रोताओं, ये पर्व भारतीय समाज में इतनी व्यापकता और गहराई से समाया हुआ है कि इसका सामाजिक महत्व तो है ही। धर्म, पुराण, इतिहास, साहित्य और फिल्में भी इसे अछूते नहीं हैं। श्रोताओं, इस दिन बहनें अपने भाई के दाएं हाथ पर राखी बांधकर उसके माथे पर तिलक

करती हैं और उसकी दीर्घायु की कामना करती हैं। बदले में भाई उनकी रक्षा का वचन देता है। ऐसा माना जाता है कि राखी के रंग बिरंगे धागे भाई बहन के प्यार के बंधन को मजबूत करते हैं। भाई बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और सुख दुख में साथ रहने का विश्वास दिलाते हैं। ये एक ऐसा पर्व माना जाता है जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते को पूरा आदर और सम्मान देता है। श्रोताओं, भरे जो है सगे भाई बहन के अतिरिक्त जो है श्रोताओं अनेक भावनात्मक रिश्ते भी इस पर्व से बंधे होते हैं जो जाति धर्म और देश की सीमाओं से परे होते हैं। श्रोताओं, भाई ये बात करते हैं कि रक्षाबंधन पर्व का महत्व हमारे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी चला था और इसका क्या महत्व है। श्रोताओं, भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में बंग भंग यानी बंगाल विभाजन जो विभाजन है विरोधी आंदोलन का बहुत महत्व है। इसमें न केवल बंगाल अपितु पूरे भारत के देशभक्त नागरिकों ने एकजुट होकर अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया था। श्रोताओं, भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में बंग भंग विरोधी आंदोलन का बहुत महत्व है। इसमें न केवल बंगाल अपितु पूरे भारत के देशभक्त नागरिकों ने एकजुट होकर अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया था। उन दिनों देश के मुसलमान भी हिंदुओं के साथ मिलकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। अंग्रेज शासक प्रारंभ से ही बांटो और राज करो की नीति पर काम कर रहे थे करते थे। श्रोता, उन्होंने सोचा कि यदि इनमें फूट डाल दें तो भारत पर लंबे समय तक राज करते रहना सरल हो जाएगा। श्रोताओं, इसलिए प्रयोग के लिए उन्होंने बंगाल के मुस्लिम बहुल क्षेत्र को असम के साथ मिलाकर एक नया प्रांत बनाने का षड्यंत्र रचा। देश की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला के वायसराय भवन से लॉर्ड कर्जन ने ये आदेश जारी किया था कि 16 अक्टूबर 1905 को ये राज्य अस्तित्व में आ जाएगा। ये सुनते ही पूरा बंगाल आक्रोश में जल उठा। इसके विरोध में न केवल राजनेता अपितु बच्चे बूढ़े महिला पुरुष सब सड़कों पर उतर आए। उन दिनों बंगाल क्रांतिकारियों का गढ़ था। उन्होंने इस अप्राकृतिक विभाजन को किसी भी कीमत पर लागू न होने देने की चेतावनी दी। श्रोताओं, समाचारों के माध्यम भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने इस बारे में विशेष लेख छापे। राष्ट्रीय नेताओं ने लोगों से विदेशी वस्त्रों एवं वस्तुओं की बहिष्कार की अपील की। जनसभाओं में एक वर्ष तक सभी सार्वजनिक पर्वों पर होने वाले उत्सव स्थगित कर राष्ट्रीय शोक मनाने की अपील की जाने लगी। श्रोताओं, इन अपीलों का व्यापक असर हुआ और पंडितों ने विदेशी वस्त्र पहनने वाले वर वधुओं के विवाह कराने से जो है हाथ पीछे खींच लिए। नाइयों ने विदेशी वस्तुओं के प्रेमियों के जो है बाल काटने और धोबियों ने उनके कपड़े धोने से मना कर दिया। श्रोताओं, इससे विदेशी सामान की बिक्री बहुत घट गई। उसे प्रयोग करने वालों को हीन दृष्टि से देखा जाने लगा। मारवाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मैनचेस्टर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को तार भेजा था कि शासन पर दबाव डालकर इस निर्णय को वापस कराइए, अन्यथा यहाँ आपका माल बेचना असंभव हो जाएगा। श्रोताओं, योजना के क्रियान्वयन का दिन 16 अक्टूबर 1905 पूरे बंगाल में शोक पर्व के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर तथा अन्य प्रबुद्ध लोगों ने आग्रह किया कि इस दिन सब नागरिक गंगा या निकट की किसी भी नदी में स्नान कर एक दूसरे के हाथ में राखी बांधें। इसके साथ वे संकल्प लें कि जब तक ये काला आदेश वापस नहीं जाता वे चैन से नहीं बैठेंगे। 16 अक्टूबर को बंगाल के सभी लोग सुबह जल्दी ही सड़कों पर आए। वे प्रभात फेरी निकालते और कीर्तन करते हुए नदी तटों पर गए। स्नान कर सबने एक दूसरे को पीले सूत की राखी बांधी और आंदोलन का मंत्र वंदे मातरम गाया। श्रोताओं, स्त्रियों ने बंग लक्ष्मी व्रत रखा। 6 साल तक आंदोलन चलता रहा। हजारों लोग जेल गए पर कदम पीछे नहीं हटाए। लाल बाल पाल की जोड़ी ने इस आग को पूरे देश में सुलगा दिया। श्रोताओं, इससे लंदन में बैठे अंग्रेज शासक घबरा गए। ब्रिटिश जो सम्राट जॉर्ज पंचम ने 11 दिसंबर 1912 को

दिल्ली में दरबार कर ये आदेश वापस ले लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने वायसराय लॉर्ड कर्जन को वापस बुलाकर उसके बदले लॉर्ड हार्डिंग को भारत भेज दिया। इस प्रकार राखी के धागों से उत्पन्न एकता ने इस आंदोलन को सफल बनाया। तो श्रोताओं, हम अभी जानकारी प्राप्त कर रहे थे कि रक्षाबंधन या राखी का हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या महत्व है इसके बारे में। और अब आइए सुनते हैं एक रक्षाबंधन से जुड़ा एक गीत है।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम विविधा में। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं हूं आपका रेडियो दोस्त उदय पान। श्रोताओं, आज 28 अगस्त है और आज के दिन जन्म हुआ था भारत के महान संत एवं समाज सुधारक नारायण गुरु जी का। श्रोताओं, श्री नारायण गुरु जी का जन्म केरल के तिरुवनंतपुरम के उत्तर में 12 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में सन 1855 में आज ही के दिन हुआ था। स्वयं पिछड़ी जाति के होने के कारण वे इस समुदाय के दुख दर्द को समझते थे। इनका घर का नाम नानू था। ये बचपन से ही बहुत नटखट थे। उनके पिता मदन हसन एक किसान थे। वे प्रसिद्ध आचार्य और संस्कृत के विद्वान थे। आयुर्वेद और ज्योतिष के ज्ञाता भी थे। श्री नारायण गुरु जी की माँ एक सरल महिला थी। अपने माता पिता के चार संतानों में एकमात्र बालक थे नारायण गुरु अथवा नानू। श्रोताओं, वे एक आम बालक की तरह पले बड़े। 5 वर्ष के आयु में उन्हें गांव के स्कूल में प्राथमिक शिक्षा के लिए भर्ती किया गया। वहां उन्होंने संस्कृत भी पढ़ी। प्राथमिक शिक्षा के बाद नानू ने घर पर रहकर खेती और घरेलू कामकाज में हाथ बटाया। वे प्रतिदिन संस्कृत काव्य पाठ करते थे। वे मंदिर में पूजा और एकांत में ध्यान भी करते थे। 14 वर्ष की आयु में वे नानू भक्त के नाम से प्रसिद्ध हो गए। 15 वर्ष की आयु में माता के देहांत के बाद उनके मामा कृष्ण वेदयार आयुर्वेदाचार्य ने उनकी देखभाल की। कृष्ण वेदयार को अपने भांजे की अप्रतिम प्रतिभा का जल्द ही पता लग गया। अतः नानू को उच्च शिक्षा के लिए करुणनगपल्ली में एक योग्य अध्यापक रमण पिल्ले असन के पास भेज दिया गया। रमण पिल्ले एक जो है काफी विद्वान व्यक्ति थे और भी सवर्ण थे। चूंकि नानू जन्म से अछूत थे, अतः उन्हें अपने गुरु के घर के बाहर रहकर अध्ययन करना पड़ा। नानू एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी सिद्ध हुए और उन्होंने अपने सभी साथियों से आगे निकलकर शिक्षकों के सामने संस्कृत में अपनी विद्वता सिद्ध कर दी। संस्कृत में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात 1881 में वे अत्यधिक बीमार पड़ गए और उन्हें वापस घर लौटना पड़ा। रोग मुक्त होने के बाद उन्होंने अपने पैतृक गांव में और आसपास के क्षेत्रों में छोटे छोटे विद्यालय खोलने का निर्णय लिया। यहीं से उन्होंने स्थानीय समाज के बालकों, विशेषकर पिछड़े वर्ग के बालकों में ज्ञान और शिक्षा का प्रसार आरंभ किया। वस्तुतः ये दौर उनके जीवन में कड़े मानसिक संघर्ष का दौर रहा। एक ओर तो उन्हें परिवार के भरण पोषण की चिंता करनी थी, तो दूसरी ओर उनके भीतर आध्यात्मिक उन्नयन और यथार्थ के अनुभव को पाने की तीव्र उत्कंठा हिलोरे मार रही थी। उनके सब कामों पर उन्मुक्त आध्यात्मिक जीवन की तीव्र इच्छा की झलक दिखने लगी थी। अतः चिंतित रिश्तेदारों ने उनकी सोच में बदलाव की दृष्टि से उनके विवाह का निश्चय किया। 28 वर्ष की आयु में श्री नारायण गुरु जी की जो है उनका विवाह हो गया। श्रोताओं, कुछ समय पश्चात घर का त्याग करके नानू आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में निकल गए। उन्होंने योग शिक्षा ली, मारुतब मल्ले की गुफाओं में साधना की, कठोर अनुशासन का व्रत साधा। व्यक्तित्व के विकास और गुण संपन्नता हेतु कर्म और गति का दौर शुरू हुआ। काफी समय बाद श्री नारायण गुरु लोगों के बीच लौटे। वे गांव-गांव घूमे, जो भोजन मिलता उसे खाया, समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ रहे, पिछड़े वर्ग से घुले मिले। सभी लोग उनसे प्रभावित हुए, उनके प्रति श्रद्धा जगी। समाज में का जो है श्रोताओं, सामाजिक कार्य में सबसे पहले श्री नारायण गुरु ने तिरुवनंतपुरम से 20 किलोमीटर दक्षिण में आरुविपुरम में नैयार नदी के तट पर 1888 में शिव मंदिर की स्थापना की और इस मान्यता को ठुकरा दिया कि वे केवल एक जो है पुजारी ही कर सकते हैं। श्रोताओं, मंदिर के ही निकट उन्होंने आश्रम बनाया तथा एक संगठन बनाकर मंदिर

संपदा और श्रद्धालुओं के कल्याण की व्यवस्था की। यही संगठन बाद में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम के नाम से जाना गया, जो श्री नारायण धर्म का प्रसार करने लगा। सन 1904 में नारायण गुरु ने क्विलोन के एक तटीय उपनगर वर्कला में एक शांत सुरमय पर्वतीय स्थल शिवगिरी में अपनी सार्वजनिक गतिविधियां केंद्रित की। 1928 में अपनी महासमाधि तक श्री गुरु ने यहीं रहकर साधना की। शिवगिरी में नारायण गुरु ने दो मंदिरों और एक मठ की स्थापना की। शिवगिरी आकर ही रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जी ने श्री नारायण गुरु के दर्शन किए थे। श्रोताओं, अब आइए बात करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, आज ही के दिन जन्म हुआ था भारत के प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां जी का, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ख्याति प्राप्त की थी। श्रोताओं, उस्ताद विलायत खां की पिछली कई पुस्तें सितार वादन से जुड़ी रही थीं। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी बातें। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सितार वादक उस्ताद विलायत खां का जन्म 28 अगस्त यानी आज ही के दिन सन 1928 को तत्कालीन पूर्वी बंगाल के गौरीपुर नामक स्थान पर एक संगीतकार परिवार में हुआ था। उनके पिता उस्ताद इनायत हुसैन खां अपने समय के न केवल सुरबहार और सितार के विख्यात वादक थे, बल्कि सितार वाद्य को विकसित रूप देने में भी उनका काफ़ी योगदान था। उस्ताद विलायत खां के अनुसार सितार वाद्य प्राचीन वीणा का ही एक परिवर्तित रूप है। इनके दादा उस्ताद इमदाद खां अपने समय के रुद्र वीणा वादक थे। उन्हीं के मन में सबसे पहले सितार के जो है सितार में तरब के तारों को जोड़ने का विचार आया था, किंतु इसे पूरा किया विलायत खां के पिता इनायत खां जी ने। उन्होंने संगीत के वाद्यों के निर्माता कन्हई लाल के माध्यम से इस स्वप्न को साकार किया। सितार के ऊपरी हिस्से पर दूसरा तुम्बा लगाने का श्रेय भी जो है इन्हें प्राप्त है। श्रोता, उस्ताद विलायत खां ने अपनी शुरुआती संगीत शिक्षा पिता इनायत खां से प्राप्त की थी। जब वे मात्र 12 वर्ष की अल्पायु में ही थे, तभी उनके पिता का निधन हो गया। बाद में उनके चाचा वाहिद खां ने उन्हें सितार वादन की शिक्षा दी। उनके नाना बंदे हुसैन खां और मामू जिंदे हुसैन खां से भी उन्हें गायन की शिक्षा प्राप्त हुई। ये गायकों का घराना था। श्रोताओं, विलायत खां ने दो विवाह किए थे। वे दो पुत्रियों और दो पुत्रों के पिता बने। उस्ताद विलायत खां के दोनों बेटे सुजात हुसैन खां और हिदायत खां भी प्रमुख सितार वादकों में गिने जाते हैं। श्रोताओं, आरंभ में विलायत खां का झुकाव गायन की ओर था, किंतु उनकी मां ने उन्हें अपनी खानदानी परंपरा निभाने के लिए प्रेरित किया। गायन की ओर उनके झुकाव के कारण ही आगे चलकर उन्होंने अपने वाद्य को गायकी अंग के अनुकूल परिवर्तित करने का सफल प्रयास किया। यही नहीं, अपने मंच प्रदर्शन के दौरान प्रायः वे गाने भी लगते थे। सन 1993 में लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में खां साहब ने राग हमीर के वादन के दौरान पूरी बंदिश का गायन भी प्रस्तुत किया था। श्रोताओं, विलायत खां जी के सितार वादन में तंत्रकारी कौशल के साथ साथ गायकी अंग की स्पष्ट झलक मिलती है। सितार को गायकी अंग से जोड़कर उन्होंने अपनी एक नई वादन शैली की नींव रखी थी। वादन करते समय उनके मिजराब के आघात से दा के स्थान पर आ की ध्वनि का स्पष्ट आभास होता था। उनका यह प्रयोग वादन को गायकी अंग से जोड़ देता है। विलायत खां ने सितार के तारों में भी प्रयोग किए थे। सबसे पहले उन्होंने सितार के जोड़ी के तारों में से एक तार निकालकर एक पंचम स्वर का तार जोड़ा। पहले उनके सितार में 5 तार हुआ करते थे, बाद में एक और तार जोड़कर संख्या 6 हो गई। अपने वाद्य और वादन शैली के विकास के लिए वे निरंतर प्रयोगशील रहे। एक अवसर पर उन्होंने स्वयं भी स्वीकार किया कि वर्षों के अनुभव के बावजूद अपने हर कार्यक्रम को एक चुनौती के रूप में लेते थे और मंच पर जाने से पहले दुआ मांगते थे कि इस परीक्षा में भी वे सफलता पाएं। श्रोताओं, उस्ताद विलायत खां ने कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में भी संगीत दिया था। 1958 में निर्मित सत्यजीत रे की बांग्ला फिल्म जल सागर, 1969 में मर्चेंट आइवरी की फिल्म दी गुरु और 1976 में मधुसूदन कुमार द्वारा निर्मित हिंदी फिल्म कादंबरी उस्ताद विलायत

0: वहाँ के संगीत से सुसज्जित था। वे वास्तव में सरल, सहज और सच्चे कला साधक थे। श्रोताओं, सितार वादन व संगीत के क्षेत्र में विलायत खां के विशेष योगदान के लिए उन्हें सन 1964 में पद्मश्री और 1968 में पद्म विभूषण सम्मान दिए गए थे। श्रोताओं, एक सितार वादक के रूप में विलायत खां ने 5 दशक से भी अधिक समय तक अपना जादू बिखेरा। सितार के इस महान वादक को जो है एक बीमारी के कारण इनका 13 मार्च 2004 को निधन हो गया। श्रोताओं, इनके योगदान के लिए जो है देश इन्हें याद रखेगा। और अब श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल,

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम रसरंजन।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम रसरंजन में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम और सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म का नाम है तेरे नाम।

श्रोताओं, रसरंजन कार्यक्रम का ये पहला गीत अभी आप सुन रहे थे। उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में फिल्म का नाम था तेरे नाम। आइए अब अगला गीत सुनते हैं के के वसुंधरा दास की आवाज़ों में फिल्म मैं हूं ना का ये गीत है।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और अपने रेडियो दोस्त उदयपान के साथ इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। और अब आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की ओर। इस गीत को गाया है उदित नारायण और बाली ब्रह्म भट्ट ने। फिल्म का नाम है हम तुम्हारे हैं सनम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और बाली ब्रह्म भट्ट की आवाज़ों में फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम का ये गीत। और अब आइए सुनते हैं कुछ ज़रूरी संदेश।
1: मिस सीमा
2: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
2: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
7: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1444-99 या 1800-345-4060 पर।
6: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: श्रोताओं, इन संदेशों के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का फिल्म संगीत के कार्यक्रम रस रंजन में। आज इस कार्यक्रम में आप हैं अपने रेडियो दोस्त उदय पान के साथ। और भाई, सुनते हैं अगला गीत सोनू निगम और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है आप मुझे अच्छे लगने लगे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग टीम को पल पल बंदगी करते हैं विमलेश मैडम जी और अजीत साहिब जी, जय जोहार। बंदगी जी, जुलाई वाले सप्ताह में गजब का 16वां लघु कथा प्रसंग सुनाया। गौतम बुद्ध की शरण पाकर अंगुलीमाल डाकू का संत बनना, महात्मा गांधी का मितव्ययता प्रसंग, सुभाष चंद्र बोस के देश प्रेम, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम, इन सभी संत महापुरुषों का प्रसंग हमें बहुत शिक्षाप्रद और प्रेरणा दिया। इसी तरह नई नई जानकारी मिलती रहे, दिल से धन्यवाद साहेब।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। लिखते हैं, आजकल मैं उमंग कार्यक्रमों को नहीं सुन पा रहा हूँ, क्या आप मुझे आकाशवाणी के ऐसे केंद्रों की जानकारी दे सकते हैं जो सुबह 7 बजे से पहले या शाम को 7 बजे के बाद उमंग कार्यक्रम का प्रसारण करते हों? मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जरूर बताइएगा।
0: योगेश जी, हम प्रयास करेंगे पता करने की, क्योंकि सभी प्रसारण केंद्रों ने अपनी और छात्रों की सुविधा के अनुसार प्रसारण समय तय कर रखा है। हमारी सलाह होगी कि आप इंस्टाग्राम ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें और CIT NCERT को फॉलो करें। प्रतिदिन के कार्यक्रमों के लिंक आपको वहां मिल जाएंगे, क्लिक कीजिए और किसी भी समय कार्यक्रम सुनिए।
1: जी, अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल दिवांगन जी का।
0: रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास और कृष्ण कुमार यादव।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबके संदेशों के लिए। आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी ज्ञान यात्रा में, यानी ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
0: जी
1: तो विमलेश जी, शुरुआत की जाए। हमारा कल का विषय था जहाँ बारिश भी रुकना भूल जाती है।
0: जी,
1: तो हमारा आज का विषय क्या होगा?
0: अजीत जी, हमारा आज का विषय होगा जहाँ सूरज भी परीक्षा लेता है।
1: वाह, जहाँ सूरज भी परीक्षा लेता है।
0: आज हम बात करेंगे राजस्थान के कुछ ऐसे गांवों की जहाँ गर्मी केवल मौसम नहीं बल्कि जीवन का एक हिस्सा है।
1: जी हाँ श्रोताओ, कल्पना कीजिए, आसमान बिल्कुल साफ है, सूरज सिर के ठीक ऊपर है, हवा चल रही है लेकिन वह ठंडी नहीं है, बहुत गर्म है।
0: जी,
1: धरती इतनी तप रही है कि दोपहर में बाहर निकलना भी किसी परीक्षा से कम नहीं है।
0: हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके की, जहां फलौदी और उसके आसपास के गांवों में गर्मियों के दिनों में तापमान बेहद ऊंचा पहुंच जाता है, 50 से 52 डिग्री सेल्सियस।
1: जी हाँ श्रोताओ, आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ का मौसम कैसा होता होगा। श्रोताओ, यहाँ की सुबह हमारी सुबह से बहुत अलग होती है।
0: जी हाँ श्रोताओ, जब दिल्ली या किसी दूसरे शहर में लोग सुबह की ठंडी हवा का आनंद लेते हैं, राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में गर्मी सवेरे ही शुरू हो जाती है और लोग जानते हैं कि दिन चढ़ने के साथ गर्मी लगातार बढ़ती चली जाएगी।
1: इसे श्रोताओ, बहुत से काम वहाँ सुबह ही जल्दी निपटा लिए जाते हैं, जैसे पशुओं को चारा देना हो, पानी भरना हो, खेत या घर या कोई जरूरी काम हो।
0: जी,
1: यहाँ लोग पूरी कोशिश करते हैं कि ये काम सूरज के तेज होने से पहले पूरे हो जाएं।
0: बिल्कुल अजीत जी, क्योंकि वहाँ केवल ये सवाल नहीं होता कि आज कितना काम करना है, सवाल ये भी होता है कि काम किस समय करना है।
1: जी हाँ, तो विमलेश जी, जरा दोपहर की बात भी तो कीजिए।
0: यहाँ दोपहर में गर्मी इतनी बढ़ सकती है कि बाहर का काम कम करना ही समझदारी होती है, इसलिए गांव में पुराने समय से ही लोग गर्मी से बचने के लिए अपने पारंपरिक तरीके विकसित करते आए हैं,
1: जैसे मोटे दीवारों वाले घर,
0: जी,
1: छायादार आंगन, हवादार कमरे,
0: जी,
1: और खिड़कियों पर पर्दे। वे कोशिश करते हैं कि उन्हें किसी तरह से दीवारों या पेड़ों की छाया मिल जाए।
0: जी,
1: क्योंकि रेगिस्तान में छाया केवल आराम ही नहीं देती, वो जीवन का सहारा है।
0: श्रोताओ, यहाँ एक और बड़ी चुनौती है, वो है पानी। सच है, जहाँ बारिश कम हो और गर्मी बहुत अधिक हो, वहाँ पानी की हर बूंद की कीमत समझ में आती है।
1: जी हाँ श्रोताओ, राजस्थान के ग्रामीण जीवन में कुएं, टांके, तालाब और पारंपरिक जल संरक्षण की प्राचीन व्यवस्थाएं सदियों से महत्वपूर्ण रही हैं।
0: जी,
1: यहाँ के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आज बचाया हुआ पानी आने वाले दिनों में काम आएगा।
0: यही कारण है श्रोताओं कि यहाँ के रेगिस्तान में रहने वाले लोगों ने पानी को केवल उपयोग की वस्तु नहीं माना बल्कि उसे संपत्ति और जिम्मेदारी की तरह देखा। तो अजीत जी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्यों न हम प्रकृति से यही पाठ सीख लें।
1: जी हाँ विमलेश जी, आपने ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी। और अब बात करते हैं वहाँ के भोजन की। गर्मी और शुष्क वातावरण के कारण राजस्थान का पारंपरिक भोजन भी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विकसित हुआ है।
0: जी,
1: वैसे विमलेश जी, क्या खाते हैं वहाँ के लोग?
0: अजीत जी, वहाँ बाजरा, ज्वार जैसे मोटे अनाज, दालें, सब्जियां और लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थ भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, इसलिए तो बाजरे की रोटी, दाल और स्थानीय सब्जियां राजस्थान के प्रसिद्ध भोजन का हिस्सा हैं।
0: लेकिन अजीत जी, फिर वही बात जो हमने पिछले कार्यक्रम में कही थी, राजस्थान के इन गांवों की जिंदगी केवल गर्मी और पानी की कहानी नहीं है।
1: यहाँ की सबसे

0: बड़ी खूबी है लोगों की सहनशीलता और अनुकूलन की क्षमता
1: जी,
0: यानी स्वयं को वहाँ के वातावरण में ढालने की क्षमता।
1: रेगिस्तान ने लोगों को सिखाया है कि जो कुछ हम बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करके जीवन में प्रसन्न रहना चाहिए
0: जी।
1: कई बार प्रकृति को समझना और उसके अनुसार जीवन बनाना ही बुद्धिमानी है।
0: जी हाँ श्रोताओ, जरा सोचिए, हम शहर में गर्मी कुछ डिग्री बढ़ते ही परेशान हो जाते हैं। एयर कंडीशनर चाहिए, कूलर चाहिए, ठंडा पानी चाहिए,
1: लेकिन राजस्थान के गांवों में न जाने कितनी पीढ़ियों ने सीमित साधनों में जीवन को आगे बढ़ाया है। उन्होंने मिट्टी, पत्थर, हवा, छाया और पानी जैसे प्राकृतिक साधनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है और शायद यही हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है।
0: क्या सीख विमलेश जी?
1: यही कि जीवन हमेशा हमारी सुविधा के अनुसार नहीं चलता
0: जी।
1: जीवन में भी तो मौसम बदलते हैं, कभी गर्मी आएगी तो कभी बारिश बहुत ज्यादा होगी तो कभी सूखा पड़ेगा, कभी रास्ते कठिन होंगे, लेकिन इंसान की असली ताकत इस बात में है कि वो बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को कैसे ढालता है।
0: तो आप सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है तीन बुद्धिमान।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है।
0: तीन बुद्धिमान।
2: बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में किसी निर्धन व्यक्ति के तीन पुत्र थे, विक्रम, प्रताप और धीरेंद्र। एक दिन उसने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहने लगा,
3: मेरे पुत्रों।
4: जी पिताजी।
3: देखो, अब मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है
4: पिताजी।
3: क्या पता कब लोग सिधार जाऊं।
4: पिताजी ऐसा ना कहिए, अभी आपका जीवन बहुत लंबा है।
3: नहीं विक्रम बेटे, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे पास ना धन है और ना सोना चांदी। तुम लोगों को कुछ और ही करना होगा।
5: लेकिन पिताजी, हम क्या कर सकते हैं? ना खेत है और ना कोई दूसरा काम।
4: जी
3: पुत्र, तुम लोगों को दूसरे तरीके से धन अर्जित करना होगा।
4: लेकिन कैसा तरीका पिताजी?
3: बेटा धीरेंद्र, देखो, धन दौलत जैसी चीजें स्थाई नहीं हैं। आज हैं तो कल नहीं
4: जी।
3: लेकिन एक ऐसी चीज है जिससे बढ़कर दुनिया का कोई धन नहीं हो सकता, और वो है बुद्धिमत्ता।
4: जी पिताजी।
3: हर वस्तु और स्थिति को ठीक ठीक समझने का प्रयास करो।
4: जी पिताजी, हम प्रयास करेंगे।
2: समय बीता और कुछ समय बाद पिता चल बसे। सभी बेटे एक दिन मिलकर बैठे और विचार किया,
6: हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं।
5: हाँ तुम ठीक कहते हो भैया, तो क्यों ना हम एक काम करें।
6: भला वो क्या? चलो घूम फिर कर जगत देखें, कुछ ज्ञान प्राप्त करें। पिताजी कहते थे ना कि घूमने फिरने से भी जब हम चीजों को, स्थितियों को देखते हैं तो ज्ञान बढ़ता है।
5: हाँ ये ठीक रहेगा भैया।
2: तीनों भाई चल दिए। लंबी यात्रा थी। खाने पीने का सामान जब समाप्त हो गया तो उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले गांव के खेतों में मेहनत मजदूरी की। रास्ते में वे जो कुछ भी देखते बड़े ध्यान से उसका अवलोकन करते और निष्कर्ष निकालते। चलते चलते वे अंत में किसी नगर के पास पहुंचे। नगर के पास एक मैदान था जिसकी मिट्टी रेतीली थी। सबसे बड़ा भाई चलते चलते रुक गया। उसने ध्यान से मिट्टी को देखा और बोला,

0: भाई प्रताप, मुझे लगता है कि यहाँ से कोई ऊंट गुजरा है।
1: जी भैया, और वो भी बड़ा वाला ऊंट। पैर के चिन्हों से तो यही लगता है। क्यों भाई धीरेंद्र?
2: जी भैया, आप ठीक कह रहे हैं।
0: मुझे लगता है कि ऊंट के साथ एक महिला और एक बच्चा था।
3: वे बातचीत कर ही रहे थे कि एक घुड़सवार उनके पास आकर रुका।
0: महाशय, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं?
2: हाँ,
1: आपका ऊंट खो गया है ना?
2: हाँ, मेरा ऊंट खो गया है। हमें सब पता है महाशय, आपका ऊंट एक आँख से देख नहीं पाता है ना?
4: हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता?
0: महाशय, हमें तो ये भी पता है कि उस ऊंट के साथ एक महिला और एक बच्चा भी था।
4: है?
0: आप सीधा उत्तर दिशा की ओर जाएं, आपको वहाँ ऊंट मिल जाएगा।
4: ऊंट मिल जाएगा? अरे ऊंट तुम लोगों के ही पास है।
5: नहीं नहीं,
4: अरे नहीं, उसे कहाँ छिपा के रखा है?
5: अरे महाशय, हमने तो ऊंट का मुंह तक नहीं देखा।
4: ऊंट का मुंह तक नहीं देखा?
0: नहीं
4: तो तुम्हें उसके बारे में सारी बातें पता कैसे चली?
0: वो
4: देखो, मेरा ऊंट मुझे लौटाओ।
0: लेकिन
4: अरे, अरे, अरे तुम लोग ठग मालूम होते हो।
0: क्या?
4: मैं कुछ भी सुनने को तैयार नहीं
0: हूँ।
3: भाइयों ने बहुत समझाया, लेकिन वो घुड़सवार सुनने को तैयार ही नहीं था।
4: मुझे कुछ नहीं सुनना।
5: लेकिन महाशय, हमारी बात सुन ले महाशय।
4: मगर ये निकाली मैंने अपनी तलवार। अब चलो मेरे आगे आगे चलो चलो चलो।
3: इसी बीच उसका भाई भी आ गया। घुड़सवार ने अपने भाई को ऊंट ढूंढने के लिए भेज दिया और तलवार के बल पर उन्हें राजा के पास ले गया।
4: अब तुम सब राजा के पास चलो।
6: दुहाई है महाराज, इन लोगों ने मेरा ऊंट चुराया है, मुझे न्याय चाहिए महाराज।
0: राजन, हम चोर नहीं है, हमने तो ऊंट का मुंह तक नहीं देखा।
7: तुम्हें कैसे पता कि ऊंट इन लोगों ने ही चुराया है? ये तो कहते हैं कि इन्होंने ऊंट को देखा तक नहीं।
6: महाराज, यदि ये कहते हैं कि इन्होंने ऊंट को देखा तक नहीं, तो ऊंट के बारे में मुझे इन्होंने सब कुछ बता कैसे दिया?
7: तुम लोगों को कुछ कहना है?
5: राजन, हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि कुछ भी अपनी दृष्टि से चूकने नहीं देते। हमने परिवेश को समझने में बहुत समय लगाया है, इसलिए बिना देखे ही हमने सब कुछ बता दिया।
7: अच्छा, तो ये बात है।
5: जी,
7: हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेते हैं। द्वारपाल
8: जी महाराज।
3: राजा ने अपने द्वारपालों को बुलाया और उनके कान में कुछ फुसफुसाकर कहा। थोड़ी ही देर में द्वारपाल एक पेटी लेकर आए और उसे राजा के सामने रख दी।
7: अब बताओ कि इस पेटी में क्या रखा है?
0: महाराज, इस पेटी में कोई गोल वस्तु है, अनार है।
5: और महाराज, वो अनार कच्चा है।
3: जब पेटी खोली गई तो उस पेटी में सचमुच कच्चा अनार रखा था। बात बिल्कुल सही थी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन मंगवाए और लगा उनकी आवभगत करने।
9: खाइए खाइए, लीजिए।
5: जी महाराज,
9: धन्यवाद।
3: फिर पूछा,
7: तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि पेटी में अनार है?
5: महाराज, जब वे पेटी रख रहे थे तो अंदर से किसी चीज के लुढ़कने की आवाज आई। हम समझ गए कि ये कोई गोल वस्तु है।
10: और महाराज, हमने ध्यान दिया कि द्वारपाल किधर जा रहे हैं। वे आपके राज उद्यान की ओर जा रहे थे, जहाँ अनार के बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं।
0: और महाराज, अभी अनार पकने का समय ही नहीं आया तो हमने जान लिया कि अनार कच्चा है।
7: वाह,

0: बहुत खूब।
1: राजा बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसकी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। उसने फिर पूछा,
0: तो अब ये बताओ कि तुमने ऊंट के बारे में बिना देखे कैसे जान लिया?
2: महाराज, वहाँ पर मिट्टी भुरभुरी थी। हमने ऊंट के पद चिन्हों से जान लिया कि ऊंट बड़ा है।
0: क्या बात है?
3: महाराज, उस मिट्टी पर जूतों के निशान थे। ये जूते महिला के थे और साथ ही साथ छोटे छोटे पैरों के निशान भी थे।
0: अच्छा,
3: इससे हमने जान लिया कि महिला के साथ कोई बच्चा भी है।
0: जी बहुत खूब। लेकिन तुमने ये कैसे जाना कि ऊंट एक आंख से ही देख पाता है?
4: राजन, इसका पता लगाना तो बहुत ही आसान था। सड़क की दाहिनी ओर की घास तो ऊंट ने चरी थी, लेकिन बाईं ओर की घास जो कि त्यों थी।
0: उत्तम, अति उत्तम। वाह, तुम लोगों की बुद्धि श्रेष्ठ है।
5: धन्यवाद महाराज।
3: जी महाराज, शुक्रिया महाराज।
0: मैं सचमुच चकित हूँ।
5: जी महाराज।
1: फिर क्या था, राजा ने तीनों भाइयों को अपने दरबार में रख लिया और उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया।
6: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम तीन बुद्धिमान। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। और अब सुनते हैं कार्यक्रम सरला ठकराल, भारत की पहली महिला पायलट।

0: सफलता की बुलंदियों को सभी छूना चाहते हैं, कामयाबी सभी हासिल करना चाहते हैं,
1: लेकिन कामयाबी उन्हीं के कदमों को चूमती है जो दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम के साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं।
0: आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो अपनी लगन और कार्यनिष्ठा से लाखों करोड़ों लोगों की और विशेषकर महिलाओं की प्रेरणा स्रोत बन गई।
1: वे हैं सरला ठकराल, जिन्हें सन 1936 में मात्र 22 वर्ष की आयु में भारत की पहली महिला पायलट यानी विमान चालक बनने का श्रेय प्राप्त है।
0: भारतीय उड्डयन के इतिहास की बात करें तो अनेक महिलाएं हैं जिनका नाम उल्लेखनीय है, लेकिन वो प्रथम महिला कौन है जिन्होंने सबसे पहले इन सब के लिए मार्ग बनाने की शुरुआत की? जी हाँ, उनका नाम है सरला ठकराल। उनका जन्म 8 अगस्त सन 1914 को दिल्ली में हुआ था। तब भारत में ब्रिटिश राज था। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह लाहौर निवासी श्री पीडी शर्मा से हुआ। विवाह के बाद वो अपने पति के साथ लाहौर चली गईं। सरला के परिवार की एक बात बहुत दिलचस्प थी और वो ये कि उनके परिवार में 9 लोग ऐसे थे जिनका संबंध सीधा उड्डयन से था। पति भी अक्सर सरला को प्रोत्साहित करते। सरला को प्रशिक्षण दिलाने का बीड़ा उठाया उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी ने। एक दिन की बात है,
2: सरला, सरला बेटी, सरला बेटी।
3: अरे बाबूजी, आप
2: कहाँ खोई हो बेटी?
3: आप
2: जरा मैं भी तो जानूं कि क्या सोच रही है मेरी बेटी।
3: जी, मैं सोच रही थी कि मैं भी खाली समय में कुछ कर लेती।
2: बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। बेटा एक बात कहूँ?
3: जी
2: बेटा, मैंने अक्सर देखा है जब भी हम हवाई जहाज की उड़ान की पायलटों की बात करते हैं तो तुम बड़े शौक से सुनती हो।
3: जी बाबूजी, मुझे ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है।
2: तो फिर देर किस बात की, लाहौर फ्लाइंग क्लब के प्रमुख मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं।
3: अच्छा,
2: मैं उनसे कल ही बात करूंगा।
3: पर
2: मुझे लगता है तुम्हें वहां से पायलट बनने

0: की ट्रेनिंग लेनी चाहिए।
1: लेकिन बाबूजी मैं धन्यवाद बाबूजी।
0: ये बात हुई ना बेटा। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस।
2: साथियों, दूसरे ही दिन श्री शर्मा सरला को फ्लाइंग क्लब ले गए। इसके लिए एक परीक्षा देनी होती थी। सरला शुरू से ही पढ़ाई में कुशाग्र बुद्धि थी। उन्होंने तैयारी की और वे प्रथम प्रयास में ही सफल हो गईं। मेडिकल जांच व अन्य औपचारिकताओं के बाद उनका दाखिला लाहौर फ्लाइंग क्लब में हो गया। और अब शुरू हुआ उनका प्रशिक्षण। आज प्रशिक्षण का पहला दिन था।
3: साथियों, मैं आप सबका लाहौर फ्लाइंग क्लब में डेप्यूटी चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की हैसियत से स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सबको बधाई देता हूं पायलट बनने की ट्रेनिंग में चुने जाने के लिए।
4: धन्यवाद सर।
3: देखिए, कुछ मायनों में हमारा ये सत्र पिछले सभी सत्रों से बहुत अलग है। क्या आप बता सकते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ?
5: सर, मुझे तो सब कुछ वैसा ही लग रहा है।
3: सब कुछ वैसा तो नहीं है, कुछ तो नया है।
6: सर, मैं बताऊं सर।
3: हाँ, कहो।
6: सर, मुझे लगता है पहली बार पायलट की ट्रेनिंग के लिए हमारे बीच एक महिला मित्र हैं।
3: बहुत खूब, पर तुम्हें कैसे पता कि ऐसा पहली बार हुआ है?
6: पिछले सप्ताह एक समाचार पत्र में छपा था।
3: बहुत अच्छे, वेरी वेल ऑब्जर्व। देखिए, पायलट बनने की पहली शर्त है आसपास की बातों का गहराई से अवलोकन करना।
1: हाँ, जी, सही बात।
3: एक पायलट को हमेशा सजग रहना होता है। अच्छा, अब बताओ कि और कौन कौन सी खूबियाँ एक पायलट में होनी चाहिए।
1: सर, मैं बताऊँ?
3: हाँ, सरला तुम बताओ।
1: सर, मुझे लगता है कि एक पायलट में सकारात्मक दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है। उसमें लगातार सीखने की इच्छा होनी चाहिए और उच्च दबाव या तनाव में भी अच्छी तरह से काम कर पाने की काबिलियत होनी चाहिए।
3: बहुत अच्छे सरला।
1: धन्यवाद सर।
3: तो साथियों, तकनीकी ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन ये व्यक्तिगत खूबियाँ यदि आप में हैं, तो बेशक एक दिन आप बेहतरीन पायलट बनेंगे। इस ट्रेनिंग के दौरान मैं आप सब से यही उम्मीद करूंगा। ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू सर।
2: प्रशिक्षण शुरू हुआ। इसमें सफलता उन्हीं को मिलती है जिनमें कठोर परिश्रम, कार्य के प्रति समर्पण और एकाग्रता होती है। साथियों, पायलट बनने के लिए ए श्रेणी का उड्डयन लाइसेंस प्राप्त करना होता था और इसके लिए उन्हें 1000 घंटे की उड़ान पूरा करना जरूरी था। और आखिर वो दिन आ गया जब उन्होंने 1000 घंटों की उड़ान बिना व्यवधान के पूरी की।
7: जिस दिन उनके प्रशिक्षण की आखिरी उड़ान थी, उस दिन उनका पूरा परिवार, मित्रगण, पत्रकार और भी कई गणमान्य लोग हवाई अड्डे पर मौजूद थे।
2: मीडिया के लिए एक महिला द्वारा प्रशिक्षण पूरा करना खासा दिलचस्पी का विषय था। उड़ान शुरू हुई।
8: 1000 घंटों की ट्रेनिंग पूरी होना मजाक नहीं होता।
1: I'm so excited.
8: पहली महिला पायलट बनना हम देखेंगे अपनी आँखों से।

0: लैंडिंग
1: कमाल,
2: थैंक यू,
3: बहुत सर लगी,
2: थैंक यू, धन्यवाद,
3: आप कितने अच्छे तरीके से चले गए, अमेजिंग।
4: जब वो अपने जिप्सी मौत विमान से उतरकर लाउंज में आई तो लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया।
5: दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने साड़ी पहनकर ये उड़ान भरी थी और उन दिनों वे 4 वर्ष की एक बेटी की माँ भी थी।
4: इस प्रशिक्षण के बाद उन्हें वायुयान उड़ाने का 1 क्लास लाइसेंस प्रदान किया गया। समाचार पत्रों ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में जनता को बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
5: वायुयान उड़ाने का लाइसेंस प्राप्त करने के बाद उनका अगला लक्ष्य था विमान उड़ाने का व्यावसायिक या कमर्शियल लाइसेंस प्राप्त करना। लेकिन इसी बीच उनके जीवन में एक दुखद घटना घटी।
4: सन 1939 में उनके पति श्री शर्मा का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। उन्होंने जोधपुर आने का निर्णय लिया और कमर्शियल लाइसेंस के लिए वे प्रयास करती रहीं। अंततः उन्हें लाइसेंस मिल गया और अब वे लंबी दूरी की व्यावसायिक उड़ानों के लिए तैयार थीं। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और सभी नागरिक उड़ानें रद्द कर दी गईं। लेकिन हिम्मत की धनी सरला ने हार नहीं मानी और मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लेकर ललित कला और पेंटिंग की क्लास में दाखिला लिया और ललित कलाओं की अन्य विधाओं का उन्होंने गहरा अध्ययन किया।
5: उन्होंने वस्त्रों और आभूषणों के एक से एक डिजाइन बनाए और उनका पेटेंट लिया।
4: सुप्रसिद्ध अखबार द ट्रिब्यून को साक्षात्कार देते हुए उन्होंने कहा था,
6: मुझे लगता है कि हमारे पास लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ और विकल्प भी हमेशा होने चाहिए। जब मैंने वस्त्रों और आभूषणों का डिजाइन तैयार किया तो उस समय की लगभग सभी प्रसिद्ध महिलाओं को ये डिजाइन बहुत पसंद आए। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये थी कि एक बहुत बड़ा कुटीर उद्योग खड़ा हो गया जिसने बहुत सी महिलाओं को 20 वर्ष तक सम्मानजनक रोजगार दिया।
4: अपने जीवन में सफलता के कई आयामों को छूने वाली सरला ठकराल का 15 मार्च 2008 को दिल्ली में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आकाश में पुरुषों के वर्चस्व को तोड़ने वाली भारत की इस प्रथम महिला पायलट का जीवन साहस और आत्मविश्वास का एक अनूठा उदाहरण है जो महिलाओं के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
7: तो अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है, तो मुझे यानी अजीत को
8: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
7: नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 10:30 हो रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है हमारा खास कार्यक्रम जोहार रांची, और आज के अंक में आपके साथ मैं हूं आभा और मेरे साथ है
1: विनोद।
0: आप सभी को हमारा जोहार।
1: सावन की फुहार और भाई बहन के पवित्र प्रेम का उल्लास आज सुबह से ही रांची की फिजाओं में एक अलग ही रौनक है। कलाई पर बनने वाले रेशमी धागे और मुंह मीठा कराने की खुशबू हर तरफ है।
0: बिल्कुल, रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा नहीं है, यह विश्वास और अटूट

0: स्नेह का प्रतीक है। बहने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई जो है उनकी रक्षा का वचन लेते हैं। रक्षाबंधन केवल भाई के प्रेम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति की रक्षा और सम्मान का संकल्प है जिसे सुरक्षा और स्नेह की आवश्यकता है।
1: साथ ही झारखंड की परंपरा की अगर हम बात करें तो प्रकृति की रक्षा का संदेश भी इस पर्व से जुड़ा हुआ है। कई जगह हमारे लोग

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम जोहार रांची में। और अब बातें करते हैं और जानते हैं आज के मौसम का हाल। तो राज्य के मौसम के लगातार बिगड़े रहने से आम दिनचर्या भी प्रभावित होने लगी है। जैसे कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव वाला क्षेत्र बनने से झारखंड के कई जिलों में बारिश हो रही है और मानसूनी चक्रवाती हवा के कारण आकाश में घने बादल छाए हुए हैं।
3: बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मौसम का जो है उतार चढ़ाव जारी है। कभी धूप, कभी छाव, कभी बादल का क्रम लगातार जारी है। अगर हम मौसम विज्ञान केंद्र की बात करें तो जो पूर्वानुमान है 28 अगस्त यानी कि आज की हम बात कर रहे हैं, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह में भारी बारिश व वज्रपात की चेतावनी दी गई है। और वहीं रांची सहित अन्य जिलों में आकाश में बादल छाए रहेंगे व दिन में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है।

0: आबहवा अगर हम बात करें तो अभी हम लोग मौसम की बात कर रहे थे और ये देखा जाता है कि जब भी मौसम में परिवर्तन होता है, मौसम में बदलाव होता है, जो कि नियम ही है, और अभी देखा जाए तो बरसात का मौसम है, गर्मी के बाद बरसात और बरसात के बाद फिर ठंड दस्तक देगी, तो कुल मिलाकर देखा जाए जो लगातार बारिश का जो भी माहौल चल रहा है, तो अपने साथ जब भी मौसम बदलाव होता है तो कुछ अपने साथ बीमारियां भी लेकर आता है मौसम। और अभी खासकर देखा जाए तो केवल हम राजधानी और पूरे झारखंड की क्या बात करें, पूरे देश में ही अगर देखा जाए तो स्वाइन फ्लू ने दस्तक दी है, जो अपने राज्य का जो सबसे बड़ा अस्पताल है रिम्स, वहाँ भी अब तक अगर देखा जाए तो करीब 24 संक्रमित पाए गए हैं इससे। तो होता क्या है कि सामान्य तौर पर जो इसके लक्षण होते हैं तो लोग सोचते हैं कि ठीक है कल डॉक्टर को दिखा लिया जाएगा, परसों दिखा लिया जाएगा, लेकिन इसमें कभी भी लापरवाही बरतने की आवश्यकता नहीं है। जब भी इससे संबंधित लक्षण अगर दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और लक्षण क्या है आप बताएं।
1: हाँ, स्वाइन फ्लू को लेकर जो हम घबराते हैं तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये जो फ्लू है वो बिल्कुल कोरोना काल में जो हम देखे थे वो चीजें इसमें होती हैं, जैसे कि तेज बुखार, खांसी, गले में खराश और सांस लेने में परेशानी और शरीर दर्द जैसे लक्षण इसमें दिखते हैं। और इसके बाद अगर शरीर का तापमान 104 या 105 डिग्री तक पहुंच जाए और गले में तेज दर्द हो तो तत्काल डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।
0: और अगर जहां तक आपने ठीक कहा कि ये बहुत ऐसी घबराने वाली बात नहीं है कि स्वाइन फ्लू को अगर हम कहते हैं कि कोरोना काल के दौरान जो सावधानी बरती गई थी बस उसी का पालन करना है। अक्सर यह वायरस बदलते मौसम में अपना रूप बदल कर लोगों को अपनी चपेट में लेता है, लेकिन 3 से 5 दिनों में सामान्य दवा और बचाव से ठीक हो जाता है। इसके बाद भी अगर शरीर का तापमान 104 या 105 डिग्री तक पहुंच जाए और गले में तेज दर्द हो तो तत्काल डॉक्टर का सलाह लें।
1: और इसमें सावधानियां यह भी बरतनी है कि भीड़ भाड़ जगह जाने से आप बचें और साफ सफाई का खास ख्याल रखें।

0: और अब पलटते हैं इतिहास के पन्ने और देखते हैं आज के दिन देश दुनिया में किस किस तरह की घटनाएं घटी थी।
1: तो इतिहास के पन्ने पलटे तो हम जानेंगे कि 28 अगस्त सन 1600 ईस्वी में मुगलों ने अहमदनगर पर अधिकार किया था। 1904 की बात करें तो आज ही के दिन कलकत्ता से बैरकपुर तक देश की पहली कार रैली का आयोजन किया गया था और 28 अगस्त 1845 में प्रसिद्ध पत्रिका साइंटिफिक अमेरिकन का पहला संस्करण छपा था।
0: और 1916 की अगर हम बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इटली ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी आज के ही दिन। अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन के दौरान मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिंकन मेमोरियल के पास ऐतिहासिक भाषण दिया था।
1: और 1972 में आज ही के दिन भारत में साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण विधेयक यानी कि जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन बिल पारित किया गया था।
0: अगर 1986 की बात करें तो आज के ही दिन भाग्यश्री साठे शतरंजी में महिला ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के सभी नोटों को प्रचलन से हटाने का निर्णय लिया।
1: और इसी वर्ष यानी कि 28 अगस्त 2008 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध मैगजीन फोर्ब्स ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती को दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया। और आज ही के दिन साल 2017 में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में रजत जीता था।

0: हम बात कर रहे थे इतिहास की, तो इतिहास में आप जानते हैं कि आज किन हस्तियों का जन्म हुआ था। तो आज ही के दिन नारायण गुरु, जो भारत के महान संत एवं समाज सुधारक थे, इनका जन्म हुआ था 28 अगस्त 1855 को। और फिराक गोरखपुरी, जो प्रसिद्ध उर्दू शायर, इनका जन्म आज ही के दिन 1896 में हुआ था।
1: और आज के दिन की बात करें तो एक और चर्चित नाम सरस्वती प्रसाद, जो कि चर्चित लेखिका हैं और सुमित्रा नंदन पंत की मानस पुत्री कही जाती हैं, इनका जन्म 1932 में आज के ही दिन हुआ था। इसी तरह 1926 में टीवी राजेश्वर का जन्म हुआ, जो उत्तर प्रदेश, बंगाल और सिक्किम के पूर्व राज्यपाल रहे।
0: और 28 अगस्त 1913 में आबिदा सुल्तान का अवतरण हुआ, जो भोपाल सियासत की राजकुमारी एवं भारत की पहली महिला पायलट थी। 1922 में विजया देवी का जन्म हुआ, जो भारतीय राजकुमारी थी।
1: और आज के दिन 1928 में एमजी के मेनन का जन्म हुआ, जो इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष थे। आज के दिन 1928 को ही विलायत खान का भी जन्म हुआ, जो भारत के प्रसिद्ध सितार वादक रहे। 28 अगस्त 1942 की अगर बात करें तो नरेंद्र चंद्र देव वर्मा का जन्म हुआ, एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे, जो इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के अध्यक्ष और ऑल इंडिया रेडियो अगरतला के निदेशक भी रहे।
0: और बात करें 1975 की, तो आज ही के दिन अनुज नैयर का जन्म हुआ, जो मरणोपरांत सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैन्य अधिकारी थे। और 1992 में जन्म हुआ अन्नू रानी का, जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाली खिलाड़ी हैं।

0: और अब कुछ बात करते हैं, अगर आप रोजाना स्मार्टफोन पर रील्स स्क्रॉल करते हैं तो ये आदत आपकी आंखों और दिमाग दोनों को थका सकती है।
1: बिल्कुल,
0: ये एक नई रिसर्च में खुलासा हुआ है और यह शोध जो है वो मोमेंट रिसर्च में प्रकाशित किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि 20 मिनट से ज्यादा स्मार्टफोन चलाना शरीर और दिमाग दोनों के लिए हानिकारक है। तो आवाज की दुनिया के दोस्तों जो ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जरूर कोशिश करें कि खासकर मतलब कि जो छोटे बच्चे हैं उनको जो बचपन से ही आदत पड़ जाती है, माएँ भी जो हैं वो कभी कभी करती हैं कि चलो हम काम में व्यस्त है तो बच्चों को मोबाइल पे मोबाइल दे दिए ताकि बच्चे उसमें इंगेज रहे, तो यही आदत जो है आगे चलकर बहुत परेशानी का सबब बन जाता है, तो इससे बचने की आवश्यकता है।
1: हाँ, और इस अध्ययन में ये भी बताया गया है कि आंखों की सेहत पर सिर्फ मोबाइल का इस्तेमाल नहीं बल्कि कंटेंट का प्रकार भी असर डालता है, और जब हम सोशल मीडिया रील्स देखते हैं तो आंखों की पुतलियों में उतार चढ़ाव ज्यादा होता है जो बुक पढ़ने या वीडियो देखने की तुलना में आंखों पर कहीं अधिक दबाव डालता है।
0: और अगर हम ये कहें कि अगर लंबे समय तक स्मार्टफोन उपयोग से न केवल आंखों पर असर पड़ता है बल्कि यह मानसिक थकान और नींद से जुड़ी समस्याओं को भी जन्म देता है,
1: तो इन सब से बचने के लिए आप ब्लू लाइट फिल्टर डार्क मोड को अपनाकर इस परेशानी को कम कर सकते हैं, और छोटे छोटे ब्रेक लेना और आंखों को आराम देना डिजिटल स्ट्रेन से बचाव का सबसे आसान उपाय है।

0: तो अब समय हो चला है कार्यक्रम को यहीं विराम देने का। तो अपने भाई बहन के साथ इस पावन पर्व का आनंद लें और खूब मिठाइयाँ खाएं और सुरक्षित रहें। और आकाशवाणी रांची की पूरी टीम की ओर से एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयाँ,
1: शुभकामनाएं।
0: आभा और
1: विनोद को दीजिए
0: आज्ञा,
1: इजाजत,
0: जुहार,
1: नमस्कार,
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जुहार रांची, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं वार्ता, सामाजिक समरसता का पर्व रक्षाबंधन पर। वार्ताकार होंगी ब्रह्म कुमारी निर्मला।
1: बंधन प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को बड़े उमंग उत्साह के साथ भारतवर्ष और विश्व के अन्य भागों में प्रवासी भारतीयों द्वारा मनाया जाता है। पूर्ण चंद्र जो परिपूर्णता और अमरत्व का प्रतीक है, श्रावण नक्षत्र में इसी समय रहता है, इसलिए ऋतु और काल की दृष्टि से रक्षाबंधन भारतीयों का प्रधान पर्व है। सारे समाज की कल्याण की कामना को रखते हुए मानव के सर्व विकारों और दुखों से रक्षा करना ब्राह्मणों का कर्तव्य है, और इसी शुभ भावना और शुभाशय से प्रेरित होकर वे इस दिन रक्षाबंधन का अनुष्ठान करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवराज इंद्र और दैत्य राज के मध्य 12 वर्षों तक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में असुरों ने देवताओं पर विजय पाई। पराजित देवगण श्रीहीन और सर्व अलंकार धर्म एवं क्षीण जीवन से देवराज चंद्र ने मरना श्रेयस्कर समझा और असुरों से अंतिम और एवं प्राणांत युद्ध करने का संकल्प किया। वो श्रावण शुक्ल चतुर्दशी का दिन था, अतः देवगुरु बृहस्पति ने अगले दिन श्रावण मास की पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त में कल्याण एवं विजय की कामना से इंद्र को रक्षा का बंधन बांधा। तत्पश्चात इंद्राणी ने मंगलाचरण के साथ इंद्र के दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधा और इंद्र विजयी हुए। ये रक्षाबंधन सर्व व्याधियों का विनाश करने वाला और सर्व अशुभों का नष्ट करने वाला है। जो व्यक्ति इसका

अनुष्ठान करता है वो सभी विकारों से मुक्त रहता है। लोग मानते हैं कि इंद्राणी द्वारा इंद्र के इस प्रकार रक्षा सूत्र बांधने को लेकर ही कालांतर में बहनों द्वारा भाइयों को रक्षा बंधन बांधने की प्रथा चल निकली होगी। कुछ एक का ये विचार है कि पत्नी को तो दान दक्षिणा आदि दी नहीं जाती, इसलिए सौभाग्यवती बहन से राखी बंधवा कर उसका शुभ आशीर्वाद लिया जाए, ये सोचकर राखी का त्योहार शुरू हुआ। रानी कर्मवती ने बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर संकट के समय अपना भाई बनाया था। ये समझना कि राखी बांधकर बहन भाई के संकट के समय अपनी रक्षा का प्रण करवाती है उचित प्रतीत नहीं होता है। उपयुक्त पौराणिक कथा के अनुसार तो बृहस्पति और इंद्राणी ने इंद्र की रक्षा के लिए रक्षा बांधी थी, न कि स्वयं की रक्षा के लिए। ये उचित है कि इंद्र की सुरक्षा और हित में उन दोनों की सुरक्षा भी सन्निहित थी। भारतीय नारी प्राचीन काल से ही शक्ति, सामर्थ्य और सहिष्णुता की साक्षात प्रतिमा मानी गई है। उसका स्वरूप सीता और लक्ष्मी में दिखाई देता है। नारी का अबला रूप एक परिवर्ती विचारधारा है और मध्य काल में बर्बर विदेशी आक्रमण कारियों और भारतीयों की पारंपरिक फूट की उपज है। कभी कभी तो कन्या या स्त्री का अपना कोई भाई नहीं होता, या वो सुदूर देश का ये निवासी होता है, अथवा उम्र में बहुत छोटा और दुर्लभ निर्धन हो सकता है। ब्राह्मण भी इस अवसर पर अपने यजमानों को राखी बांधते, परंतु उनमें भी यजमानों द्वारा अपनी रक्षा की कोई भावना नहीं होती है। अतः ये निष्कर्ष निकाल लेना कि बहनें भाइयों को संकट में अपनी रक्षा की कामना से रक्षा बांधती हैं उचित प्रतीत नहीं होता। एक आख्यान के अनुसार यम के बारे में लोग कहते हैं कि वो सबको दंड या ताड़ना देता है, अतः मानव मात्र के लिए ये वो भयानक है, परंतु वो अपनी बहन यमुना का तो भाई ही है। अतः जबकि अपनी बहन के लिए भाई वैसे भी स्नेह और संबंध के कारण बाध्य है, तो रक्षा बंधन तो शारीरिक रक्षा के लिए रस्म कामना विवेक संबंध नहीं प्रतीत होता है। वास्तव में रक्षा बंधन का श्री गणेश किसी अन्य अभिप्राय से हुआ था, किंतु समय अंतराल में रक्षा और बंधन इन शब्द का गलत अर्थ लेने के कारण इसका अर्थ और स्वरूप भी बदल गया। तो सबसे पहली भूल ये हुई कि रक्षा शब्द का अर्थ शारीरिक मान लिया गया। यद्यपि रक्षा शब्द एक अर्थ शारीरिक रक्षा भी है, लेकिन रक्षा शब्द के और भी अर्थ हैं। और जिस शब्द के अनेक अर्थ हो उसका भी अर्थ प्रसंग के अनुसार ठीक बैठता हो वही लेना बुद्धिमत्ता है। अब जानने योग्य बात ये है कि रक्षा शब्द का एक प्रयोग गंभीरतापूर्ण किसी रहस्य की रक्षा के लिए भी होता है। अपने मन में किसी बात को हम संभाल कर रखते हैं, उसे अन्य लोगों को नहीं बताते, ये रहस्य रक्षा है। रहस्य रक्षा अर्थात रहस्य रक्षा करता है, इसका प्रयोग हुआ है। यहाँ पर रक्षा का अर्थ शारीरिक रक्षा लेना भूल होगा। इस प्रकार आपदा के समय के लिए कुछ धन बचा कर रखना, ये धन रक्षा है। आपदाएं धन रक्षते, ऐसा संस्कृत में कहा जाता है। पहले जब लोग भूत प्रेत में विश्वास रखते थे, वे रात्रि को एक दीपक जला कर रखते थे जिसे वे रक्षा प्रदीप कहते थे। उनका विचार था कि अंधेरे में ही अशुद्ध आत्माएं किसी कमरे में प्रवेश करती हैं और उत्पात मचाती हैं। जहां प्रकाश हो वहां नहीं आती, तो वहां रक्षा प्रदीप कोई शारीरिक रक्षा के लिए नहीं था, परंतु कमरे में पड़ी वस्तुओं को भी भूत प्रेतों की तोड़फोड़ से बचाने के लिए और मानसिक भय से प्राण त्राण पाने के लिए था। पुराने जमाने में लोग एक प्रकार की ताबीज पहनते थे जिसको वे रक्षा भूषण रक्षामणि कहते थे। इसी तरह अपने धर्म में स्थित रहना, धर्म से न गिरना, ये धर्म की रक्षा है। तो जबकि रक्षा शब्द कई प्रकार से प्रयुक्त होता है, तो हमें जानना होगा रक्षा बंधन में रक्षा का अर्थ क्या है। जैसे रक्षा शब्द का कई अर्थों में प्रयोग होता है, वैसे ही बंधन अथवा बंध शब्द के भी अनेक अर्थ हैं। उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं हमारी आशा बंध गई, तो इस वाक्य में बंध शब्द का अर्थ किसी रस्सी या जंजीर से किसी को बांधना ऐसा नहीं होता है। किसी समझौता या प्रतिज्ञा में किसी को शामिल करना, ये भी एक बंधन कहलाता है। तो देखना होगा कि रक्षा बंधन में बंधन शब्द में किस अर्थ का प्रयोग हुआ है। तो जैसे जैसे रक्षा बंधन का त्योहार समीप आने लगता है, भारतीय समाज में इसे मनाने की भिन्न भिन्न योजनाएं तैयारियां जोर शोर से आरंभ हो जाती हैं। तो आइए भिन्न भिन्न वर्गों द्वारा की जाने वाली तैयारियों पर भी एक नजर डालते हैं। तो पहला, व्यापारिक प्रतिष्ठान नए नए डिजाइन की राखियां बनाते हैं, सप्लाई करते हैं, बिक्री करते ताकि अधिक से अधिक पैसा कमाएं। और दूसरा, अपने अधीनस्थ महिला कर्मचारियों को कुछ अतिरिक्त सुविधाएं, बोनस या कोई उपहार आदि देकर त्योहार की खुशियां बांटते हैं। तीसरा, छोटे बड़े अधिकारी यदि घर से काफी दूर नौकरी करते हैं तो रक्षा बंधन पर इतनी छुट्टियों की आशा रखते हैं कि परिवार में जाकर त्योहारों की खुशियों का साझा कर सके। और चौथा,

अब एक बार राखी बांधने में किस किस भाई से क्या उपहार मिलेगा, राखी बांधने की रस्म पर कितना खर्च होगा, मतलब घाटे का सौदा ना रह जाए, ये महिलाओं की बात आती है। पुरुषों की बात, परिवार में जितनी बहनें हैं उन सबको राखी पर क्या क्या देना है, कितना खर्च होगा, मतलब बजट नियंत्रण में रहे। ऐसे ही सरकार के प्रति देखें, कुछ राज्य सरकारें त्योहार वाले दिन रोडवेज बसों में महिलाओं को निःशुल्क सफर का तोहफा देकर त्योहार में अपनी सहभागिता दर्ज करती है। इस त्योहार के मद्देनजर कुछ संस्थाएं या व्यक्तिगत भी समाज के सक्षम और अक्षम दोनों ही वर्गों को राखी बांधते हैं, जिसके पीछे भी अधिकतर पैसा या प्रचार की ही कामना रहती है। लेकिन दूर तक नजर दौड़ाने पर भी रक्षाबंधन का जो मूल मर्म है कि पुरुष समाज के द्वारा नारी के मान सम्मान या उसकी अस्मिता की रक्षा की जाए, इसकी तैयारियां जोर शोर से हो रही है या ऐसी कोई योजना बन रही हो, ये तो कहीं नहीं दिखता। आज हमें भारत के अद्भुत त्योहारों का मर्म समझने की आवश्यकता है। उसमें भी विशेष रूप से है रक्षाबंधन का वास्तविक रहस्य, क्योंकि ये त्योहार एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय से जुड़ा हुआ है जिसको लेकर आज समूचा विश्व चिंतित है, और ये विषय है दुनिया की आधी आबादी के मान सम्मान की रक्षा। हमारे देश में अधिक खर्च रक्षा पर हो रहा है, लेकिन ये खर्च किस प्रकार की रक्षा पर हो रहा है? देश की आधी आबादी तो खतरे में है, भय के साए में जी रही है। यदि आज महिलाएं घरों में, स्कूल कॉलेजों में, दफ्तरों बाजारों में, मायके या ससुराल में सुरक्षित ही नहीं है, तो फिर रक्षा के नाम पर खरबों रुपए खर्च करने का औचित्य क्या होगा? रक्षाबंधन का केवल इतना सीमित अर्थ नहीं है कि कुछ रुपए भाई के जेब से निकल करके बहन के पर्स में आ जाएं और कुछ महंगे या सस्ते उपहार जो दुनिया की शोभा बढ़ा रहे हैं दुकान की, अब बहन के घर की शोभा बढ़ाएं। ये रस्म तो भाई बहन के बीच इस त्योहार के बिना भी चलती ही रहती है। राखी हर भाई की कलाई पर बांधी जाती है, शायद ही कोई कलाई इस दिन सूनी रहती हो। राखी जेल के सलाखों के भीतर भी जा रही है तो देश की सरहद पर और सरहद के पार भी जा रही है, सामने बैठकर भी और पोस्ट और ईमेल से भी जा रही है। हर एक बहन किसी न किसी को राखी बांधती है, हर भाई किसी न किसी बहन से राखी बंधवाता है। फिर क्यों दिन प्रतिदिन बहनों पर होने वाले अत्याचारों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है? रक्षाबंधन मनाने का वर्तमान स्वरूप जो हमारे सामने है, उसमें राखी बांधना, तिलक लगाना, मुख मीठा करना, उपहारों का आदान प्रदान करना, इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी अत्यंत महत्वपूर्ण घटना का मात्र भौतिक और बाहरी रूप है। असली घटना तो कुछ और ही रही होगी, जो समय के अंतराल में कहीं अदृश्य हो गई और अब हम हर वर्ष कुछ स्थूल रस्म निभाकर त्योहार की इतिश्री कर देते हैं। अब समय आ गया है कि हम नए सिरे से इसके सूक्ष्म पहलू पर विचार करें कि कहीं ये वही महाभारत काल तो नहीं आ गया है जहाँ द्रौपदी को 5 पति होते हुए भी उसके अस्तित्व की रक्षा के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ा था। आज भी ये नारी को, हर नारी को ये 5-5 पति हैं। आइए देखें कौन है ये 5 पति। पहला धनवान, आज नारी आर्थिक रूप से सशक्त है, आत्मनिर्भर है। दूसरा बलवान, शस्त्र चलाना, युद्ध लड़ना, जूटो कराटे, बॉक्सिंग, कुश्ती सब जानती है। तीसरा पदवान, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे शीर्ष पदों पर वो आसीन है। चौथा विद्वान, उच्च शिक्षा प्राप्त है। पांचवा भक्तिवान, धर्मपरायण है, ईश्वर में आस्था रखती है। लेकिन इन 5 विशेषताओं अर्थात पतियों की स्वामिनी होते हुए भी आज नारी सुरक्षित नहीं है। कहते हैं जब द्रौपदी का दुशासन के द्वारा चीरहरण होने लगा तो द्रौपदी ने भगवान को पुकारा और उसकी पुकार सुनकर भगवान को आना पड़ा। द्रौपदी आज भी नारी का प्रतीक है और दुशासन कुव्यवस्था का प्रतीक है। द्रौपदी का जिस सभा में चीरहरण हो रहा है उसमें उसके 5 पति, गुरुजन और अन्य संबंधी भी हैं, लेकिन मर्यादा विहीन सामाजिक कुव्यवस्था के कारण किंग कर्तव्य विमूर है। यही धर्मग्लानी का मुख्य लक्षण है, जिसे भगवान का भी जिसने सिंहासन हिला दिया और उसे धरती पर उतार दिया। ऐसी विकराल परिस्थितियों में धरा पर भगवान ने पहला आदेश ही सारी मानवता को यही दिया कि सबसे पहले तुम पवित्रता का व्रत लो, अपने हाथ पर धागा बांधकर ये प्रण करो कि हम नारियों को बहन की दृष्टि से देखेंगे। फिर कुछ नारियों ने भी भगवान के इस कार्य में साथ देने की हिम्मत दिखाई और स्वयं आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने की ठान ली, तो भगवान ने उनको भी ये अधिकार दे दिया कि तुम भी अन्य लोगों को ये धागे बांधो, इससे उससे माताओं बहनों की रक्षा दुशासनों से हो सकेगी।

की याद में रक्षाबंधन के दिन बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं। वर्तमान समय यादगार और प्रैक्टिकल दोनों घटनाओं का संगम काल चल रहा है। एक तरफ तो पिछले धर्मग्लानी के समय भगवान द्वारा किए गए कर्तव्य की धुंधली सी यादगार रक्षाबंधन का वर्तमान स्वरूप हमारे सामने है, और दूसरी तरफ भगवान प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी पवित्र बहनों के द्वारा दुशासन को परिवर्तन कर सुशासन की नींव डाल रहे हैं। यही है रक्षाबंधन का सामाजिक महत्व।

अभी आप सुन रहे थे वार्ता, सामाजिक समरसता का पर्व रक्षाबंधन पर। वार्ताकार थी ब्रह्म कुमारी निर्मला। आपके फरमाइशी गानों का कार्यक्रम आपकी पसंद बस थोड़ी ही देर में।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके सबसे पसंदीदा शो आपकी पसंद में, और मैं हूं आपकी दोस्त आभा। तो हो जाइए तैयार अपने पसंद के गानों को सुनने के लिए। तो चलिए सबसे पहली फरमाइश के साथ शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की आवाज से। फिल्म है दिल तुझको दिया, संगीत और गीत राजेश रोशन का, और इस गाने को सुनना चाहते हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरिंगी से भागवत वर्मा, लिवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लचनपुर से विश्वनाथ साहू, और चरडोंगरी पिपरिया से हैं दुर्गा राम साहू।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: கடற்படை பாரதிய சேனா.
1: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम आपकी पसंद में। तो चलिए कारवां को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला गीत फिल्म खेल से। इस गाने को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने और इस गाने में अपनी आवाजें दी हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज ने। सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं गोंदा टाउन कांके रोड से रमेश प्रसाद जायसवाल, मनदीप, मंटू, मोनू, सोनू और आराध्या। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हैं हरदेव मीका, बलविंदर वीरक, जयतेक वीरक और मीका वीरक।

हमारे अगले श्रोता हैं मिहिर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहानकर राही, सरिता गवहानकर, सिद्धांत गवहानकर और प्रिंस एकांश गवहानकर, और इनकी फरमाइश है अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो का गाया हुआ फिल्म क्या यही प्यार है का गीत। जलीस शेरवानी के शब्दों को संगीत दिया है साजिद वाजिद ने।

हमारे अगले श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म रेड का गाना। गायक कलाकार हैं राहत फतेह अली खान, गीतकार हैं मनोज मुंतशिर और संगीत तनिष्क बागची का है। और ये हैं सरगुजवा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा। बिहारी कॉलोनी से हैं परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम और कुमारी डब्लू डोम।

कार्यक्रम का आखिरी गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, नक्श लैयालपुरी की रचना है, संगीत खयाम का और फिल्म है खानदान। और इस गाने को सुनना चाहते हैं राजा बाजार आरा से सुरेश केसरी, पूनम केसरी, प्रतीक केसरी, थाना रोड बक्सर से हैं ओमानंद केसरी, घनानंद केसरी और विनोद केसरी।

दोस्तों, हर गाने के पीछे एक कहानी होती है और आपकी कहानियों से ही तो यह आपकी पसंद खास बनती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपकी पसंद के अगले सफर में कुछ और फरमाइशों के साथ। तब तक के लिए आभा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। दिन के 12 बजने वाले हैं और ये वक्त होता है महिलाओं का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी का, और आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुभाषिनी और राखी के साथ।

0: खुशियों की बहार है, रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का त्योहार है। सावन में कुदरत ने भी ओढ़ी हरी चुनरिया, रिश्तों और प्रकृति के इस संगम को हमारा नमस्कार है। साथी सखियों, स्वागत है आपका आपके मनपसंद कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में।
1: हाँ बहनों, हम आपको रक्षाबंधन की बधाई देते हैं और साथ ही श्रावण पूर्णिमा की भी। साथ ही हमारे साथ है रेडियो सखी राखी और मैं हूँ सुभाषनी, तो हम दोनों की तरफ से भी सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। आज हम बातें करेंगे श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन, प्रकृति और रिश्तों का पवित्र संगम के बारे में।
0: सखियों, श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन के पावन अवसर पर हम बातें कर रहे हैं हमारे अस्तित्व के दो सबसे खूबसूरत पहलुओं पर जो आपस में जुड़े हैं, है ना सुभाषनी? यानी कि श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन, जो प्रकृति और रिश्तों के पवित्र संगम को दर्शाता है।
1: हाँ, सावन का आज आखिरी दिन है बहनों, और प्रकृति ने अपना पूरा श्रृंगार कर लिया।

0: सबसे अनमोल पर्व रक्षाबंधन मनाया जाता है। कच्चे धागों से बनी एक पक्की डोर जो प्यार और मीठी तकरार की अनमोल कहानी का प्रतीक है।
1: बहन जब भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है तो वह केवल अपनी सुरक्षा का वचन नहीं मांगती बल्कि भाई की लंबी उम्र, तरक्की और खुशहाली की कामना भी करती है। बदले में भाई हर सुख दुख में अपनी बहन के साथ खड़े रहने का संकल्प लेता है।
0: हाँ सखियों, ये धागा विश्वास का है, स्नेह का है और उस जिम्मेदारी का है जो दो दिलों को हमेशा के लिए बांध देती है। बहनों, गौर से सोच विचार करें ना तो जो रिश्ता भाई बहन का है वही रिश्ता इंसान और प्रकृति का भी है।
1: बहुत अच्छी बात कही तुमने सुभाषनी, और सच पूछो तो मैंने इस तरह से कभी सोचा ही नहीं था, और तुम्हारे कहने के बाद अब लगता है कि तुम सच में बहुत ही सटीक बात कह रही हो। प्रकृति हमारी बड़ी बहन या माता की तरह हमारा पालन पोषण करती है। वह हमें हवा, पानी, अन्न और आश्रय भी देती है। बदले में एक भाई की तरह हमारा दायित्व है कि हम अपने प्रकृति की रक्षा करें।
0: वाह, बहुत सुंदर बात राखी। आज के समय में पेड़ काटे जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और नदियां सूख रही हैं। ऐसे में प्रकृति और रिश्तों के इस संगम की प्रासंगिकता और बढ़ गई है।
1: तो हमें अपनी कलाई के साथ साथ इस पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने का संकल्प लेना होगा। रक्षाबंधन का यह पर्व हमें संकुचित सोच से ऊपर उठाकर व्यापक बनाता है और हमें सिखाता है कि कैसे हमें प्रकृति की रक्षा करनी है। इस श्रावण पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम न केवल अपने परिवार और भाई बहनों के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं बल्कि इस धरती, इन पेड़ों और हमारी नदियों की रक्षा भी करें, इसका संकल्प हमें आज लेना चाहिए।
0: रिश्तों की कलाई सूनी न रहे और न सूनी हो ये धरती, रिश्तों की कलाई सूनी न रहे और न सूनी हो ये धरती, चलो एक संकल्प ले आज जिससे महके हमारी धरती।
1: पेड़ों को भी भाई माने और अपनों को भी सम्मान दे, तभी सार्थक होगी इस पावन पर्व की सच्ची हस्ती।

0: देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: विराम के बाद पुनः आपका स्वागत है बहनों आपके ही कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। आपके साथ हैं हम दो सखियां, राखी और सुभाषनी। और सुभाषनी, कुछ और भी बहनों के लिए हम लाए हैं जो खास उनके लिए ही है ना?
5: बिल्कुल बहनों, किसी ने सच ही कहा है कि एक पुरुष को शिक्षित और सशक्त करने से केवल एक व्यक्ति का भला होता है, लेकिन एक महिला को सशक्त करने से पूरा परिवार और आने वाली पीढ़ियां सशक्त होती है।
4: हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। देखा जाए तो आज के डिजिटल युग में महिलाओं को उनकी असली ताकत का एहसास कराने में संचार माध्यम सबसे बड़ा हथियार बन रहा है और उभरा भी है। संचार माध्यमों ने महिलाओं के लिए दुनिया के दरवाजे खोल दिए हैं।
5: हाँ, चाहे वो टेलीविजन हो, रेडियो हो, समाचार पत्र हो या आज का सोशल मीडिया, संचार माध्यमों की बदौलत ही आज दूर दराज के गांवों में बैठी महिलाएं भी अपने अधिकारों को जान रही हैं। घरेलू हिंसा, बाल विवाह और भ्रूण हत्या के खिलाफ बने कानूनों की जानकारी आज TV और इंटरनेट के जरिए हर घर तक पहुंच रही है।
4: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सरकारी अभियानों को संचार माध्यमों ने ही जन आंदोलन बनाया। इसके कारण आज समाज के रूढ़िवादी सोच में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। संचार माध्यमों का सबसे बड़ा योगदान ये है बहनों कि इसने महिलाओं को नए रोल मॉडल्स दिए हैं।
5: बिल्कुल सही कह रही हो। जब TV अखबार में ये खबर आती है ना कि किसी महिला या लड़की ने खेल के मैदान में मेडल जीता है, या फिर संचार माध्यमों के द्वारा ये खबर दुनिया में प्रसारित होती है कि किसी महिला ने अंतरिक्ष में अपनी उड़ान भरी है या व्यापार की दुनिया में नेतृत्व कर रही है, तो उसकी कहानी देश की करोड़ों बेटियों के सपनों को एक पंख दे देती है।
4: बहुत सही बात। संचार माध्यमों ने ही महिलाओं को यह विश्वास दिलाया है कि वह सिर्फ घर संभालने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को बदलने के लिए भी काफी हैं। और आज संचार माध्यमों से आम महिलाएं भी अपनी कला, अपने विचार और अपने हुनर को पूरी दुनिया के सामने रख रही हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बन रही हैं।
5: संचार माध्यम जिस तरह से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहा है बहनों, वहीं दूसरी ओर

0: इसके दूसरे पहलू में चुनौतियां भी हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आज भी कई जगहों पर विज्ञापनों या फिल्मों में महिलाओं को केवल एक वस्तु या पारंपरिक रूढ़ियों में जकड़ा हुआ दिखाया जाता है।
1: ये सचमुच में बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि महिला वो नहीं है जो सामने दिखती है, उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। इंटरनेट पर महिलाओं की सुरक्षा और साइबर बुलिंग एक चिंता का विषय है, इसलिए मीडिया जगत की एक जिम्मेदारी बनती है कि महिलाओं की एक मजबूत तंत्र और निर्णय लेने वाली जो छवि है उसको समाज के सामने पेश किया जाए, सनसनीखेज खबरों के बजाय उनके संघर्ष और सफलता को प्रमुखता दी जाए।
0: बिल्कुल। और सखियों, संचार माध्यम समाज का एक आईना भी है और समाज को बदलने का भी माध्यम है। इसने महिलाओं को उनके मौन को तोड़कर अपनी आवाज उठाने का हौसला दिया है। तो जब तक समाज का आधा हिस्सा यानी हमारी नारी शक्ति जो है, नारी शक्ति जो है, वह पूरी तरह से सशक्त नहीं होगी ना, तब तक देश के विकास की कल्पना अधूरी रह जाएगी।
1: ये तो बिल्कुल ही सही बात है। संचार माध्यमों की शक्ति जो हम महिलाओं को मिली है उसके बारे में जितनी बातें की जाए वो कम है सुभाषनी। तो हम बस इतना ही कहना चाहेंगे बहनों कि अब न छुपाओ खुद को, न तुम अब मौन रहो। अब न छुपाओ खुद को, न तुम अब मौन रहो। ताकत है तुम्हारे पास, तुम जो हो वो खुल कर कहो, वो खुल कर कहो।
0: पंख मिल गए सपनों को, अब छूना आसमां बाकी है, मिटा दो बंदिशें, अभी तो पूरी उड़ान बाकी है।

0: बहनों, आज के दौर में हम महिलाओं की भूमिका केवल घर संभालने तक ही सीमित नहीं है, है ना सुभाषनी? बल्कि परिवार की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में भी हमारा योगदान है।
1: बिल्कुल सही कह रही हो राखी। सिर्फ आमदनी बढ़ाना ही नहीं बल्कि बचत और खर्च के बीच संतुलन बनाना भी महत्वपूर्ण होता है। यानी कि हमें आमदनी के साथ साथ बचत भी करना चाहिए और बचत के कुछ नियम भी होते हैं ना राखी?
0: हाँ हाँ और बचत का सबसे पहला नियम ये है कि खर्च करने से पहले बचत करें, यानी आमदनी का एक हिस्सा पहले बचत के लिए निकालें। यानी अगर आप नौकरी करते हैं तो वेतन आपके पास आता है, व्यवसाय करते हैं तो उससे जो पैसे मिले उसे खर्च करने से पहले थोड़ा उसका एक जो भाग है उसे बचत के लिए निकाल लें, उसके बाद उससे खर्च करें।
1: बिल्कुल। और अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच अंतर करना सीखें। कभी कभी हम लोग वैसी वस्तुओं भी खरीद लेते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती, और खासकर के हम जो महिलाएं होती हैं ना राखी, वो कहीं भी जाए, कुछ मेले में जाए या कुछ सेल लगा हुआ है तो कुछ नहीं भी अगर हमें ज़रूरत है तो बस देख के हमारे मन में लालच आ जाता है और हम क्या करती हैं कि कुछ बिना मतलब की कुछ चीज़ें उठाकर ले आती हैं।
0: हाँ, कई बार घर में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो बर्तन हैं, जो कपड़े हैं, वो भी हम खरीद लेते हैं और बाद में पता चलता है कि उनकी उपयोगिता उतनी थी नहीं, हमारे पैसे भी चले गए और बाद में वो चीज़ें बोझ भी बन जाती है ना?
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि भाई बाजार में तो हर बार नया नया फैशन आ रहा है, नए नए सामान आ रहे हैं,
1: बदलते
0: तो कुछ
1: रहते हैं।
0: दिनों के बाद फिर वो चीजें हमें उबाने लगती हैं।
1: बिल्कुल सही कह रही हो।
0: तो इन चीजों से हमें बचना होगा थोड़ा, ताकि अनावश्यक खर्च हम ना करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस खर्च को हम रोक सकते हैं, जैसे कि अगर महीने में 4 दिन हमें बाहर खाने जाना है रेस्टोरेंट में, है ना, उसका मन है तो उसे हम थोड़ा कम कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि 2 दिन हमें महीने में फिल्म देखनी है तो उसे भी हम थोड़ा 2 की जगह 1 दिन कर सकते हैं, फिर कभी बढ़ा भी सकते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि थोड़ी थोड़ी बचत हमारी हो सकती है, अनावश्यक के खर्चे बच सकते हैं।
1: यानी आवश्यकताओं को भी हम इस तरह से बांट सकते हैं कि जो जितनी भी आवश्यकता है
0: हाँ,
1: वो
0: उसमें कुछ
1: आवश्यकता और जो साधारण जो हमारी आवश्यकता है वो, यानी कि आवश्यक आवश्यकताओं को नहीं छोड़ा जा सकता। ये तो है कि जो हमारी कुछ जैसे दवाएं हो गई और कुछ जैसे हेल्थ की जो कुछ इश्यू है, कुछ बुजुर्ग हैं घर में तो उनके लिए कुछ लेना है, तो बहुत जरूरी चीजें हैं वो हम ले सकते हैं, लेकिन बाकी आवश्यकताओं को थोड़ा कम किया जा सकता है।
0: जैसे बच्चों की शिक्षा है वो भी जरूरी है। अच्छा, कुछ क्या होता है कि आपातकाल के लिए कुछ फंड भी हमें सुरक्षित रखना पड़ता है, क्योंकि हमें ये तो पता नहीं होता ना सुभाषनी कि अचानक से आकस्मिक क्या परिस्थिति आ जाएगी। और कई बार ऐसा होता है, वैसी परिस्थिति आती है उसमें पैसे नहीं होते हैं तो हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए बचत छोटी सही लेकिन करनी चाहिए। अब क्या है सुभाषनी कि हम बहनों को ये भी थोड़ा सा बताते चलें कि बचत के कई सुरक्षित माध्यम भी हैं।
1: हाँ, वो भी जरूरी है जानना कि बचत हम किन चीजों में हम बचत करें।
0: हाँ
1: बिल्कुल।
0: तो जैसे कि हम बैंक, तो सबको पता है, तो बैंक में सेविंग अकाउंट जो हम

0: बोलते हैं नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी रकम उसमें हम जमा कर सकते हैं। उसी तरह से रैकरिंग डिपॉजिट जो होता है आरडी, उसमें भी एक निश्चित राशि हम महीने में जमा कर सकते हैं, जो कि ये सारे पैसे हमारे पास बढ़ के वापस आते हैं, है ना।
1: इसके अलावा हम एफडी कर सकते हैं, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट में अपने पैसे रख सकते हैं। एक मुश्त दो जो रकम होती है उसको किसी निश्चित अवधि के लिए जमा करना जो होता है एफडी, वो हम कर सकते
0: और
1: हैं।
0: अच्छी खासी उसमें हमें आमदनी हो जाती है अगर हम कुछ दिनों के लिए छोड़ते हैं तो, ब्याज दर
1: हाँ
0: जैसी होती है।
1: बिल्कुल।
0: पीपीएफ की अगर हम बात करें तो ये भी है, वो लंबे समय के लिए सुरक्षित बचत का एक माध्यम है, लेकिन हाँ इसमें यह है कि आपको थोड़ा लंबा समय देना होगा अपने पैसों को, तो इसमें अच्छी खासी बचत होती है, ब्याज भी इसमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है।
1: बिल्कुल। और बेटियों के भविष्य के लिए तो विशेष बचत करना ही चाहिए बहनों, तो इसके लिए भी बहुत सारी जो योजनाएं हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स हैं बहुत सारे, डाकघर की विभिन्न बचत योजनाओं का भी आप लाभ ले सकती हैं, और एसआईपी भी कर सकती हैं, यानी नियमित छोटी राशि निवेश करके लंबे समय में धन बनाने का माध्यम इसमें। लेकिन ये भी ध्यान रखना है बहनों कि इनमें बाजार का जोखिम भी होता है, तो इसका ध्यान भी
0: हाँ,
1: रखना
0: तो
1: है,
0: इसलिए
1: और
0: आप
1: अच्छी
0: बहुत
1: तरह,
0: ज्यादा एक बार ना पैसा ये
1: हाँ
0: करें, थोड़ा
1: बिल्कुल
0: थोड़ा जम
1: जानकारी ले लें उसके बारे में अच्छी तरह से।
0: और सोना तो भाई हमेशा के लिए सोना ही होता है ना, शुरू से ये
1: बिल्कुल।
0: पारंपरिक चीज है, तो सोना जो है उसमें भी हम लोग थोड़ा पैसे लगा सकते हैं, जैसे आवश्यकता और बजट के अनुसार सोने में निवेश भी किया जा सकता है।
1: हाँ
0: और आपातकालीन बचत की जैसे हमने बात की सुभाषनी, की अचानक आने वाली जरूरतों के लिए अलग से कुछ राशि भी आपको रखनी चाहिए, आप देख लें कि कहाँ आपके पैसे सुरक्षित हैं। और हम तो ये कहेंगे कि एक जगह कहीं बड़ी राशि लगाने से अच्छा है कि छोटी छोटी बचत करें, और छोटी छोटी राशि कई जगहों पर आप डालें, ताकि एक जगह अगर आपको जोखिम के तहत घाटा भी हो जाता है
1: हाँ
0: तो जो दूसरी बचत है वो आपको संभाल ले।
1: बिल्कुल।
0: तो बचत के लिए बड़ी रकम का इंतजार बिल्कुल न करें, छोटी रकम से नियमित बचत की शुरुआत करें, और आर्थिक आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी बचत ही है। और बचपन में जैसे हम छोटा छोटा गुल्लक बनाया करते थे, उसमें थोड़े थोड़े पैसे डाला करते थे, और जब वो गुल्लक भर जाता था सुभाषनी, तो उसे तोड़ने में कितना एक उत्सुकता होती थी कि पता नहीं इसके अंदर
1: कि कब
0: कितने
1: भरे और
0: पैसे
1: कब हम इसे तोड़े।
0: और फिर
1: बिल्कुल।
0: नया गुल्लक भी तैयार होता था। तो इस तरह से बचत करें और निवेश भी आप करें, क्योंकि भाई आर्थिक युग है, अर्थ प्रधान युग है, तो आपको आर्थिक रूप से तो थोड़ा समझदार बनना ही पड़ेगा।
1: बिल्कुल।
0: और सुभाषनी, बहुत सारी हम जानकारी परक बातें बहनों से करते हैं, और आज है त्योहार का दिन, रक्षाबंधन
1: बिल्कुल।
0: है, तो बहनों को क्यों ना हम फिर से मनोरंजन की दुनिया में ले जाएं, क्योंकि आज बहनें भी
1: त्योहार
0: ऐसे
1: भी
0: मूड
1: है।
0: में हैं
1: हाँ
0: कि उन्हें
1: बिल्कुल
0: थोड़ा गाना सुनने का मन कर रहा होगा,
1: बिल्कुल।
0: तो सुनवाते हैं गीत।

0: सुभाषनी, इतना सुंदर गीत था कि सच में बहनें इस गीत की मधुरता में खो गई होंगी, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और भाई बहनों का हाल हम जानते हैं और हमारा हाल बहनें जानती हैं, और ये प्रकृति की बात हम कर रहे थे तो पत्ता पत्ता बूटा बूटा हमारा हाल तो समझता ही है, और हमें भी समझना होगा कि हाँ। प्रकृति को हमें क्या देना है।
1: बिल्कुल सही।
0: और सुभाषनी देखो ना, बातों बातों में वक्त हो जाता है विदा लेने का, और हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें कहने को रह गई। तो ठीक है सखियों, अगली मुलाकात में बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन अभी बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की, और इसी के साथ अपनी सखी राखी
1: और सुभाषनी को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
2: गृह लक्ष्मी
3: भी आप सुन रहे थे बहनों का कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। आकाशवाणी रांची से अगला कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत।

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम फिल्म संगीत में। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में, बोल है अनजान के संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और फिल्म का नाम है मेहंदी रंग लाएगी।

चलते हैं फिल्म संगीत के अगले पड़ाव की ओर। दोस्तों, सिनेमा के पर्दे पर कई बार ऐसे गीत आते हैं जो सीधे हमारे दिल में उतर जाते हैं। अगला गीत भी कुछ ऐसा ही है जिसे जाने माने गायक ने अपनी जादुई आवाज से सजाया है। तो पेश है अगला गीत किशोर कुमार की आवाज से। फिल्म का नाम है याराना। गीत के बोल लिखे हैं अनजान।

0: उम्मीद है श्रोताओं, गीतों का यह सफर आपको पसंद आ रहा होगा। आकाशवाणी रांची पर फिल्म संगीत का यह सिलसिला अभी थमा नहीं है। छोटे से अंतराल के बाद हम लौटते हैं कुछ और बेहतरीन नगमों के साथ। बने रहिए मेरे साथ।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: ಸ್ವಯಂ ಇದೆ ಕಟ್ಟಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: एक बार फिर स्वागत है आपका आकाशवाणी रांची से फिल्म संगीत कार्यक्रम में, और इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आभा. आइए अब रुक करते हैं सुनहरी यादों का और सुनते हैं एक ऐसा गीत जो आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रहा है. फिल्म है एक दूजे के लिए, गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, अनूप जलोटा और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा है इस फिल्म में.

अगला गाना फिल्म चांदनी से आवाजें हैं बाबला मेहता और लता मंगेशकर की, बोल है आनंद बख्शी का, संगीत शिवहरी का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है और 1545 लोग लापता हैं। भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति और सलामती का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें भारत की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि गंडक नदी के जलस्तर में कल से गिरावट आ रही है।
1: गंडक नदी के पूरे प्रवाह अभी जल स्तर भी ऊंचा नहीं था, बल्कि सामान्य से भी थोड़ा कम था। इसलिए जो भी पानी संभावित था या जो आया, उससे बहुत ज्यादा भयावह स्थिति नहीं बनी।
0: एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। इस बीच सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें भाकरा नांगल बांध की दीवार 1.77 इंच झुकने का दावा किया गया है। वीडियो में कहा गया है कि बांध में दरार आने से दिल्ली सहित कई शहरों में बाढ़ आ सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि बांध के तनाव, खिंचाव, छिद्र दाब और रिसाव के सभी मापदंड निर्धारित अनुमेय सीमाओं के भीतर है और बांध पूरी तरह सुरक्षित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत तथा अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान

बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुंच को सुलभ बना रही है। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू की है। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली बढ़त देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 159 अंक बढ़कर 77,093 पर और निफ्टी 15 अंक बढ़कर 24,106 पर पहुंच गया। भारत के वेलवेन सेंथिल कुमार कल रात स्क्वाश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोटरानी को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में पहुंच गए। फाइनल में आज रात वेलवेन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बालास फारकस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: She will travel to Chicago, Asheville, and New York. In Chicago, Finance Minister will participate in a roundtable conference with prominent investors and engage with the leading CEOs, presidents, and senior representatives of the private sector. Bilateral one-to-one meetings with CEOs and senior leadership of select companies in Chicago will also be held. The discussion will focus on India's investment opportunities, economic outlook, and areas for strengthening linkages with India's rapidly expanding startup and innovation ecosystem. Prime Minister Narendra Modi will visit the Central Asian country Uzbekistan tomorrow. He will be on a two-day visit to the Tashkent city. During his visit, the Prime Minister will hold delegation-level talks with the President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev, to further strengthen the strategic partnership between the two countries. In Jammu and Kashmir, the annual Sri Amarnath Yatra will officially culminate today with the traditional Chadi Mubarak ceremony at the Holy Cave Shrine. It will proceed to the Holy Cave today where special prayers and traditional rituals will be performed. The annual Budha Amarnath Yatra will also culminate today. The IMD has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall along with thunderstorms and lightning over Odisha and Bihar today. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए शिक्षकों के नामों की घोषणा की। धनबाद की मुनमुन भट्टाचार्य को राष्ट्रपति 5 सितंबर को करेंगे सम्मानित। झारखंड हाई कोर्ट ने बोकारो से 2020 में लापता 14 वर्षीय नाबालिग लड़की का सुराग नहीं मिलने पर मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का दिया आदेश। राज्य के अस्पतालों की प्रबंधन व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए 125 हॉस्पिटल मैनेजरों की होगी नियुक्ति। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को किया जाएगा अपग्रेड। विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम और वासुकीनाथ धाम में सावन पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। श्रावणी मेले का आज होगा विधिवत समापन। और बंगाल की खाड़ी में बन रही निम्न दबाव से झारखंड में बारिश का दौर रहेगा जारी। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश, तेज हवा और वज्रपात का जारी किया अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए चयनित शिक्षकों के नामों की घोषणा कर दी है। इसमें झारखंड से धनबाद के मध्य विद्यालय बरमसिया की प्रभारी प्रधानाध्यापिका मुनमुन भट्टाचार्य का चयन किया गया है। उन्हें 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी। इस अवसर पर मुनमुन भट्टाचार्य ने बताया कि वे आगे भी बच्चों की शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगी।
2: मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार से इस बार 2026 सम्मानित किया जा रहा है और ये पुरस्कार हमारे धनबाद में 27 साल के बाद ये गौरवपूर्ण पल फिर से आया है। तो ये सम्मान जो है उन वो सभी गुरुजनों को समर्पित है जिन्होंने निश्चल भाव से बिना किसी लोभ के उन्होंने अपने काम को निष्ठापूर्वक प्रत्येक दिन इन बच्चों के भविष्य को संवारने में अपना लगा दिया। तो मैं उन सभी शिक्षकों को ये समर्पित करती हूँ।
1: झारखंड हाई कोर्ट ने बोकारो से 2020 में लापता हुई 14 वर्षीय नाबालिग लड़की का अब तक सुराग नहीं मिलने पर मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। अदालत ने इस मामले में सीबीआई को तत्काल जांच अपने हाथों में लेने और सीआईडी से पूरा केस रिकॉर्ड प्राप्त करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के निदेशक को जांच की नियमित समीक्षा कर प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में सौंपने को कहा। राज्य सरकार की ओर से सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के आदेश को निरस्त करने का आग्रह करने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में 31 अगस्त को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में कल सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से इस याचिका पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया गया, जिसके बाद चीफ जस्टिस MS सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 31 अगस्त निर्धारित की। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी जिलों के सदर

0: अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की ऑनलाइन समीक्षा बैठक की। श्री सिंह ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 125 हॉस्पिटल मैनेजरों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें प्रत्येक जिले को 2 हॉस्पिटल मैनेजर दिए जाएंगे। साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड किया जाएगा। हॉस्पिटल मैनेजर 24 घंटे सातों दिन अस्पताल प्रबंधन व्यवस्था की निगरानी करेंगे और अस्पतालों के उन्नयन की दिशा में कार्य करेंगे। जामताड़ा जिले के झिलुआ स्थित आईआरबी वन में पदस्थापित डीएसपी प्रमोद कुमार सिंह का कल रात निधन हो गया। जानकारी के अनुसार किचन में काम करने के दौरान वे अचानक गिरकर बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वे 1994 के बैच के पुलिस अधिकारी थे। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही उनकी मौत के सही कारण का पता चलेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का पर्व रक्षाबंधन आज देश भर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने हर नागरिक से परिवार और समुदायों के बीच रिश्तों को मजबूत करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन पर बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह त्योहार सभी के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सफलता लेकर आए। देवघर में सावन पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि कल स्पर्श पूजा शुरू हो जाएगी।
1: सफल श्रावणी मेला रहा है 2026 का। कोई भी ऐसा मेजर इंसिडेंट नहीं रिपोर्ट हुआ है। प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई थी और इस बार स्थानीय लोगों को भी मौका मिला कि सुलभ दर्शन कर सके श्रावणी के दौरान। अब की आखिरी दिन है, आज श्रावणी की पूर्णिमा है, भादो महीना का स्टार्ट होने वाला है। तो विधि प्रथा के अनुसार आज के दिन अर्घाट के एक बार पूजन होता है, उसके बाद स्पर्श पूजन चालू हो रहा था।
0: वहीं सावन पूर्णिमा पर दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में भक्त कतारबद्ध होकर अर्घा के माध्यम से बाबा फौजदारी नाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। इसी के साथ आज श्रावणी मेले का समापन हो जाएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने रांची स्थित गृह मंत्रालय के क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय में तैनात 3 अधिकारियों को 48,400 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में वरिष्ठ लेखा अधिकारी संतोष कुमार महतो, सहायक लेखा अधिकारी सुनील कुमार और सहायक लेखा अधिकारी सुजीत कुमार सिंह शामिल हैं। युवाओं और खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कल धनबाद स्थित आईआईटी आईएसएम में खेल की बात पीएम के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत खेल के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
2: आज हमारे देश और झारखंड प्रदेश में ऐसे ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे हैं जिनको सहयोग मिले, जिस प्रकार से मोदी जी सहयोग दे रहे हैं और देंगे, वैसे प्रतिभाशाली बच्चों के प्रति उनके प्रतिभा से देश के साथ साथ देश का नाम पूरा विश्व में स्थापित करने का काम होगा, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ।
0: वहीं आईआईटी आईएसएम के निदेशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा ने कहा कि आईआईटी आईएसएम हमेशा से छात्रों के सर्वांगीण विकास का समर्थक रहा है।
3: बहुत एनर्जेटिक है हमारा बच्चे, ऑलवेज हमको आके पूछते हैं कि हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर कब तक आप रेडी करके दे रहे हो, एंड हम स्पोर्ट्स में अभी काफी इन्वेस्टमेंट करके हमारा जितने सब स्पोर्ट्स फैसिलिटी है उसको हम रिनोवेट कर रहे हैं। टाइम में आप देखेंगे काफी सारा एनर्जेटिक बच्चे हमारा आईआईटी आईएसएम कैंपस से ही नहीं।
0: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,49,000

हार 700 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,48,000 रुपए प्रति किलो है। और अब मौसम। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, कल से इसके सक्रिय होने की पूरी संभावना है। इससे झारखंड के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। विभाग ने इस दौरान कई जिलों में भारी बारिश के साथ साथ तेज हवा चलने और वज्रपात होने की भी चेतावनी जारी की है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए शिक्षकों के नामों की घोषणा की। धनबाद के मुनमुन भट्टाचार्य को राष्ट्रपति 5 सितंबर को करेंगी सम्मानित। झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो से 2020 में लापता 14 वर्षीय नाबालिग लड़की का सुराग नहीं मिलने पर मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का दिया आदेश। राज्य के अस्पतालों की प्रबंधन व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए 125 हॉस्पिटल मैनेजरों की होगी नियुक्ति। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को किया जाएगा अपग्रेड। विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम और वासुकीनाथ धाम में सावन पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, श्रावणी मेले का आज होगा विधिवत समापन। और बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव से झारखंड में बारिश का दौर रहेगा जारी। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश, तेज हवा और वज्रपात का जारी किया अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत अनुरंजनी। आज की कलाकार हैं सिद्धेश्वरी देवी।

अभी आप सुन रहे थे उपशास्त्रीय संगीत अनुरंजनी में सिद्धेश्वरी देवी को। अब सुनिए सुगम संगीत में गजल हरिहरन की आवाज में।

आप सुन रहे थे सुगम संगीत में गजल हरिहरन का गाया हुआ। अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुन पाएंगे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर, और भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को सुलभ बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है और सीमा के दोनों तरफ 1545 लोग लापता है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने प्रभावित जिलों में 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। एक रिपोर्ट।
2: भोटेकोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है, इससे बचाव कार्यों में बाधा आ सकती है। इस बीच आज चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में बाढ़ की नई चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने त्रिशूली क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया है। नेपाल पुलिस ने बताया कि तिब्बत की ओर स्थित एक बांध फिर टूट गया है। वहां के निवासियों और सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में फंसे 290 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उनका पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं। खोज और बचाव कार्यों में सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात कर उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल अमेरिका की उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर से टेलीफोन पर बातचीत की। अमेरिका ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 5 लाख अमरीकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है। श्रीलंका ने भी नेपाल को 10 लाख अमरीकी डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस बीच नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार में गंडक नदी से बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। बुधवार रात गंडक नदी के जल प्रवाह में बढ़ोतरी के बाद अब इसमें लगातार कमी दर्ज की जा रही है। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि फिलहाल गंडक नदी में जल प्रवाह सामान्य है। उन्होंने कहा कि नेपाल की भोतेकोशी, त्रिशूली और नारायणी नदियों से होते हुए

0: पानी के गंडक तक पहुंचने के दौरान जल प्रवाह की गति कम हुई है, जिससे बिहार में इसका प्रभाव भी कम हो गया है। श्री चौधरी ने बताया कि एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। जल संसाधन विभाग की टीमें तटबंधों की 2400 घंटे पेट्रोलिंग और निगरानी कर रही है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें भाखड़ा नांगल बांध की दीवार 1.77 इंच झुकने का दावा किया गया है। वीडियो में कहा गया है कि बांध में दरार आने से दिल्ली सहित कई शहरों में बाढ़ आ सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि बांध के तनाव, खिंचाव, छिद्र दाब और रिसाव के सभी मापदंड निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं और बांध पूरी तरह सुरक्षित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एक रिपोर्ट।
3: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
4: अपनी 2 दिनों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद में शास्त्री मेमोरियल जाने की उम्मीद है। ताशकंद शहर में शास्त्री स्ट्रीट पर भारत के तीसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के सम्मान में एक कांसे की प्रतिमा स्थापित की गई थी। 1976 में शुरू हुए इस मेमोरियल को स्थानीय उज्बेक मूर्तिकार याकोव शापिरो ने डिजाइन किया था। ताशकंद आने वाले भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर जाने की भी उम्मीद है। ये सेंटर भारतीय साहित्य, खासतौर पर हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के इतिहास और विकास पर एकेडमिक रिसर्च करता है और उज्बेकिस्तान और भारत के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने ISI समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिल्ली के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। दंपति पर 2024 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स के लिए काम करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार दंपति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना और उन्हें पाकिस्तान भेजना शामिल था। भारत में सिम कार्ड खरीदने के लिए दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया गया था। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू की है। चेन्नई, कोलकाता, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, वाराणसी, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, जम्मू और अमृतसर जैसे अन्य प्रमुख उपभोग केंद्रों तक भी प्याज की आपूर्ति की जा रही है। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। भारत में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार 9 अतिरिक्त रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। परमाणु ऊर्जा भारत के विकास पथ का एक महत्वपूर्ण घटक बनकर उभरी है, जो न केवल बिजली उत्पादन बल्कि स्वास्थ्य सेवा, कृषि और विभिन्न

0: औद्योगिक अनुप्रयोगों में भी योगदान देती है। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, @AIRNewsHindi को फॉलो करें और ताज़ा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। रक्षाबंधन का त्योहार आज देश भर में मनाया जा रहा है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रक्षाबंधन का महत्व भाई बहन के रिश्ते से कहीं आगे है। उन्होंने कहा कि राखी का पवित्र धागा परिवार के सदस्यों, मित्रों और यहाँ तक कि पेड़ों को भी बांधा जा सकता है, जो प्रेम और देखभाल के बंधन का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों से पौधों और पेड़ों की देखभाल करने का भी आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि रक्षाबंधन प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के सुंदर बंधन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्योहार सभी के बीच स्नेह और सद्भाव के बंधन को मजबूत करने तथा खुशहाली और समृद्धि का पर्व है। पंजाब में जेल विभाग ने आज कैदियों को भाई बहनों के बीच प्रेम और सम्मान का त्यौहार रक्षाबंधन मनाने की अनुमति दी है। विभाग ने सुरक्षा संबंधी नियमों का ध्यान रखे जाने की पूरी व्यवस्था की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता महात्मा अयंकाली की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि महात्मा अयंकाली ने अपना जीवन शोषितों के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष करने में समर्पित कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी महात्मा अयंकाली और श्री नारायण गुरु की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि महात्मा अयंकाली को एक अग्रणी समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री नारायण गुरु की आध्यात्मिक समझ और समानता तथा मानवीय गरिमा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने लोगों को भेदभाव से ऊपर उठाया। मौसम विभाग ने उड़ीसा और बिहार में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज हवाओं के साथ आंधी की संभावना है। कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी कल तक ऐसे ही मौसम का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 1 सितंबर तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी है। भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार आज रात पीएसए बुडापेस्ट स्क्वॉश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। कल रात सेमीफाइनल में सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 2026 डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। प्रतियोगिता अगले महीने ब्रसल्स में आयोजित होगी। नीरज ने रैंकिंग में 12 अंक हासिल किए। उन्होंने जून में दोहा मीट में 85.69 मीटर भाला फेंक कर चौथा स्थान हासिल किया था। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में लुसानी मीट में 88.05 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर एफआईएच विश्व कप में पांचवां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1974 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश

0: मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर, और भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार का PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और हम हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम जय भारती। कहते हैं जिनके जागने से हम घर में चैन से सोते हैं और हमारे लिए वो अपना जान क्या क्या खोते हैं, ये तिरंगे से है वतन की पहचान और फौजी से है देश की शान। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म बॉर्डर से, जो कि 1997 की सुपरहिट देशभक्ति और रोमांटिक फिल्म का ये गाना है। इसे रूप कुमार राठौर ने अपनी शानदार आवाज दी है, संगीत अनु मलिक ने तैयार किया है और इसके बोल मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने लिखे हैं।

दोस्तों, हमारे जीवन में सेना का बहुत महत्व है। सेना देश की सीमाओं की रक्षा करती है, जिससे हम अपने घरों में सुरक्षित और शांत जीवन जीते हैं। उनके बलिदान और साहस के कारण ही देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता सुरक्षित रहती है। बाढ़, भूकंप या सूखे जैसी आपदाओं के समय सेना राहत और बचाव कार्यों में सबसे आगे रहती है। सैनिकों का जीवन हमें अनुशासन, देशभक्ति और निस्वार्थ भाव से सेवा करना सिखाता है। सेना में जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर केवल देश सर्वोपरि होता है, जो हमें एकजुटता का संदेश देता है।

इस गाने में आवाजें हैं उदित नारायण, सोनू निगम और अलका याग्निक की। फिल्म है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। संगीत अनु मलिक का है, गीतकार हैं समीर।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: सेना।
1: जय भारती का आखिरी गीत सुनिए फिल्म अनुरोध से किशोर कुमार की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जन धन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों में कुल जमा राशि 3,17,000 करोड़ रूपये है। इस योजना का शुभारम्भ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल है। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के मामले को लेकर झारखंड में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग दोहराई है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में कई लोगों को बचाना चाहती है, इसलिए सीबीआई जांच से बच रही है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को जांच सौंपी जानी चाहिए।
1: इन्फॉर्मेशन को सेलेक्टिवली लीक कर देती है, जैसे लगता है कि वो बहुत तेजी से जांच करी, पर आप एक लॉजिक से बताएं कि आखिर इंटरव्यू बोर्ड में कौन बैठता है? सदस्य बैठते हैं या उनके पीए बैठते? सदस्य है तो आरोप लगा कि इंटरव्यू बोर्ड में सेटिंग होती थी। गिरफ्तारी किसकी हुई? पीए की। अरे पीए थोड़ी बैठता है, पीए तो माध्यम था पैसा लेने का।
0: वहीं जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि सरकार पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी लोग दोषी पाए जा रहे हैं उनकी गिरफ्तारी की जा रही है।
2: पूरे भारतवर्ष में इस तरह की कार्रवाई या इस तरह की जांच किसी राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं देखी गई है। ये हेमंत सोरेन जी की सरकार है कि जब आंदोलन भी शुरू नहीं हुए थे, मांग भी शुरू नहीं हुआ था, उस समय से एजेंसी अपने काम कर रही है और त्वरित काम कर रही है। कोई किसी को बचाना है न फंसाना है।
0: ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर घोटाला मामले में आरोपी सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता सिंगरई टूटी और प्रमोद कुमार को रांची की विशेष पीएमएलए अदालत से झटका लगा है। अदालत ने दोनों की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद दोनों के खिलाफ आरोप गठन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। मामले में ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काकाजी ने पक्ष रखा। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल वन क्षेत्र के अधीन गुंडा बिहार गांव में रक्षाबंधन के अवसर पर एक पेड़ भाई के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वन प्रबंधन संरक्षण समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं और युवतियों ने पेड़ों की पूजा अर्चना कर उन्हें राखी बांधी। इस दौरान ग्रामीणों ने पेड़ काटेंगे नहीं, काटने देंगे नहीं का संकल्प लेते हुए जंगल संरक्षण का संदेश दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में जाति, आय, आवासीय और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी बनाए जा सकेंगे। कार्मिक विभाग ने 27 अगस्त को इस संबंध में आदेश जारी कर सभी जिलों के उपायुक्तों को भेज दिया है। यह व्यवस्था अगले 3 माह तक लागू रहेगी। फैसला प्रमाण पत्रों के लिए बढ़ी आवेदनों की संख्या को देखते हुए लिया गया है। रांची विश्वविद्यालय में प्रशासनिक और शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 6 शिक्षकों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कुलपति ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय

नियम 2026 के तहत नियुक्तियां की हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगी। जूलॉजी विभाग के सहायक प्रधान अध्यापक डॉक्टर आनंद कुमार ठाकुर को छात्र कला एवं संस्कृति का प्रभारी निदेशक, जबकि एसएस मेमोरियल कॉलेज के हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अनिल वीरेंद्र कुल्लू को खेल एवं शारीरिक शिक्षा का प्रभारी निदेशक बनाया गया है। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स में संविदा के आधार पर 53 पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य बीमा संचालन प्रबंधन का एक तल, समन्वय के 12 और आरोग्य मित्र के 40 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए प्रत्यक्ष साक्षात्कार 31 अगस्त को होगा। प्रदेश में अगले 4 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम केंद्र रांची ने 28 से 31 अगस्त तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवा को लेकर चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का प्यार भरा नमस्कार
1: और अजीत का भी प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है राजा जी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता उन लोगों का इंतजार करती है जो कठिन परिश्रम करते हैं। मुश्किलें आसान हो जाती हैं जब मुश्किल से ज्यादा मेहनत पर ध्यान देने लगते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इतने खूबसूरत विचार को भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी। लिखते हैं,
2: उमंग टीम को पल पल बंदगी करते हैं। विमलेश मैडम जी और अजीत साहेब जी जय जोहार। बंदगी जी, जुलाई वाले सप्ताह में गजब का 16वां लघु कथा प्रसंग सुनाया। गौतम बुद्ध की शरण पाकर अंगुलीमाल डाकू का संत बनना, महात्मा गांधी का मितव्ययता प्रसंग, सुभाष चंद्र बोस के देश प्रेम, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम, इन सभी संत महापुरुषों का प्रसंग हमें बहुत शिक्षाप्रद और प्रेरणा दिया। इसी तरह नई नई जानकारी मिलती रहे, दिल से धन्यवाद साहेब।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। लिखते हैं, आजकल मैं उमंग कार्यक्रमों को नहीं सुन पा रहा हूँ, क्या आप मुझे आकाशवाणी के ऐसे केंद्रों की जानकारी दे सकते हैं जो सुबह 7 बजे से पहले या शाम को 7 बजे के बाद उमंग कार्यक्रम का प्रसारण करते हों? मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जरूर बताइएगा।
2: योगेश जी, हम प्रयास करेंगे पता करने की, क्योंकि सभी प्रसारण केंद्रों ने अपनी और छात्रों की सुविधा के अनुसार प्रसारण समय तय कर रखा है। हमारी सलाह होगी कि आप इंस्टाग्राम ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें और CIT NCERT को फॉलो करें। प्रतिदिन के कार्यक्रमों के लिंक आपको वहां मिल जाएंगे, क्लिक कीजिए और किसी भी समय कार्यक्रम सुनिए।
1: जी, अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल दिवांगन जी का।
2: रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास और कृष्ण कुमार यादव।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबके संदेशों के लिए। आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी ज्ञान यात्रा में, यानी ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
2: जी,
1: तो विमलेश जी शुरुआत की जाए। हमारा कल का विषय था जहाँ बारिश भी रुकना भूल जाती है।
2: जी,
1: तो हमारा आज का विषय क्या होगा?
2: अजीत जी, हमारा आज का विषय होगा जहाँ सूरज भी परीक्षा लेता है।
1: वाह, जहाँ सूरज भी परीक्षा लेता है।

0: जी हाँ श्रोताओं, जब दिल्ली या किसी दूसरे शहर में लोग सुबह की ठंडी हवा का आनंद लेते हैं, राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में गर्मी सवेरे ही शुरू हो जाती है और लोग जानते हैं कि दिन चढ़ने के साथ गर्मी लगातार बढ़ती चली जाएगी।
1: इसे श्रोताओं, बहुत से काम वहाँ सुबह ही जल्दी निपटा लिए जाते हैं, जैसे पशुओं को चारा देना हो, पानी भरना हो, खेत या घर या कोई जरूरी काम हो।
0: जी,
1: यहाँ लोग पूरी कोशिश करते हैं कि ये काम सूरज के तेज होने से पहले पूरे हो जाएं।
0: बिल्कुल अजीत जी, क्योंकि वहाँ केवल ये सवाल नहीं होता कि आज कितना काम करना है, सवाल ये भी होता है कि काम किस समय करना है।
1: जी हाँ, तो विमलेश जी, जरा दोपहर की बात भी तो कीजिए।
0: यहाँ दोपहर में गर्मी इतनी बढ़ सकती है कि बाहर का काम कम करना ही समझदारी होती है, इसलिए गाँव में पुराने समय से ही लोग गर्मी से बचने के लिए अपने पारंपरिक तरीके विकसित करते आए हैं।
1: जैसे मोटे दीवारों वाले घर,
0: जी
1: छायादार आंगन, हवादार कमरे
0: जी
1: और खिड़कियों पर पर्दे। वे कोशिश करते हैं कि उन्हें किसी तरह से दीवारों या पेड़ों की छाया मिल जाए,
0: जी
1: क्योंकि रेगिस्तान में छाया केवल आराम ही नहीं देती, वो जीवन का सहारा है।
0: श्रोताओं, यहाँ एक और बड़ी चुनौती है, वो है पानी। सच है, जहाँ बारिश कम हो और गर्मी बहुत अधिक हो, वहाँ पानी की हर बूंद की कीमत समझ में आती है।
1: जी हाँ श्रोताओं, राजस्थान के ग्रामीण जीवन में कुएं, टांके, तालाब और पारंपरिक जल संरक्षण की प्राचीन व्यवस्थाएं सदियों से महत्वपूर्ण रही हैं।
0: जी,
1: यहाँ के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आज बचाया हुआ पानी आने वाले दिनों में काम आएगा।
0: यही कारण है श्रोताओं कि यहाँ के रेगिस्तान में रहने वाले लोगों ने पानी को केवल उपयोग की वस्तु नहीं माना, बल्कि उसे संपत्ति और जिम्मेदारी की तरह देखा। तो अजीत जी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्यों न हम प्रकृति से यही पाठ सीख लें?
1: जी हाँ विमलेश जी, आपने ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी। और अब बात करते हैं वहाँ के भोजन की। गर्मी और शुष्क वातावरण के कारण राजस्थान का पारंपरिक भोजन भी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विकसित हुआ है।
0: जी,
1: वैसे विमलेश जी, क्या खाते हैं वहाँ के लोग?
0: अजीत जी, वहाँ बाजरा, ज्वार जैसे मोटे अनाज, दालें, सब्जियां और लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थ भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, इसलिए तो बाजरे की रोटी, दाल और स्थानीय सब्जियां राजस्थान के प्रसिद्ध भोजन का हिस्सा हैं।
0: लेकिन अजीत जी, फिर वही बात जो हमने पिछले कार्यक्रम में कही थी, राजस्थान के इन गांवों की जिंदगी केवल गर्मी और पानी की कहानी नहीं है।
1: यहाँ की सबसे बड़ी खूबी है लोगों की सहनशीलता और अनुकूलन की क्षमता।
0: जी,
1: यानी स्वयं को वहाँ के वातावरण में ढालने की क्षमता।
0: रेगिस्तान ने लोगों को सिखाया है कि जो कुछ हम बदल नहीं सकते, उसे स्वीकार करके जीवन में प्रसन्न रहना चाहिए।
1: जी,
0: कई बार प्रकृति को समझना और उसके अनुसार जीवन बनाना ही बुद्धिमानी है।
1: जी हाँ श्रोताओ, जरा सोचिए, हम शहर में गर्मी कुछ डिग्री बढ़ते ही परेशान हो जाते हैं। एयर कंडीशनर चाहिए, कूलर चाहिए, ठंडा पानी चाहिए।
0: लेकिन राजस्थान के गांवों में न जाने कितनी पीढ़ियों ने सीमित साधनों में जीवन को आगे बढ़ाया है। उन्होंने मिट्टी, पत्थर, हवा, छाया और पानी जैसे प्राकृतिक साधनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, और शायद यही हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है।
1: क्या सीख विमलेश जी?
0: यही कि जीवन हमेशा हमारी सुविधा के अनुसार नहीं चलता।
1: जी,
0: जीवन में भी तो मौसम बदलते हैं। कभी गर्मी आएगी, तो कभी बारिश बहुत ज्यादा होगी, तो कभी सूखा पड़ेगा, कभी रास्ते कठिन होंगे। लेकिन इंसान की असली ताकत इस बात में है कि वो बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को कैसे ढालता है।
1: तो आप सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है?
1: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है तीन बुद्धिमान।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है।
1: तीन बुद्धिमान।
2: बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में किसी निर्धन व्यक्ति के तीन पुत्र थे, विक्रम, प्रताप और धीरेंद्र। एक दिन उसने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहने लगा,
3: मेरे पुत्रों।
4: जी पिताजी।
3: देखो, अब मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है।
4: पिताजी,
3: क्या पता कब लोग सुधार जाऊं।
4: पिताजी, ऐसा ना कहिए, अभी आपका जीवन बहुत लंबा है।
3: नहीं विक्रम बेटे, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे पास

0: धन है और ना सोना चांदी। तुम लोगों को कुछ और ही करना होगा।
1: लेकिन पिताजी, हम क्या कर सकते हैं? न खेत हैं और न कोई दूसरा काम।
2: जी
0: पुत्र, तुम लोगों को दूसरे तरीके से धन अर्जित करना होगा।
2: लेकिन कैसा तरीका पिताजी?
0: बेटा धीरेंद्र, देखो, धन दौलत जैसी चीजें स्थायी नहीं हैं। आज हैं तो कल नहीं।
2: जी।
0: लेकिन एक ऐसी चीज है जिससे बढ़कर दुनिया का कोई धन नहीं हो सकता, और वो है बुद्धिमत्ता।
1: जी पिताजी।
0: हर वस्तु और स्थिति को ठीक ठीक समझने का प्रयास करो।
1: जी पिताजी, हम प्रयास करेंगे।
3: समय बीता और कुछ समय बाद पिता चल बसे। सभी बेटे एक दिन मिलकर बैठे और विचार किया।
4: हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं।
1: हाँ, तुम ठीक कहते हो भैया, तो क्यों ना हम एक काम करें।
4: भला वो क्या? चलो घूम फिर कर जगत देखें, कुछ ज्ञान प्राप्त करें। पिताजी कहते थे ना कि घूमने फिरने से भी जब हम चीजों को, स्थितियों को देखते हैं तो ज्ञान बढ़ता है।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा भैया।
3: तीनों भाई चल दिए। लंबी यात्रा थी। खाने पीने का सामान जब समाप्त हो गया तो उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले गांव के खेतों में मेहनत मजदूरी की। रास्ते में वे जो कुछ भी देखते बड़े ध्यान से उसका अवलोकन करते और निष्कर्ष निकालते। चलते चलते वे अंत में किसी नगर के पास पहुंचे। नगर के पास एक मैदान था जिसकी मिट्टी रेतीली थी। सबसे बड़ा भाई चलते चलते रुक गया। उसने ध्यान से मिट्टी को देखा और बोला,
4: भाई प्रताप, मुझे लगता है कि यहाँ से कोई ऊंट गुजरा है।
5: जी भैया, और वो भी बड़ा वाला ऊंट। पैर के चिन्हों से तो यही लगता है। क्यों भाई धीरेंद्र?
6: जी भैया, आप ठीक कह रहे हैं।
4: मुझे लगता है कि ऊंट के साथ एक महिला और एक बच्चा था।
3: वे बातचीत कर ही रहे थे कि एक घुड़सवार उनके पास आकर रुका।
4: महाशय, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं?
5: हाँ, आपका ऊंट खो गया है ना?
6: हाँ, मेरा ऊंट खो गया है। हमें सब पता है महाशय, आपका ऊंट एक आंख से देख नहीं पाता है ना?
7: हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता?
4: महाशय, हमें तो ये भी पता है कि उस ऊंट के साथ एक महिला और एक बच्चा भी था।
7: है?
4: आप सीधा उत्तर दिशा की ओर जाएं, आपको वहाँ ऊंट मिल जाएगा।
7: ऊंट मिल जाएगा? अरे ऊंट तुम लोगों के ही पास है।
1: नहीं नहीं,
7: अरे नहीं, उसे कहाँ छिपा के रखा है?
6: अरे महाशय, हमने तो ऊंट का मुंह तक नहीं देखा।
7: ऊंट का मुंह तक नहीं देखा?
1: नहीं।
7: तो तुम्हें उसके बारे में सारी बातें पता कैसे चली?
1: वो
7: महाशय, मेरा ऊंट मुझे लौटाओ।
1: लेकिन
7: अरे, अरे तुम लोग ठग मालूम होते हो।
1: क्या?
7: मैं कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हूँ।
3: भाइयों ने बहुत समझाया, लेकिन वो घुड़सवार सुनने को तैयार ही नहीं था।
7: मुझे कुछ नहीं सुनना।
1: लेकिन महाशय, हमारी बात सुन ले महाशय।
7: मगर ये निकाली मैंने अपनी तलवार। आप चलो, मेरे आगे आगे चलो। चलो चलो।
3: इसी बीच उसका भाई भी आ गया। घुड़सवार ने अपने भाई को ऊंट ढूंढने के लिए भेज दिया और तलवार के बल पर उन्हें राजा के पास ले गया।
7: अब तुम सब राजा के पास चलो। चलो, काट के रख दूंगा। चलो।
8: दुहाई है महाराज, इन लोगों ने मेरा ऊंट चुराया है, मुझे न्याय चाहिए महाराज।
4: राजन, हम चोर नहीं है, हमने तो ऊंट का मुंह तक नहीं देखा।
0: तुम्हें कैसे पता कि ऊंट इन लोगों ने ही चुराया है? ये तो कहते हैं कि इन्होंने ऊंट को देखा तक नहीं।
8: महाराज, यदि ये कहते हैं कि इन्होंने ऊंट को देखा तक नहीं, तो ऊंट के बारे में मुझे इन्होंने सब कुछ बता कैसे दिया?
0: तुम लोगों को कुछ कहना है?
2: राजन, हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि कुछ भी अपनी दृष्टि से चूकने नहीं देते। हमने परिवेश को समझने में बहुत समय लगाया है, इसलिए बिना देखे ही हमने सब कुछ बता दिया।
0: अच्छा, तो ये बात है
2: जी।
0: हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेते हैं। द्वारपाल
9: जी, महाराज।
3: राजा ने अपने द्वारपालों को बुलाया और उनके कान में कुछ फुसफुसाकर कहा। थोड़ी ही देर में द्वारपाल एक पेटी लेकर आए और उसे राजा के सामने रख दी।
0: अब बताओ कि इस पेटी में क्या रखा है?
10: महाराज, इस पेटी में कोई गोल वस्तु है, अनार है।
1: और महाराज, वो अनार कच्चा है।
3: जब पेटी खोली गई तो उस पेटी में सचमुच कच्चा अनार रखा था। बात बिल्कुल सही थी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन मंगवाए और लगा उनकी आवभगत करने।
10: खाइए खाइए, लीजिए। महाराज,
4: धन्यवाद।
3: फिर पूछा,
0: तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि पेटी में अनार है?
2: महाराज, जब वे पेटी रख रहे थे तो अंदर से किसी चीज के लुढ़कने की आवाज आई। हम समझ गए कि ये कोई गोल वस्तु है।
10: और महाराज, हमने ध्यान दिया कि द्वारपाल किधर जा रहे हैं। वे आपके राज उद्यान की ओर जा रहे थे, जहाँ अनार के बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं।
11: और महाराज, अभी अनार पकने का समय ही नहीं आया, तो हमने जान लिया कि अनार कच्चा है।
0: वाह, बहुत खूब।
3: राजा बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसकी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। उसने फिर पूछा,
0: तो अब ये बताओ कि तुमने ऊंट के बारे में बिना देखे कैसे जान लिया?
10: महाराज, वहाँ पर मिट्टी भुरभुरी थी। हमने ऊंट के पद चिन्हों से जान लिया कि ऊंट बड़ा है।
0: क्या बात है?
2: महाराज, उस मिट्टी पर जूतों के निशान थे। ये जूते महिला के थे और साथ ही साथ छोटे छोटे पैरों के निशान भी थे।
0: अच्छा,
2: इससे हमने जान लिया कि महिला के साथ कोई बच्चा भी है।
0: जी, बहुत खूब। लेकिन तुमने ये कैसे जाना कि ऊंट एक आंख से ही देख पाता है?
11: राजन, इसका पता लगाना तो बहुत ही आसान था। सड़क की दाहिनी ओर की घास तो ऊंट ने चरी थी, लेकिन बाईं ओर की घास जो कि त्यों थी।
0: उत्तम, अति उत्तम। वाह, तुम लोगों की बुद्धि श्रेष्ठ है।
1: धन्यवाद महाराज।
2: महाराज, शुक्रिया महाराज।
0: मैं सचमुच चकित हूँ।
2: जी महाराज।
3: फिर क्या था, राजा ने तीनों भाइयों को अपने दरबार में रख लिया और उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया।
12: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम तीन बुद्धिमान। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। और अब सुनते हैं कार्यक्रम सरला ठकराल, भारत की पहली महिला पायलट।

0: सफलता की बुलंदियों को सभी छूना चाहते हैं, कामयाबी सभी हासिल करना चाहते हैं,
1: लेकिन कामयाबी उन्हीं के कदमों को चूमती है जो दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम के साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं।
0: आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो अपनी लगन और कार्यनिष्ठा से लाखों करोड़ों लोगों की और विशेषकर महिलाओं की प्रेरणा स्रोत बन गईं।
1: वे हैं सरला ठकराल, जिन्हें सन 1936 में मात्र 22 वर्ष की आयु में भारत की पहली महिला पायलट यानी विमान चालक बनने का श्रेय प्राप्त है।
0: भारतीय उड्डयन के इतिहास की बात करें तो अनेक महिलाएं हैं जिनका नाम उल्लेखनीय है, लेकिन वो प्रथम महिला कौन है जिन्होंने सबसे पहले इन सब के लिए मार्ग बनाने की शुरुआत की? जी हाँ, उनका नाम है सरला ठकराल। उनका जन्म 8 अगस्त सन 1914 को दिल्ली में हुआ था। तब भारत में ब्रिटिश राज था। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह लाहौर निवासी श्री पीडी शर्मा से हुआ। विवाह के बाद वो अपने पति के साथ लाहौर चली गईं। सरला के परिवार की एक बात बहुत दिलचस्प थी और वो ये कि उनके परिवार में 9 लोग ऐसे थे जिनका संबंध सीधा उड्डयन से था। पति भी अक्सर सरला को प्रोत्साहित करते। सरला को प्रशिक्षण दिलाने का बीड़ा उठाया उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी ने। एक दिन की बात है,
2: सरला, सरला बेटी, सरला बेटी।
3: अरे बाबूजी, आप
2: कहां खोई हो बेटी?
3: आप
2: जरा मैं भी तो जानूं कि क्या सोच रही है मेरी बेटी।
3: जी, मैं सोच रही थी कि मैं भी खाली समय में कुछ कर लेती।
2: बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं बेटा। एक बात कहूं?
3: जी
2: बेटा, मैंने अक्सर देखा है जब भी हम हवाई जहाज की उड़ान की पायलटों की बात करते हैं तो तुम बड़े शौक से सुनती हो।
3: जी बाबूजी, मुझे ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है।
2: तो फिर देर किस बात की, लाहौर फ्लाइंग क्लब के प्रमुख मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं।
3: अच्छा,
2: मैं उनसे कल ही बात करूंगा।
3: पर
2: मुझे लगता है तुम्हें वहाँ से पायलट बनने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए।
3: लेकिन बाबूजी, मैं धन्यवाद बाबूजी।
2: ये बात हुई ना बेटा। वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस।
0: साथियों, दूसरे ही दिन श्री शर्मा सरला को फ्लाइंग क्लब ले गए। इसके लिए एक परीक्षा देनी होती थी। सरला शुरू से ही पढ़ाई में कुशाग्र बुद्धि थी। उन्होंने तैयारी की और वे प्रथम प्रयास में ही सफल हो गईं। मेडिकल जांच व अन्य औपचारिकताओं के बाद उनका दाखिला लाहौर फ्लाइंग क्लब में हो गया। और अब शुरू हुआ उनका प्रशिक्षण। आज प्रशिक्षण का पहला दिन था।
4: साथियों, मैं आप सबका लाहौर फ्लाइंग क्लब में डेप्यूटी चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की हैसियत से स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सबको बधाई देता हूं पायलट बनने की ट्रेनिंग में चुने जाने के लिए।
5: धन्यवाद सर।
4: देखिए, कुछ मायनों में हमारा ये सत्र पिछले सभी सत्रों से बहुत अलग है। क्या आप बता सकते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ?
6: सर, मुझे तो सब कुछ वैसा ही लग रहा है।
4: सब कुछ वैसा तो नहीं है, कुछ तो नया है।
7: सर, मैं बताऊं सर।
4: हाँ, कहो।
7: सर, मुझे लगता है पहली बार पायलट की ट्रेनिंग के लिए हमारे बीच एक महिला मित्र हैं।
4: बहुत खूब, पर तुम्हें कैसे पता कि ऐसा पहली बार हुआ है?
7: पिछले सप्ताह एक समाचार पत्र में छपा था।
4: बहुत अच्छे, वेरी वेल ऑब्जर्व। देखिए, पायलट बनने की पहली शर्त है आसपास की बातों का गहराई से अवलोकन करना।
3: जी, सही बात।
4: एक पायलट को हमेशा सजग रहना होता है। अच्छा, अब बताओ कि और कौन कौन सी खूबियां एक पायलट में होनी चाहिए।
3: सर मैं बताऊं?
4: हाँ हाँ सरला तुम बताओ।
3: सर मुझे लगता है कि एक पायलट में सकारात्मक दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है। उसमें लगातार सीखने की इच्छा होनी चाहिए और उच्च दबाव या तनाव में भी अच्छी तरह से काम कर पाने की काबिलियत होनी चाहिए।
4: बहुत अच्छे सरला।
3: धन्यवाद सर।
4: तो साथियों तकनीकी ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन ये व्यक्तिगत खूबियाँ यदि आप में हैं, तो बेशक एक दिन आप बेहतरीन पायलट बनेंगे।

0: इस ट्रेनिंग के दौरान मैं आप सब से यही उम्मीद करूंगा। ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू सर।
2: प्रशिक्षण शुरू हुआ। इसमें सफलता उन्हीं को मिलती है जिनमें कठोर परिश्रम, कार्य के प्रति समर्पण और एकाग्रता होती है। साथियों, पायलट बनने के लिए ए श्रेणी का उड्डयन लाइसेंस प्राप्त करना होता था और इसके लिए उन्हें 1000 घंटे की उड़ान पूरा करना जरूरी था। और आखिर वो दिन आ गया जब उन्होंने 1000 घंटों की उड़ान बिना व्यवधान के पूरी की।
3: जिस दिन उनके प्रशिक्षण की आखिरी उड़ान थी, उस दिन उनका पूरा परिवार, मित्रगण, पत्रकार और भी कई गणमान्य लोग हवाई अड्डे पर मौजूद थे।
2: मीडिया के लिए एक महिला द्वारा प्रशिक्षण पूरा करना खासा दिलचस्पी का विषय था। उड़ान शुरू हुई।
4: 1000 घंटों की ट्रेनिंग पूरी होना मजाक नहीं होता।
1: I'm so excited.
4: महिला पायलट बनना हम देखेंगे अपने ऑफिस में।

0: landing
1: thing. Kamal.
2: Thank you. Thank you. Thank you.
1: Thank you. Thank you.
2: आप कितने अच्छे तरीके से चले गए.
3: जब वो अपने जिप्सी मौत विमान से उतरकर लाउंज में आई तो लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया.
4: दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने साड़ी पहनकर ये उड़ान भरी थी और उन दिनों वे 4 वर्ष की एक बेटी की माँ भी थीं।
3: इस प्रशिक्षण के बाद उन्हें वायुयान उड़ाने का 1 क्लास लाइसेंस प्रदान किया गया. समाचार पत्रों ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में जनता को बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी.
4: वायुयान उड़ाने का लाइसेंस प्राप्त करने के बाद उनका अगला लक्ष्य था विमान उड़ाने का व्यावसायिक या कमर्शियल लाइसेंस प्राप्त करना. लेकिन इसी बीच उनके जीवन में एक दुखद घटना घटी.
3: सन 1939 में उनके पति श्री शर्मा का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया. उन्होंने जोधपुर आने का निर्णय लिया और कमर्शियल लाइसेंस के लिए वे प्रयास करती रहीं. अंततः उन्हें लाइसेंस मिल गया और अब वे लंबी दूरी की व्यावसायिक उड़ानों के लिए तैयार थीं. इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और सभी नागरिक उड़ानें रद्द कर दी गईं. लेकिन हिम्मत की धनी सरला ने हार नहीं मानी और मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लेकर ललित कला और पेंटिंग की क्लास में दाखिला लिया और ललित कलाओं की अन्य विधाओं का उन्होंने गहरा अध्ययन किया.
4: उन्होंने वस्त्रों और आभूषणों के एक से एक डिजाइन बनाए और उनका पेटेंट लिया.
3: सुप्रसिद्ध अखबार द ट्रिब्यून को साक्षात्कार देते हुए उन्होंने कहा था,
5: मुझे लगता है कि हमारे पास लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ और विकल्प भी हमेशा होने चाहिए. जब मैंने वस्त्रों और आभूषणों का डिजाइन तैयार किया

0: तो उस समय की लगभग सभी प्रसिद्ध महिलाओं को ये डिजाइन बहुत पसंद आए। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये थी कि एक बहुत बड़ा कुटीर उद्योग खड़ा हो गया, जिसने बहुत सी महिलाओं को 20 वर्ष तक सम्मानजनक रोजगार दिया।
1: अपने जीवन में सफलता के कई आयामों को छूने वाली सरला ठकराल का 15 मार्च 2008 को दिल्ली में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आकाश में पुरुषों के वर्चस्व को तोड़ने वाली भारत की इस प्रथम महिला पायलट का जीवन साहस और आत्मविश्वास का एक अनूठा उदाहरण है, जो महिलाओं के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
2: तो अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है, तो मुझे यानी अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार। उमंग, उमंग, उमंग,
4: उमंग। आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। अगला कार्यक्रम रांची मेलोडीज बस कुछ ही पलों में।

सुनने वाले को आभा का नमस्कार। आकाशवाणी रांची से आप सभी संगीत प्रेमियों का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम रांची मेलोडीज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की भाग दौड़ के बाद शाम के इस खूबसूरत पहर में हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ चुनिंदा सुरीले और सदाबहार नगमे जो आपके मूड को बना देंगे खुशनुमा। तो आइए इस प्यारी सी शाम की शुरुआत करते हैं एक बेहद ही खूबसूरत गीत के साथ। इस सदाबहार गीत को अपनी जादुई आवाज से सजाया है मनहर उदास और लता मंगेशकर ने। संगीत SD बर्मन का है, फिल्म का नाम है अभिमान और गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम रांची मेलोडीज में, और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अभक के साथ। अगला गाना सुनिए फिल्म

कार्यक्रम का अगला गीत है अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, बोल है आनंद बख्शी के, संगीत आर डी बर्मन का और फिल्म है लव स्टोरी।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत जो आपकी शाम को और भी खुशनुमा बना देगा। आवाज है किशोर कुमार की, माफ कीजिएगा, आवाज है मुकेश की, योगेश के बोल हैं, संगीत सलील चौधरी का है और फिल्म है आनंद।

रांची मेलोडीज में आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी एक नए सिरे के साथ। तब तक के लिए आभा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

समाचार। नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जन धन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि जन धन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के मामले को लेकर झारखंड में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग को दोहराया है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में कई लोगों को बचाना चाहती है, इसलिए सीबीआई जांच से बच रही है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को जांच सौंपी जानी चाहिए। ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर घोटाला मामले में आरोपी सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता सिंगरई टूटी और प्रमोद कुमार को रांची की विशेष पीएमएलए अदालत से झटका लगा है। अदालत ने दोनों के डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद दोनों के खिलाफ आरोप गठन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र के केंजारा गांव में भूमि विवाद को लेकर एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी गई। मृतकों में पति पत्नी और उनका 12 वर्षीय बेटा शामिल है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार और 3 शव बरामद किए गए हैं। लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के महुआ टोली में देर रात हथियारबंद अपराधियों ने सड़क निर्माण स्थल पर गोलीबारी की और 2 वाहनों में आग लगा दी। घटना में सुरक्षा गार्ड शशिभूषण लकड़ा के हाथ में गोली लगी, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर आइए सुनते हैं उर्दू कार्यक्रम, जिसमें चर्चा होगी अमन और भाईचारे का पर्व रक्षाबंधन पर, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एक नजर, खवातीन की तालीम से समाज की बदलती तस्वीर। प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की।

0: कर्मा योजना सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं है, बल्कि यह हमारे मुल्क की दस्तकारी की विरासत को जिंदा रखने और हुनरमंदों की जिंदगी में एक नया सवेरा लाने का अजम है। अगर आप या आपके आसपास कोई इस हुनरमंदी से जुड़ा हुआ है तो आज ही अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएं या आधिकारिक पोर्टल के जरिए इन योजनाओं में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और इन सरकारी स्कीमों का फायदा उठाएं।
1: बिल्कुल दोस्तों, हुनर की कद्र करें, मुल्क की तरक्की में अपना योगदान दे।
0: राजदा, एक और खास टॉपिक है जिस पर हम बातें करने वाले हैं और वो है ख्वातीनों के मुतालिक।
1: ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है शगुफ्ता, क्योंकि ख्वातीनों की तालीम आज के इस दौर में बेहद जरूरी है, तो जरा इस पर कुछ बताएं शगुफ्ता।
0: राजदा, एक जमाना था जब औरत की दुनिया को घर की चार दीवारी तक महदूद रखा जाता था और उसकी तालीम को नजरअंदाज किया जाता था, लेकिन आज वक्त का तकाजा बदल चुका है। तालीम की शमा है और इंसान को जहालत की तारीकी से निकाल कर इल्म और शऊर की रोशनी की तरफ ले जाना है। राजदा, एक तालीम याफ्ता औरत पूरे घर की तरबियत की जामिन होती है। जब एक औरत इल्म हासिल करती है तो उसे सेहत, सफाई और बच्चों की सही परवरिश की पूरी आगाही होती है। एक पढ़ी लिखी माँ बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देती है, बल्कि उसके अखलाक यानी कि कैरेक्टर को भी निखारती है और उन्हें एक जिम्मेदार शहरी बनाती है।
1: आज की औरतें सिर्फ घरेलू जिम्मेदारियां तक महदूद नहीं है शगुप्ता, अपनी तालीम और काबिलियत की बदौलत वो हर शोबाए जिंदगी जैसे कि तिब, तालीम, वकालत, सियासत और तिजारत में अपनी सलाहियत का लोहा मनवा रही हैं। जब ख्वातीन आत्मनिर्भर होती हैं आर्थिक तौर पर, तो मुआशरे से गुर्बत का खात्मा होता है और मुल्क की मईशत को नई ताकत मिलती है।
0: हरजदा, तालीम ख्वातीनों के अंदर खुद इत्तेमादी यानी कि आत्मविश्वास और बेदारी पैदा करती है। तालीम याफ्ता औरतें जितनी भी होती हैं, समाज में फैली रवायती बुराइयों जैसे कि कम उम्री में शादी या फिर जहेज की प्रथा या फिर घरेलू तलाकशुदा या घरेलू जो हिंसा होती है उससे औरतें अपनी हिफाजत करती हैं, आवाज बुलंद करती हैं, बल्कि आवाज बुलंद करने का हौसला रखती हैं। इल्म उन्हें यह सलाहियत देता है कि वह अपने अधिकारों के बारे में, अपने हुकूक के बारे में जानकारी लें और उनकी हिफाजत करें।
1: बिल्कुल, आज की बेदार औरत सिर्फ मुआशरे का हिस्सा नहीं बल्कि मुआशरे की रहनुमाई कर रही हैं। जब हुकूमत और फैसला साजी के अमल में ख्वातीन की शमूलियत होती है तो मुआशरे में ज्यादा मुनसिफाना और हमदर्दाना माहौल कायम होता है।
0: राजना, मतलब इससे तो ये जाहिर होता है ना कि ख्वातीनों की तालीम कोई एहसान या रियायत नहीं है बल्कि उनका बुनियादी हक है। हालांकि आज हमारे माशरे की तालीम काफी हद तक बदल चुकी है, लेकिन आज भी दूर दराज के इलाके में जब बेटियां तालीम की नेमत से महरूम रहती हैं तो उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राजदा, अगर हम एक पुरअमन, तरक्की याफ्ता और अदब समाज की तश्कील चाहते हैं तो हमें ये अहद लेना होगा कि हम अपनी ख्वातीनों को, औरतों को तालीम याफ्ता करें और तालीम की शमा हर घर में जलाएं।
1: बिल्कुल, और शगुफ्ता सबसे बड़ी बात ये है कि आज हर सोसाइटी की अगर बात करें, दूर दराज गाँव की बात करें, शहरों की बात करें, सभी अब इस पर आगे बढ़ते हैं और अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं कि वो पढ़े लिखे। और हमारा सोसाइटी आज ऐसा कोई फील्ड नहीं है शगुफ्ता जहाँ पर बेटियों ने अपना परचम ना लहराया हो, चाहे वो आप क्रिकेट की बात कर ले, चाहे आप बॉलीवुड की बात कर ले, चाहे वो लोको पायलट की बात कर ले, पायलट की बात कर ले, डॉक्टर, इंजीनियर, आज ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पर ख्वातीनों ने अपना झंडा ना फहराया हो।
0: बिल्कुल,
1: अब जब बेटियों की पढ़ाई की बात हो रही है शगुफ्ता, तो क्यों ना अपने दोस्तों को एक मकाला सुनाए, साइंस में ख्वातीन की इल्मी सलाहियत और दास्तान। मकाला निगार हैं काजमीन फातिमी।
2: साइंस में ख्वातीन की इल्मी सलाहियत और तरक्की की एक ऐसी दास्तान है जो सदियों की मेहनत, जद्दोजहद, हिम्मत और कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है। एक तवील जमाने तक हम ख्वातीन को खानादारी तक ही महदूद रखा गया था, हमारी तस्लीम को मायूब समझा जाता रहा था। तालीम नहीं होने की वजह से हम इस्तेहसाल और मजलूमियत के शिकार होते रहे, मगर वक्त ने करवट ली और काफी मेहनत और जद्दोजहद के बाद हमने अपने हक की आवाज उठाई। हमने दुनिया को ये दिखा

कि दुनिया का कोई भी मजहब, कोई भी धर्म, धर्म में औरतों को तालीम से, तिजारत से, सियासत से, मुलाजमत से नहीं रोका गया है। यहाँ तक कि माँ का गोद बच्चों का प्राइमरी स्कूल होता है, इस बात को तस्लीम की गई है। हमारी आवाज को अहले इल्म, दानिश्वरान, इंटेलेक्चुअल्स की जमात ने गहराई से कबूल की और आज नतीजा दुनिया के सामने है। जिंदगी के हर शोबे में आज हम कामयाब हैं और अपने भाइयों के शाना बशाना खड़े होकर अपने मुल्क और मिल्लत का नाम रोशन कर रहे हैं। आज हमारे कारनामे सुनहरे अक्षरों में लिखे जा रहे हैं। यहाँ तक कि नोबल इनामात हासिल करने वालों में भी हमारा नाम दर्ज हो चुका है। साइंसी मैदान भी हमसे अछूता ना रहा। साइंस के मैदान में हम भारतीय खवातीन की हिस्सेदारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, लेकिन आज भी तादाद व शुमार के एतबार से हम अपने भाइयों से कम हैं। हुकूमत के साथ साथ तालीमी इदारों, फलाही जमातों और तंजीमों को इस पर मजीद गौर व फिक्र करने की जरूरत है। साथ में ये कि हम खवातीन, महिलाओं, औरतों को भी अपनी तालीम और तरबियत को लेकर खास तवज्जो की बहुत सख्त जरूरत है। इसके बावजूद भी अदबी तहकीक यानी लिटरेचरली रिसर्च, जिसे आप साहित्यिक अनुसंधान कह सकते हैं, या साइंसी तहकीक, इन दोनों शोबों में हमारा नुमाया किरदार है। अपने इस मकाले में मैंने साइंस में खवातीन की इल्मी सलाहियत पर रोशनी डालने की कामयाब कोशिश की है। चंद खास नाम जो अभी मेरे जहनो गुमान में आ रहा है वो ये है कि लारा बासी यूरोप की पहली खातून जो फिजिक्स की प्रोफेसर बनी, जिन्होंने बोलोनिया यूनिवर्सिटी में फलसफे की 6 मकाले लिखे। 19वीं सदी खवातीन के लिए बहुत ही अहम रहा, लेकिन खवातीन के लिए कॉलेज ने उन्हें तालीम और मुलाजमत के मौके दिए, जिसमें मारी क्यूरी जैसी साइंसदान ने तिब्बियाती यानी मेडिकल साइंस और केमिस्ट्री में नोबेल इनाम हासिल करके ये साबित कर दिया कि कुदरत ने जहानत में हमें अपने भाइयों से कमतर नहीं बनाया है। मेरे क्यूरी के बाद 2025 तक 66 खवातीन ने साइंस और अदब के मैदान में नोबल इनाम हासिल किए हैं। अमन शांति में 18 लोगों ने नोबल इनाम हासिल किए हैं। अदब साहित्य में 16 लोगों ने नोबल इनाम हासिल किए हैं। फिजिक्स और मेडिकल साइंस में 12 लोगों ने नोबल इनाम हासिल किए हैं। केमिस्ट्री में 8 लोगों ने नोबल इनाम हासिल किए हैं। फिजिक्स में 5 लोगों ने नोबल इनाम हासिल किए हैं और मायशियत में 1 ने नोबल इनाम हासिल किया। हाँ, यहाँ अफसोस का मकाम ये है कि भारत से बराहे रास्त कोई भी खातून मेरे इल्म के मुताबिक नोबल इनाम याफ्ता नहीं है, लेकिन मदर टेरेसा 1979 में अमन इनाम के तहत नोबल प्राइज हासिल की है, जबकि उनकी पैदाइश अल्बानीन में हुई और इसके बावजूद उनको भारत की शहरियत हासिल है और कलकत्ता से उनकी गहरी लगाव रही। भारत के चंद नोबल प्राइज याफ्ता के नाम जो मेरे जहन में आ रहा है वो मैं पेश करना चाहूंगी और वो ये हैं। पहला रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य में नोबल इनाम हासिल किए। सीबी रामन 1930 फिजिक्स में नोबल इनाम से नवाजे गए। तीसरा मदर टेरेसा 1979 अमन में नोबल इनाम हासिल किए। चौथा अमर्त्या सेन ने 1998 मायशियत में नोबल इनाम हासिल किया। पांचवा वेंकट रामन रामेश्वरी 2009 केमिस्ट्री में नोबल इनाम हासिल किए। कैलाश सत्यार्थी 2014 अमन में नोबल इनाम हासिल किए। सातवां हरगोबिंद खुराना को 1968 मेडिकल साइंस में नोबल इनाम से नवाजा गया। नौवां अभिजीत बनर्जी को 2019 अर्थशास्त्र में नोबल इनाम से नवाजा गया। इनके अलावा 2 नाम और हैं जिनकी पैदाइश भारत में हुई, लेकिन वो ब्रिटिश नागरिक थे। और जैसा कि मैंने बताई कि हिंदुस्तानी खवातीन ने साइंस के मैदान में नुमाया किरदार

0: तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि हम कुछ भूल रहे हैं अपने दोस्तों को
1: बिल्कुल लग रहा
0: सुनाना?
1: है, बातें तो हम जानकारियों की कर रहे हैं लेकिन हमारे जो दिमाग को थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट देता है उसको हम मिस कर रहे हैं, यानी के नगमा।
0: बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा नगमा।

0: सामीन, अभी आप समाप्त फरमा रहे थे ये खूबसूरत सा नगमा, और नगमे के बाद भी हम कुछ बात कर सकते हैं क्या? आप इजाजत देती हैं
1: बिल्कुल भी नहीं,
0: रास्ता?
1: मैं अगर इजाजत दे भी दूं ना शगुफ्ता, तो जरा घड़ी की तरफ देख लो, घड़ी हमें इसकी इजाजत नहीं दे रही है।
0: सही कह रही हैं।
1: पर कोशिश हमारी यही होती है कि हम हर बार आएं और बहुत अच्छे अच्छे मौजू पर बातचीत करें, अपने दोस्तों को बहुत सारी जानकारियां दें। लेकिन तब तक के लिए सामई, आप अपना ख्याल रखें, अपनी दोस्त राजदा
0: और शगुफ्ता
1: दोनों को दो इजाजत, आदाब।
0: आदाब।

अभी हम सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम। कंपेयरर थी राजदा हुसैन और शगुफ्ता बानो। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए जानकारी लेते हैं आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। थोड़ी देर बाद यानी 4:35 पर हम सुनेंगे फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम सांझ सरगम। शाम 5:00 प्रादेशिक मुख्य समाचार होंगे और 5:02 पर युवा श्रोताओं का दैनिक प्रसारण युववाणी। 5:30 पर औद्योगिक प्रसारण के अंतर्गत श्रमिक लोक।

शाम 6 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार होंगे और 6:02 पर खेती बारी, 6:32 पर हमारी दुनिया, शाम 7 बजे प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे, 7:11 पर जिले में आजकल, 7:15 पर आदिवासी अखड़ा, आज हम सुनेंगे हो भाषा के कार्यक्रम, 7:45 पर प्रायोजित कार्यक्रम सही हम सुनेंगे।

रात्रि 8 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा, 8:30 पर सुर्खियों में, 8:45 पर समाचार संध्या,

रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9, 9:15 पर उर्दू में समाचार होंगे और 9:30 पर करंट अफेयर्स। रात्रि 10 बजे खेल खिलाड़ी में हम सुनेंगे राष्ट्रीय खेल दिवस पर भारत श्रीलंका टेस्ट सीरीज के बारे में। रिपोर्ट संकलन रेखा पाठक अमिता खौरी का, कार्यक्रम की प्रस्तुति प्रभु शरण की। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत, आज हम सुनेंगे राग पुरिया कल्याण और राग मारुविहाग। दोनों ही राग की रचना एक ताल में और द्रुत रचना 3 ताल में निबद्ध होंगी। कलाकार हैं उस्ताद साबरी खान। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार होंगे, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे और 11:10 पर मीडियम वेव पर हमारी इस सभा का समापन होगा। एफएम पर हमारी सभा जारी रहेगी।

अभी हम कार्यक्रम संबंधी जानकारी ले रहे थे। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। दोस्तों, रिश्ते बहुत हैं इस दुनिया में, लेकिन भाई बहन का रिश्ता सबसे अनोखा है। कभी नोकझोंक, कभी शिकायतें, तो कभी एक दूसरे के लिए ढेर सारा प्यार। रक्षाबंधन का त्यौहार इसी खूबसूरत रिश्ते को और मजबूत करने का अवसर है। बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसकी खुशियों और सम्मान की रक्षा का संकल्प लेता है। लेकिन राखी सिर्फ एक धागा नहीं, विश्वास, स्नेह और अपनापन का बंधन है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन के हर उतार चढ़ाव में हमें साथ साथ रहना है।

ये खूबसूरत रचना थी शैलेंद्र की, आवाज थी लता मंगेशकर की, संगीतकार थे शंकर जयकिशन और इस गाने को हमने लिया था फिल्म छोटी बहन से। आइए सुने लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये गाना। आनंद बख्शी के बोल हैं, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कॉन्क्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सांस सरगम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आइए सुने आशा भोसले की आवाज में साहिर लुधियानवी की रचना को। इन बोलों को सुर में पुराया है रवि ने और इस गीत को हमने लिया है फिल्म काजल से।

0: अनजाना फिल्म का गीत अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
0: आइए सुने लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म चंबल की कसम का ये गाना। साहिर लुधियानवी के बोल हैं और खयाम का संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी हम सुन रहे थे फिल्म अनपढ़ का ये गाना। और दोस्तों, भाई बहन का रिश्ता दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक है। इस पवित्र रिश्ते में प्यार, विश्वास और अपनापन हमेशा बना रहे। ईश्वर सभी भाई बहनों को सुख समृद्धि और लंबी उम्र प्रदान करे। आप सभी को रक्षाबंधन की एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं। इस गीत के साथ ही अब आज का सांसर्गम संपन्न हुआ।

0: मीडियोवेव 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुने अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जन धन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि जन धन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के मामलों को लेकर झारखंड में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग दोहराई है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में कई लोगों को बचाना चाहती है, इसलिए सीबीआई जांच से बच रही है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले

0: की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को जांच सौंपी जानी चाहिए। झारखंड में जाति, आय, आवासीय और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी बनाए जा सकेंगे। कार्मिक विभाग ने 27 अगस्त को इस संबंध में आदेश जारी कर सभी जिलों के उपायुक्तों को भेज दिया है। यह व्यवस्था अगले 3 माह तक लागू रहेगी। फैसला प्रमाण पत्रों के लिए बढ़ी आवेदनों की संख्या को देखते हुए लिया गया है। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स में संविदा के आधार पर 53 पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। इनमें स्वास्थ्य बीमा संचालन प्रबंधक का 1, तल समन्वयक के 12 और आरोग्य मित्र के 40 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए प्रत्यक्ष साक्षात्कार 31 अगस्त को होगा। प्रदेश में अगले 4 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम केंद्र रांची ने 28 से 31 अगस्त तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवा को लेकर चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से FM 101.7 MHz पे। सांध्यकालीन सभा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। सभा के आरंभ में सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा पे जानकारी लेते हैं। अब से थोड़ी देर बाद शाम के 5:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गीतकार शैलेंद्र के लिखे चंद फिल्मी लंगमे। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। बागवानी एवं कृषि में खरपतवार नियंत्रण पर चर्चा होगी। कंद वर्गीय सब्जियों की खेती पर जानकारी देंगे गुरुचरण नायक। इनसे बातें करेंगे कमलेंदु महतो। साथ ही सुनेंगे इस कार्यक्रम में चंद लोकगीत। मुख्य समाचार शाम के 6 बजे सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अकड़ा हम प्रसारित करेंगे शाम की 6:02 पर। कार्यक्रम नन्ही दुनिया आप सुनेंगे शाम की 6:30 पर। रक्षाबंधन पर चर्चा होगी। साथ ही रंगारंग कार्यक्रम पेश करेंगे अंजुरानी देवगम। आज के इस कार्यक्रम के साथ होंगी अंजुरानी देवगम। शाम 6:55 पर हम आपको शामिल करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र के कार्यक्रमों में, जहां से आप सुनेंगे शाम 7 बजे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। शाम 7:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फरमाइसी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। समाचार संध्या में क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे रात्रि के 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:15 पर हम आपको शामिल करेंगे पुनः आकाशवाणी के रांची केंद्र के कार्यक्रमों में। गजलों का कार्यक्रम महफिल हम प्रसारित करेंगे रात्रि के 10 बजे। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे रात्रि के 11 बजे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। सभा समापन की घोषणा हम करेंगे रात्रि के 11:10 पर। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

और अब ये अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले के स्वर में, जिसे हमने लिया है फिल्म बंदनी से। आपको पता ही है गीत रचना शैलेंद्र की है, संगीतिया है एस डी बर्मन ने।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
3: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471136697, टोल फ्री नंबर 1-4-9-9 या 1-800-345-4060 पर।
2: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आप सुन रहे हैं श्रोताओ आकाशवाणी के चायवासा केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही गीतकार शैलेंद्र के लिखे चंद फिल्मी गाने। और अब इस कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म कन्हैया से। आवाज़ है मुकेश की, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

कन्हैया इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज़ में। संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। और अब इस कार्यक्रम का ये अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म मधुमति से। आवाज़ है लता मंगेशकर की, संगीत दिया है शलिल चौधरी ने। और आज आप सुन रहे हैं एक ही गीतकार शैलेंद्र के लिखे चंद फिल्मी गाने।

फिल्म श्री 420 का गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश और साथियों के स्वर में। गीत रचना शैलेंद्र की थी, संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। इसी के साथ कार्यक्रम गुलदस्ता अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं।

0: और अब अगला कार्यक्रम हम आपको सुनवा रहे हैं, कार्यक्रम खेती गृहस्थी। इस कार्यक्रम के साथ है कमलेंदु महतो।
1: समस्त किसान भाई बहनों को कमलेंदु का सप्रेम जोहार एवं आज के खेती गृहस्थी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी श्रोता भाई बहनों को रक्षाबंधन के पावन बेला पर अशेष शुभकामनाएं व बधाइयां। श्रोताओं, आज का दिन भी हम सबके लिए बहुत ही खास दिन है, यानी राखी पूर्णिमा में मनाए जाने वाला भाई बहनों का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन प्रत्येक परिवार में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे भारतीय संस्कृति में सदियों से पारंपरिक रूप से चली आ रही है और आज के दिन बहनें स्नान करके साफ सुथरे या फिर नए वस्त्र पहनकर थाली में तिलक, चंदन, रोली आदि सजाकर भाइयों के हाथों पर रेशम के धागे बांधती हैं। ललाट पर तिलक चंदन लगाकर उनके लंबी आयु के लिए कामना भी करती हैं और भाई भी अपने खुशीपूर्वक बहन को उपहार देते हैं, उनकी रक्षा के लिए संकल्प लेते हैं। इस तरह से श्रोताओं, हर परिवार में छोटे या बड़े किसी भी उम्र में सभी कोई भाई बहन का पवित्र रिश्ता को सदैव अटूट बनाए रखने के लिए और इसके उद्देश्य से ही पूरे भारतवर्ष में अन्य देशों में भी मनाया जाता। सभी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। किसान भाई बहनों, अब थोड़ा मनोरंजन।

0: करते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा पंच प्रज्ञा लोकगीत, और इसके पश्चात हम हर बार की तरह मुलाकात भी करेंगे हमारे एक प्रबुद्ध कृषक भाई से।
1: भूमि मांगो

0: किशन भाई बहनों, हमारे बीच में है एक आज प्रबुद्ध कृषक जो जानकारी दे रहे हैं। तो हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, जोहार।
1: किशन भाई बहनों, हर बार की तरह आज भी हम एक युवा कृषक से मिलते हैं और हमारे बीच में है एक युवा कृषक। हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जोहार।
2: जोहार
1: तो आपका शुभ नाम क्या है?
2: गुरुचरण नायक।
1: अच्छा गुरुचरण जी, जैसे कि आप हर प्रकार की खेती तो करते ही हैं, इसके साथ साथ आज हम चर्चा करेंगे जैसे कि जितने भी कंदवर्गीय सब्जियां हैं, चाहे ओल, मूली, शलगम, अदरक या हल्दी हो या फिर और भी आलू वगैरह भी, तो आप इसको समय के अनुसार तो करते होंगे। अलग अलग सबका तो सीजन होता होगा, नहीं?
2: जी हाँ, अलग अलग मौसम में इसका खेती करते हैं।
1: अच्छा,
2: जी
1: जैसे अभी बहुत कोई बरसात का समय में कोई ओल लगा चुके हैं या फिर हल्दी वगैरह भी लगा चुके हैं, तो ये सब तो अभी बहुत अच्छा मैंने पौधा बढ़ रहा होगा, नहीं?
2: जी हाँ, अभी बरसात के मौसम में ओल हुआ, उसके बाद हल्दी, उसके
1: अच्छा,
2: बाद मूली, ये
1: हाँ,
2: सब हम लोग बहुत अच्छी तरह से ये सब खेती करते हैं। जी
1: और इस सब में ज्यादा देखभाल या फिर मेहनत का भी ज्यादा जरूरत नहीं होता
2: जी
1: होगा।
2: हाँ, ज्यादा जरूरत नहीं है
1: हाँ,
2: मेहनत।
1: एक बार लगा दिए तो बस उसके बाद तो फिर अपने आप बढ़ते रहता है।
2: जी
1: तो सिंचाई का तो हम लोग अभी फिलहाल बात करने का जरूरत भी नहीं, जैसे कि अभी बारिश का मौसम है तो लगभग 2 महीना तो शायद बिना सिंचाई में ही आ जाता होगा, नहीं?
2: जी अभी तो बारिश गिर रहा है तो बिना सिंचाई में ही बढ़िया। अभी मैंने
1: हरा भरा
2: पानी का
1: रहता है।
2: उतना जरूरत नहीं है।
1: हाँ,
2: जी
1: और जितना नमी रहेगा, मिट्टी जितना हल्का रहेगा, उतना जल्दी मैंने बढ़ता भी है।
2: जी
1: तो अच्छा ये बताइए कि जो जितने भी जो कंद वर्गीय सब्जियां हैं, आलू हो चाहे ओल हो या फिर अरबी हो चाहे सुरन हो, तो इस सब का मिट्टी किस तरह का होना चाहिए?
2: जी इसका मिट्टी बलुआई मिट्टी होना चाहिए। जी
1: अच्छा,
2: मिट्टी को बढ़िया, मतलब स्पेशल इसको भुरभुरी बढ़िया
1: हाँ,
2: जोताई
1: जुताई
2: करके
1: करके। हाँ,
2: बढ़िया इसको हल्का बनाना होगा। मिट्टी बलुआई होना चाहिए।
1: अच्छा,
2: जी
1: हाँ,
2: इसका वो
1: मतलब
2: भी
1: ज्यादा कंकड़ पत्थर नहीं रहना चाहिए।
2: जी नहीं।
1: हाँ, मतलब जितना भी जमीन है आसपास में जो इस तरह का मिट्टी है, तो ऐसे ही खेतों में हम लोग इसको लगाते हैं ना।
2: जी हाँ
1: अच्छा, जब आम जैसे कि कोई कोई अपने बगीचों में भी जहाँ पर बहुत उपजाऊ रहता है, गोबर खाद हुआ, कूड़ा करकट का जो ढेर रहता है, उस समय भी बहुत अच्छा होता होगा ना ये भी?
2: जी उसमें तो बहुत अच्छा होता है सर। और जो मतलब जैसे कि हो गया ओल का खेती, उसके बाद
1: हाँ,
2: मूली का खेती, इसमें हम लोग ज़्यादातर वही गोबर खाद हुआ, उसके बाद
1: अच्छा,
2: जैविक खाद हुआ, जैसे कि पेड़ पौधा का गिरा हुआ पत्ता, सड़ा हुआ
1: हाँ, कूड़ा
2: पत्ता,
1: करकट सब।
2: हाँ कूड़ा करकट, सब ये सब हम लोग इसमें मतलब वो खेती में डालते हैं। जी हाँ
1: हाँ, और यही सब डालना भी चाहिए ताकि हम लोग जो जैविक खाद या फिर जो कूड़ा करकट बोल रहे हैं इसको अगर डालते हैं, तो फिर इसका जो बढ़ने की क्षमता और उसका जो ताजा होने का जो क्षमता है, ये बहुत देर तक बरकरार रहता है ना,
2: जी हाँ
1: और टेस्ट में भी काफी अंतर होता है।
2: जी
1: हाँ, ये स्वादिष्ट होता है। और जैसे कि रासायनिक खाद अगर डालते हैं तो उतना टेस्ट तो नहीं रहता होगा उसमें,
2: जी उसमें उसका टेस्टी और इसका टेस्टी में
1: बहुत
2: अंतर है।
1: अंतर है।
2: जी
1: हाँ
2: हाँ
1: अच्छा, तो जैसे कि ओल वगैरह लगाते हैं तो पहले इसमें तो गड्ढा कर लेते होंगे, मैंने देसी ओल सभी लगाते हैं कि हाइब्रिड ओल आजकल जो लगा रहे हैं वो भी लगाते हैं?
2: हाइब्रिड भी लगाते हैं, देसी भी, दोनों
1: अच्छा,
2: प्रकार का मतलब वैरायटी लगाते हैं। जी
1: जिसको जैसा पसंद है वो अपना खरीदते हैं
2: जी
1: ना।
2: हाँ
1: अच्छा, तो ये देसी वाला तो बहुत खुजलाता है, बहुत कोई अगर अगर उसका सब्जी बनाना नहीं जानते होंगे तो फिर बहुत परेशानी भी होता है खाने में, नहीं?
2: जी हाँ बहुत परेशानी भी होता है, लेकिन और कोई कोई तो देसी को भी मानते हैं,
1: हाँ,
2: इस
1: मानते भी
2: हाँ
1: हैं, सही
2: इससे
1: बात।
2: भी आदमी है। जी
1: हाँ,
2: हाँ
1: वैसे सब्जी भी और अचार भी बहुत प्रकार का इसका बनाते हैं
2: जी
1: लोग,
2: हाँ हाँ
1: और जो बड़े किस्म के होते हैं मद्रासी जैसे बोलते हैं, वो तो ऐसे सिंपल होता है और बहुत बड़े आकार के बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं ये सब ना।
2: हाँ वो तो बहुत आदमी को पसंद है सर। हाँ वो तो बहुत आदमी खरीदता
1: और
2: भी
1: ये
2: है,
1: 12 महीना ये चलते
2: चलते
1: रहता है,
2: रहता है।
1: मतलब उतना जल्दी हम लोग खराब भी नहीं होते हैं, बहुत दिन तक रख भी सकते हैं
2: जी
1: ना।
2: हाँ
1: अच्छा, हाँ, तो रखने के लिए किस तरह का व्यवस्था करते हैं? जब अगर बहुत ज्यादा आपके मान खेत में हो गया, जल्दी बिक्री नहीं हो रहा है, तो घर में तो रखते होंगे, तो फिर कैसे खुला जमीन में ही इसको ऐसे मैंने बिछा देते हैं क्या?
2: जी हाँ इसके लिए थोड़ा मतलब जमीन तो खुला भी होना चाहिए, हवा
1: अच्छा,
2: लगना चाहिए,
1: ठंडा रहना
2: हाँ
1: चाहिए,
2: ठंडा रहना चाहिए इसके लिए।
1: मैंने
2: उस तरह का रखने से मतलब
1: अधिक दिन
2: कुछ
1: तक रख
2: अधिक
1: सकते
2: दिन
1: हैं।
2: तक रख सकते हैं, सड़ेगा नहीं, बढ़िया रहेगा।

0: हाँ
1: जी
0: कहीं
1: हाँ
0: वैसे जगह समय तो कहीं कहीं तो कोल्ड स्टोर होता है, तो हमारे इसे देहाती क्षेत्र में कोल्ड स्टोर नहीं है, तो फिर अपना जमीन में ही फैला देते
1: जी
0: हैं।
1: हाँ
0: अच्छा, मैंने आलू को भी ऐसे ही रखते होंगे।
1: हाँ आलू को भी ऐसे मतलब साफ सुथरा जगह में हवा लगना चाहिए, उसके बाद थोड़ा दूरी बना करके उसको भी रख देते हैं।
0: अच्छा,
1: जी
0: हाँ
1: हाँ ज्यादा मतलब एक ही मतलब उसी के ऊपर लाद देने से तो वो भी सड़
0: हाँ,
1: जाएगा।
0: थोड़ा सा मैंने ऐसे लेवल में फैला
1: हाँ
0: देते
1: लेबर में
0: हैं।
1: फैला देते हैं बढ़िया से।
0: हाँ
1: जी
0: हाँ हाँ
1: इस तरह से रखते हैं।
0: अच्छा, हाँ अगर बोरा के अंदर में रखेंगे तो फिर सब एक ही साथ गर्म हो जाएगा जल्दी,
1: सड़
0: अंकुरित
1: जाएगा।
0: है, अंकुरित भी हो जाता है
1: हाँ
0: बोरा के अंदर से
1: जी
0: ही।
1: हाँ
0: हाँ इसीलिए मैंने फैला के एकदम खुला रखने से अच्छा है, हवा लगते रहना
1: जी
0: चाहिए।
1: हाँ
0: अच्छा, हल्दी की खेती आपके क्षेत्र में क्या कोई बगीचों में ही ऐसे करते हैं आसपास में, या फिर कोई ऐसे पठारी क्षेत्रों में भी लोग कर रहे हैं?
1: पठारी क्षेत्र में हल्दी की खेती बढ़िया होता है सर।
0: अच्छा,
1: जी हाँ
0: मैंने थोड़ा सा ढलान टाइप का
1: ढलान टाइप
0: है,
1: से होना चाहिए, उसमें
0: पानी
1: पानी जमाव नहीं होना
0: नहीं
1: चाहिए।
0: होना चाहिए।
1: जी
0: हाँ
1: हाँ पानी निकल जाना चाहिए। उसके बाद मतलब बढ़िया सूखा टाइप से मतलब खेती ठू मतलब हाँ वो जगह ठू रहना चाहिए।
0: अच्छा,
1: हाँ इस तरह से रहने से बढ़िया होता है उसका खेती।
0: हाँ,
1: जी
0: यानी कि उसमें कोई भी जमीन में हम लोग कर सकते हैं, उसमें कहीं छायादार हो या फिर ऐसे खुला जमीन में भी हो
1: हाँ
0: सकता
1: कहीं भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए मिट्टी जो है वो थोड़ा सा सूखा टाइप से रहना चाहिए,
0: है। हाँ
1: उसमें
0: बालू
1: पानी
0: मिक्स
1: जमाव नहीं
0: वाला।
1: होना चाहिए। उसके बाद वो बढ़िया बलुआई मिट्टी होना चाहिए। हाँ
0: अच्छा, हाँ
1: वही सब उसका मतलब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जी
0: अच्छा, शुरुआत में क्या एक एक ठोकंद जो अंकुरित हुए रहता है या फिर टुकड़ा रहता है उसी को लगाते हैं,
1: जी
0: और उसी में एक बार जब पौधा निकलेगा तो हो सकता है 1 पाव आधा किलो एक ही जगह
1: हाँ जी
0: हो
1: ऐसे ही
0: जाता है,
1: होता है।
0: पूरा
1: हाँ
0: फैल जाता
1: फैल
0: है।
1: जाता है एकदम बढ़िया से उसका मतलब आधा किलो 1 किलो ऐसा भी अगर करने के ऊपर में
0: हाँ
1: उसका
0: हाँ जैसा
1: निर्भर है।
0: खाद रहेगा, उपजाऊ
1: हाँ
0: रहेगा
1: हाँ
0: मिट्टी, तो ऐसे ही बने बढ़ते
1: बढ़ते
0: जाएगा।
1: जाएगा। हाँ
0: तो इस सब तो करने के पश्चात आप लोग फिर और अलग से उसको सुखाते होंगे, फिर साफ करते होंगे, और
1: हाँ
0: उसके बाद
1: जी
0: फिर कोई मशीन वगैरह में इसका फिर पाउडर बनाते हैं
1: जी
0: ना।
1: हाँ हाँ वो सब मतलब एक बार हो जाता है तैयार हो जाता है हल्दी की खेती, तो उसको हम लोग उसको मतलब खोद के निकाल लेते हैं। उसके बाद बढ़िया से उसको साफ करते हैं पानी में, उसके बाद
0: हाँ
1: सुकाते हैं।
0: हाँ मिट्टी नहीं रहना
1: उसका
0: चाहिए।
1: मिट्टी मिट्टी नहीं रहना चाहिए, बढ़िया एकदम बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए। और उसके बाद उसको सूखा करके उसको एक मशीन में पाउडर जैसा हम लोग
0: अच्छा,
1: मशीन में बना देते हैं उसको। जी हाँ
0: अच्छा, तो आपके यहाँ जो भी आप आलू वगैरह खेती करते हैं तो क्या एक ही किस्म का करते हैं कि ऐसे सादा और लाल दोनों किस्म का करते हैं?
1: जी हम लोग का क्षेत्र में तो सादा भी चलता है और
0: अच्छा,
1: लाल भी चलता है। हम लोग के क्षेत्र में दोनों पसंद है, दोनों मतलब वैरायटी बहुत अच्छी तरह से चलता
0: अच्छा
1: है।
0: अच्छा हाँ,
1: जी
0: और आलू ऐसा कंद वाला सब्जी है जो कि 12 महीने लोग इसको यूज करते हैं अपने,
1: जी हाँ
0: दूसरा सब्जी अगर नहीं मिलता है तो ये तो सब दिन चलते रहता
1: ये तो
0: है।
1: चलते रहता है, ये तो सबके साथ सब सब्जी के साथ ही तो
0: हाँ
1: मिलता है।
0: सबके साथ मिलेगा, वो
1: जी
0: बात
1: हाँ
0: सही है।
1: जी
0: हाँ इसीलिए इसका मैंने अच्छा ही ये होता है। अच्छा, फिर और जैसे कि हम लोग जैसे ऑयल की बात कर रहे थे, और उसके साथ साथ जो अरबी होता है और जो आपके क्षेत्र में कोचू या फिर आलती वगैरह बोलते हैं,
1: जी
0: तो
1: हाँ
0: ये भी सीजन में तो अच्छा ही मैंने बिक्री होता होगा आपके आसपास में बाजार में।
1: जी हाँ ये भी बहुत ही मतलब बिक्री है इसका भी बहुत भी बहुत सारे किसान इस टाइप का मतलब खेती सब करते हैं,
0: अच्छा
1: हम भी
0: अच्छा
1: करते हैं। और इसका मतलब मार्केट में इसका मतलब भाव जो है वो भी अच्छी तरह से हम लोग को मिलता है। जी
0: हाँ, धीरे धीरे लोग इसको मतलब सब्जी भी देखा देखी में पसंद करने लगे हैं, और ऐसे स्वास्थ्य के दृष्टि से अच्छा भी है, कंद वाला सब्जी है, और उसको बनाने में और उसका टेस्ट भी अच्छा ही लगता है।
1: जी हाँ
0: और आगे हम जैसे कि कंद वाले जो ऐसे कंद वाला भी जो होता है, जैसे शकरकंद हुआ, उसमें भी दो वैरायटी के होते हैं, कुछ लाल भी होते हैं और सादा भी,
1: जी हाँ
0: तो ये सब भी तो आप लोग करते होंगे, तो कैसा उसका लत्तर को कटिंग करते हुए छोटे छोटे मैंने मैंने टुकड़े में
1: छोटे
0: लगाते
1: छोटे
0: हैं?
1: टुकड़े में इसको लगाते हैं। सबसे
0: अच्छा
1: पहले
0: अच्छा
1: उसका जो लत्तर बड़ा बड़ा आता
0: हाँ
1: है,
0: हाँ हाँ
1: हाँ वो बीज मतलब उसका जो पौधा ही आता है लत्तर सब
0: हाँ
1: उसको
0: हाँ
1: बड़ा बड़ा आता है, तो उसको हम लोग छोटे छोटे मतलब काट के उसको छोटा कर देते
0: अच्छा,
1: हैं।
0: 8-10 इंच का
1: हाँ 8-10 इंच का। उसके बाद जो
0: आड़ बना
1: उसका
0: हुआ
1: आड़ बना
0: रहता
1: हुआ रहता है लाइन बाई लाइन का तार सिस्टम से उसको
0: है।
1: बढ़िया से हम लोग लगा देते हैं।
0: अच्छा,
1: जी हाँ
0: तो ऐसे ही मतलब शुरुआत में ही उसमें तो नमी रहता ही है,
1: जी
0: और पहले से ही मिट्टी को बना लेते हैं, उसके बाद में लगाना शुरू करते
1: जी
0: हैं।
1: हाँ
0: अच्छा
1: हाँ उसके बाद बढ़िया से उसमें खाद उद गोबर खाद ये सब जितना भी हो गया
0: हाँ
1: और जैविक खाद, उसके बाद थोड़ा मोड़ा उसमें रासायनिक खाद भी डाला जाता है। तो इसमें मतलब बढ़िया से सारा चीज डालने के बाद वो तो अपने से बढ़िया बढ़ जाता
0: ये सब
1: है।
0: भी तो अलग अलग किस्मों के होते हैं, जैसे कि पहले जो देसी

0: का होता था वो, एक मीडियम साइज का, एक
1: जी
0: एक ठो कमरा अगर हुआ तो फिर बड़ा से बड़ा कम से कम 200 ग्राम, 250 ग्राम या फिर 100 ग्राम।
1: जी
0: और आजकल तो इससे भी बड़े बड़े हाइब्रिड वाला निकल रहे हैं जो कि अलग अलग किस्म का बाहर से आते हैं।
1: जी हाँ जी, अभी तो बहुत बड़ा बड़ा साइज होता है। जी
0: अच्छा, इसका भी लोग ऐसे ही उबाल के या फिर जला के खाते हैं, या फिर कोई कोई सब्जी ही बना लेते
1: सब्जी
0: हैं,
1: भी बनाते हैं,
0: पूजा पाठ प्रसादी वगैरह भी करते
1: ये
0: हैं,
1: सब भी खाते हैं। जी हाँ सही बोले आप,
0: अलग अलग इसका उपयोग होता ही है।
1: जी हाँ।
0: और हमारे इस क्षेत्र में, छोटानागपुर क्षेत्र में, इसका खेती प्राय पठारी क्षेत्र हो या समतल, हर जगह कर सकते हैं ना।
1: जी हाँ, इसके लिए सभी मतलब सिंपल क्या बोलेंगे, समतल एरिया में भी इसका खेती होता है।
0: हाँ, अधिकतर जो नदी किनारे का जमीन होता है तो वहाँ इसलिए लगाते हैं कि वहाँ पर सिंचाई का सुविधा है,
1: जी
0: कभी कभार पानी का जरूरत हुआ तो हम लोग अपना मशीन से या फिर कोई भी चीज़ से पटा सकते हैं ना।
1: हाँ, आसानी से उसका सिंचाई हो जाता है। जी हाँ।
0: तो आपके यहाँ और कुछ सिंचाई के लिए क्या व्यवस्था है, कोई कैनल वगैरह या फिर डीप बोरिंग इस तरह का कोई ऐसे सुविधा है क्या?
1: जी हाँ, सबसे पहले तो हम लोग अभी वही मतलब टूलू मशीन से सिंचाई
0: अच्छा
1: करते
0: अच्छा
1: हैं,
0: मैंने अपना ही व्यवस्था
1: अपना
0: किए।
1: व्यवस्था किए हैं। उसके बाद जो पहले से जो नाला उला है ये सब, उसमें भी मतलब पानी आता है तो उसमें भी सिंचाई कर लेते हैं। डीप बोरिंग सब भी है,
0: हाँ, वो
1: हर
0: समय के
1: चीज़ का
0: हिसाब से
1: सुविधा
0: आता
1: है।
0: है,
1: हाँ, हर चीज़ का सुविधा है, सिंचाई करने का कोई मतलब असुविधा नहीं है। हाँ,
0: बस
1: किसी
0: नदी में पानी रहना चाहिए।
1: बस बस।
0: तो अन्य लोगों को क्या कहना चाहेंगे संदेश के तौर पर, अगर कंद वाली सब्जी खेती करते हैं तो फिर उसमें ज्यादा मेहनत तो नहीं है, तो इसको भी वैसे जमीन में खाली पड़ा जो जमीन है उस सब तो करना चाहिए ना।
1: जी हाँ, वो सब तो बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, हम और किसानों से यही कहना चाहेंगे कि मतलब समतल एरिया हो या फिर ऐसे मतलब पठार टाइप का जमीन हो, कोई भी जमीन
0: जो
1: हो, उसमें मतलब कंद वर्गीय खेती आप आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ
0: और इसके लिए समय समय पर बहुत सारे ऐसे कृषि विभाग वाले जानकारी भी देते रहते हैं
1: जी
0: ताकि बेहतर कृषि कैसे हो ना।
1: जी हाँ, वो तो बहुत सारे मतलब YouTube में, मोबाइल सुबाइल में, ये सब में बहुत सब मतलब जानकारी
0: हाँ,
1: मिलता है। ये सब भी मतलब सुन के अपने मतलब
0: उसको अगर
1: दिमाग में
0: अपना
1: रख।
0: सकते
1: जी
0: हैं।
1: हाँ
0: तो आपने कंद वर्गीय सब्जियों की खेती के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।
1: जोहार।
2: इस मुलाकात के पश्चात आपके लिए एक जरूरी संदेश।
3: क्या आप जानते हैं कि जलवायु क्या होती है? जलवायु वह सामान्य मौसम है जो हम किसी जगह पर लंबे समय तक, लगभग 30 साल तक महसूस करते हैं। यह सूर्य की रोशनी, हवा, जमीन, समंदर और बर्फ से प्रभावित होती है। वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूगोल, महासागर विज्ञान और मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारियों को एक साथ लेकर अध्ययन करते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है। लेकिन आज हमारी जलवायु पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस का निकलना है। इस वजह से गर्मी बढ़ रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है और समुद्र का जल स्तर भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे पहला कदम इससे समझना है। इसलिए यूनेस्को जलवायु परिवर्तन की जानकारी को आसान और सरल भाषा में समझाने का समर्थन करता है ताकि स्कूल के बच्चों से लेकर समुदाय के नेता तक सभी ये जान सकें कि धरती पर क्या हो रहा है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय पर एक खास प्रदर्शनी आयोजित की गई।
2: संदेश के पश्चात किसान भाई बहनों, अंत में पुनः मनोरंजन करते हैं और सुनते हैं एक उड़िया लोकगीत। कलाकार हैं सुरभि पान एवं साथीगण।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के मामले को लेकर झारखंड में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग दोहराई है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में कई लोगों को बचाना चाहती है, इसलिए सीबीआई जांच से बच रही है।

0: कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को जांच सौंपी जानी चाहिए। झारखंड में जाति, आय, आवासीय और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी बनाए जा सकेंगे। कार्मिक विभाग ने 27 अगस्त को इस संबंध में आदेश जारी कर सभी जिलों के उपायुक्तों को भेज दिया है। यह व्यवस्था अगले 3 माह तक लागू रहेगी। फैसला प्रमाण पत्रों के लिए बढ़ी आवेदनों की संख्या को देखते हुए लिया गया है। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स में संविदा के आधार पर 53 पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। इनमें स्वास्थ्य बीमा संचालन प्रबंधक का 1, तल समन्वयक के 12 और आरोग्य मित्र के 40 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए प्रत्यक्ष साक्षात्कार 31 अगस्त को होगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से, और अब सुनते हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अकड़ा।

तुम बी ते बीरबल गुंडाई गे ते गेरा गुंडाई राय ते रासो गुंडाई लोहे ते लोदो गुंडाई नेन उपन हागिया गुंडाई कोए ते उपनिय किली बागे सोरेंग तीरिया तोपनो किली को रिको हटिया ना नेन उपन हित रे हटिया कन बागे को कोए चा अडान चिमिन चिमिन सिरम दनंग रियो जिला रिमहतुई ते पोड़हाट राज को बेटा लगा ऐसु ते बागे किलिरन आको हगा को ना आओ रांची जिला तला सिमडेगा कोलेविरा अंडो थिते टंगर ब्लॉक रे मेना कुआ चेतन रे ओलेयन उपुन हगा तलाए तेगे तरा हगा को असुर जपा तानी बसारे को ताईकिना ना जके मागे परोग रे बागे बिर तानी बसा नुतुम ते असुर दिवरी बोंगाया मियन तिरिये हितर रन तरा हगा को दो असुर अंडो बाई हतुरे को तयेना तारा को तो जंपो पीते सिंगे असुर पाती को सेनोयना बारिये तारा हगिया को तो जंतुर पीज गगर बिड़ा नरसंडा मूलिति को सेनोयना आपिये तारा हगिया को तो बाई हतु बाली बोन टिये पुसेरे को तयेना उपुनिये तारा हगिया को तो जो जो हतु उन्नो रोतना सही करे को तयेना ना पे आयुम के उपुन हित रिन हगा को तलाये तिगे डोमके हड़म मन बिर रे हतु दिसुम आयरलेदा नैन बीर दो डोमके नमले बीर अंडो नैन रिया नुतुम दो नम बीर तैलिना काजी काजी ते ना बरसिंग दो मन बीर एने ते मान बीर काजी उतना डोमके हड़म दो चौके दिर बिरुए को आराहने तैकिना आया तलाहुन कुआ माधो दो टेंगरा रे आरा लेना नैन माधुआ तुरुई हो कुआहन को तलाये तिगे मांडो नुतुम पे अन होन लो ताईकिना तुरुई हो कुआ नुतुम मोटाए धुंदा डोमके मांडो जाम्बिरा न झुगड़ो माधुआ मुतकुल हुन मोटाए मानबिरिया सरदार पाईटी रे ताईकिना इना मेनते एन बंशरेन साबिन को सरदार नुतुम तिको उमिये कना माधु हपड़म दो तुमरुक गे तईकिना मेन दो मांडो एंगाते एसु मोटा तगड़ा अनो सलंगी गे तईकिना नेल बिटान कुआ मोचाएते आयुम ले उतं जगार रिको मेनिया मांडो एंगाते दो चाला इलिका एनु किना मी बिला उपुट मया मांडी लिका ए जोमे तईकिना अनो दाए नुई तईकिना इन दिलंगा सिटिये को सबिन गे पाटे बोतो तेको तईकिना मेन दो मांडो दो टोटा तिगे तईकिना हारा मारांगो तन लो सबिन को एर पिंदन तन तईकिना मेन दो मांडो वाले से पेड़ोगे टोटा तिगे तईकिना मांडो दो आकोआ वित्किल को गुपी तईकिना सिटिया रिया आया इनुंग दो दारू दे हुडिंग मरांग धीरी को बाटी तिंडिम तिया तईकिना नैन इनुंग दो जाओ रिया मुसिंगो नागा बनो बाले से पेड़ों के टोटा कंगे तानायु ताइन आया अपे हो हिली को ऐसु को बिलेंग भी चाहिए आया गियु गमंग हवनचा मेंते ओता बाटी की थे बांधी बोड़ बायर ची गोए बिंग को थे को पाटु तोली ताई किना हिली को आ नेलकन बिलेंग भी चे भरोते मांडो बासियम मंडी का जोम के थे मीर इदंग रगे किड़ा बितील को दोए नी ओल कुआ अंडो वुरु बितर रे गुपी लगिदे हर ओप कुआ गुपी गुपी ते आयुब मीरा उतरना बासियम सिंह वयान रे किड़ा होन को लिका बितकील कुआ तोवा के नूनुआ दारूरिया जोमे जो कोया हासा बितर रे असांगा दाका को उरके ते लाई बियो गे जोमिया ऐसु चनब दिन हेली कुआ आर्गा एविचे मुकुन्यान ते लिजे पिंडा तोले एतो किडा उवा रिया साबिन पैट्रे दासी चित्र क्लो आचु मिडेने ताई किना पुरुप पनेयो आया जुड़ी क्लो सेन मिशेना समय लिटिप काट कर निदसिंगी सेनो परमियाना बाउते ते को भुरुमियाना को मांडो मारो से पेडिया।

0: ठीके ना वो आयम तन देख ना फूल चंद समझ ना तक नहीं जुड़े को ता आए थे मारने अटकर इंगोल साड़ी में से वो आयम नहीं जा।
1: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
2: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
1: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: ठीक है, नेता देखे तस्कि अखड़ा बगड़ियो दिया समय से ट्रेजन हो अखड़ा द्वारा केंद्र से आकाशवाणी चाईबासा पीन इरिल पीए पीए बारगुर नेत निकुल से कम ऑल को लो जुई पे तुंडोरे अरे राम सिंह जाता तक तुम बनते जोहार।
3: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हुआ करा, और अब सुनते हैं बच्चों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया। नेरे बाबा किधर है तेरा नन्ही दुनिया का धुन बाबा बजा।

या सुनने वाले सभी नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को अंजू दीदी का ढेर सारा प्यार। और बच्चों, आज रक्षाबंधन है, तो सभी बच्चों को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई। सभी बच्चों ने, सभी बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी आज, है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों, रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। रक्षाबंधन भारत के, चलिए हम थोड़ा सा जानते हैं रक्षाबंधन के बारे में। हाँ, आपने बांधी अपने भाई को राखी, तो क्यों मनाते हैं, क्या इतिहास है, थोड़ा सा हम जानेंगे। ठीक है, आपको जानना बहुत जरूरी है, आप जानकारी रखिए। रक्षाबंधन भारत के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है बच्चों। यह भाई बहन के प्यार का प्रतीक माना जाता है, इसलिए हम सभी को रक्षाबंधन का त्यौहार के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। रक्षाबंधन यानी कि रक्षा का बंधन, एक ऐसा रक्षा सूत्र जो भाई को सभी संकटों से दूर रखता है। यह त्यौहार भाई बहन के बीच स्नेह और पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। रक्षाबंधन एक सामाजिक, पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक भावना के धागे से बना एक ऐसा बंधन, पावन बंधन है, जिसे रक्षाबंधन के नाम से भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल और मलेशिया में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। रक्षाबंधन एक हिंदू व जैन त्यौहार है, जो प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सावन यानी श्रावण में मनाए जाने के कारण इसे श्रावणी या सलूनो भी कहते हैं। वैसे तो भाई बहन का रिश्ता बहुत खास होता है, जिस तरह से वह एक दूसरे की चिंता करते हैं, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। एक दूसरे का जो उनका स्नेह है, प्रेम है, भाई बहन के बीच का रिश्ता अतुलनीय है बच्चों। वे चाहे छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से किया हुआ लड़ाई झगड़ा हो बचपन का, है ना, फिर भी एक दूसरे के लिए कुछ भी करने से वो कभी पीछे नहीं हटते। और ऐसा रिश्ता ये हमेशा के लिए अमर रहता है, कभी ये कम नहीं होता। प्रेम स्नेह प्यार जो एक दूसरे का बंधन है, वो कभी भी घटता नहीं है, कम नहीं होता है। और एक चीज़ और है बच्चों, चलिए हम थोड़ा सा इसकी पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं के बारे में, कहानियों के बारे में आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन के बारे में। राजा बलि और माता लक्ष्मी की बातें करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार बच्चों, भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर असुर राजा बलि से तीन पग, है ना, पग यानी कि पैर भूमि दान में ली थी। वचन का सम्मान करते हुए भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के द्वारपाल बन गए। तब माता लक्ष्मी ने सावन पूर्णिमा के दिन राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध कर उन्हें अपना भाई बनाया और भगवान विष्णु को वापस बैकुंठ में ले गई। अब कृष्ण और द्रौपदी की हम बातें करें। महाभारत काल में जब भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी, उससे खून बहने लगा था, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्ला फाड़ कर उनकी उंगली में बांध दिया था। इस स्नेह से प्रसन्न होकर कृष्ण ने द्रौपदी की हमेशा रक्षा करने का वचन दिया था, जिसे उन्होंने चीरहरण के समय निभाया। रानी कर्णवती और हुमायूं की हम बात करें तो ऐतिहासिक कथाओं के अनुसार चित्तौड़ की रानी कर्णवती पर जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, तब उनकी रक्षा के लिए रानी ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं

अपने धर्म की इस मर्यादा का सम्मान करते हुए उनकी मदद के लिए अपनी सेना भेजी थी। जैसे अभी हमने कहा बच्चों, रक्षा बंधन का शाब्दिक अर्थ रक्षा करने वाला बंधन यानी कि धागा है, तो ये हमेशा बना रहे। भाई बहनों का प्यार स्नेह, हम यूं ही हर वर्ष एक समय होता है बच्चों, हम उस दिन मनाते हैं, लेकिन स्नेह और एक दूसरे के प्रति जो समर्पण है वो हमेशा रहना चाहिए। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनेंगे एक प्यारा संगीत।

0: सीमा
1: जी,
0: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों, लेकिन मैं
0: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
0: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
0: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
6: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1444 99 या 1800345406 पर।
5: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिंग पास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: पुलिस?
0: मिस सीमा
1: जी,
0: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों, लेकिन मैं
0: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
0: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
0: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: पुलिस?
5: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
6: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1444 99 या 1800345406 पर।
5: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: पुलिस?
7: चलिए बच्चों, इन जानकारियों के बाद आइए। जैसे कि आप जानते हैं, परिवार सिर्फ एक जैविक रिश्तों से नहीं बनता, यह प्यार और देखरेख से भी बनता है। हमारे जिले में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, या फिर माता पिता तो हैं लेकिन किसी कारणवश अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता, या जो वर्तमान में संस्थागत देखरेख में हैं। ऐसे बच्चों के लिए सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत फोस्टर केयर योजना चलाई जा रही है। इसे पालन पोषण देखरेख योजना भी

चाहता है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ समय के लिए परिवार की देखरेख की आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत उन्हें आवश्यकता अनुसार या 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पालन पोषण देखरेख से योजना लाभान्वित किया जा सकता है। आइए जानते हैं फोस्टर केयर या पालन पोषण देखभाल क्या है। यह गोद लेने की प्रक्रिया नहीं पर एक अस्थायी व्यवस्था है जहाँ बच्चा प्यार, सुरक्षा और गरिमा के साथ रहता है जब तक वो फिर से अपने जैविक परिवार में ना चला जाए। अगर किसी भी बच्चे के जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं तो आप एक पालक माता पिता बनकर अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए भावी माता पिता की आयु का जोड़ 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और यदि अकेला व्यक्ति किसी बच्चे के पालक बनना चाहते हैं तो उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष तथा दोनों का सम्मिलित आयु 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन एकल पुरुष को बालिका नहीं दी जा सकती। अगर आप पश्चिमी सिंहभूम जिला के निवासी हैं एवं आपके पास मुखिया द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र, पुलिस स्टेशन से प्राप्त या फिर प्रज्ञा केंद्र से प्राप्त पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो, पालक माता पिता शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हो, परिवार हर बच्चे का अधिकार है, तो आइए जरूरतमंद बच्चों का हाथ बढ़ाइए और उन्हें एक अच्छा भविष्य दें। इस योजना के तहत जरूरतमंद इच्छुक परिवारों को मासिक 4000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाता है। अधिक जानकारी है तो जिला बाल संरक्षण इकाई 9955131364 या फिर 9090700489 पर संपर्क करें या फिर जिला बाल संरक्षण इकाई जिला उपायुक्त का कार्यालय तीसरा तल्ला चैवासा में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिला बाल संरक्षण इकाई पश्चिमी सिंहभूम द्वारा जन सूचना जारी।

0: बच्चों,
1: जय हिंद दिल्ली।
0: तो कैसे हैं आप लोग?
1: हम सभी अच्छे हैं।
0: अच्छे हैं। स्कूल जा रहे हैं आप लोग?
1: जी हाँ।
0: अच्छा, तो आज हमारी नन्ही दुनिया में कौन कौन हमारे साथ शामिल हुए हैं? कौन है, आपका नाम क्या है बेटा?
2: मेरा नाम अर्चना देवगम है।
0: अर्चना देवगम है। आपका नाम?
3: मेरा नाम दीपांजलि गोप है।
0: हाँ।
4: मेरा नाम शुभांकर गोप है।
0: और
5: मेरा नाम जस्मीन होनागा है।
6: मेरा नाम जयंती पिंगवा है।
7: मेरा
0: चलिए। अच्छा, ये बताइए, अच्छा आप लोग स्कूल जा रहे हैं कि नहीं?
1: जा रहे हैं।
0: अच्छा, तो अच्छा तो हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, तो आप लोग के लिए, आप लोग के पास मेरे लिए क्या क्या है बताइए? कुछ सुनाने के लिए है?
4: कहानी
0: है, कविता है, और क्या क्या है? गाना नहीं है? कोई गाना नहीं गाएगा
4: जी? कस्तूरी
2: नहीं, नहीं, नहीं।
0: गाना आता है बेटा आपको? कैसे वाला गाना आता है बताइए? तो आता है, कौन गाना गाएगा? कस्तूरी अच्छा गाती है। जब छोटी सी थी तो ये बहुत गाना गाती थी
4: जी, डांस भी बहुत अच्छा करती थी।
0: अच्छा, लेकिन आज उन लोगों को गाना सुना है तो कैसा रहेगा?
4: बहुत अच्छा रहेगा
0: ना, मजा आएगा ना
2: जी? सबको ही गाएंगे तो अच्छा लगेगा।
0: नहीं, पहले आप सुनाइए, उसके बाद सबको ही सुनाएगा
4: आपका
2: कैंट में
4: सबको।
0: हाँ, आप विनती सुनाइएगा। अच्छा, सबसे पहले तो विनती सुनाना चाह रही है, तो विनती हम लोग सुन ले पहले
1: जी।
0: हाँ, चलिए चलिए चलिए चलिए सुनाइए
2: विनती। उसने सूरज चांद बनाया, उसने तारों को चमका, उसने धरती रच दी न्यारी, फल फूलों से रच दी क्यारी, पंछी को तो गीत सिखाए, सरसी नदियों को सरसाया, तितली है पंख सजाए, कैया से निद्दू दुआए, उसने मानव जन्म दिया है, जीवन का वरदान दिया है, उस ईश्वर को सदा मना, उसे स्नेह से शीश झुका।
0: वेरी गुड, ताली हो जाए। इतना सुंदर। अच्छा, विनती हम लोग सुनते हैं, करते हैं, और क्लास शुरू होने से पहले आप लोग क्या करते हैं बताइए? तो असेंबली में
4: सबसे पहले तो
0: प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना करना चाहिए ना? हाँ, प्रार्थना करना चाहिए ना, विनती प्रार्थना होता है
4: जी,
0: है ना? तो उससे हम लोग को क्या क्या मिलता है, क्यों करते हैं हम लोग?
4: अपने
0: अच्छे दिन के लिए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।

0: उसमें मन शुद्ध होता है। गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये तो हम लोग विनती सुन लिए। अब किसकी बार है, कौन सुना रहा है? चलिए सुने, कहानी सुनाएगी।
1: अच्छा, मैं कहानी सुनाऊंगी, कंजूस।
0: कंजूस, अरे कंजूस वाली कहानी, चलिए।
1: एक आदमी था, उसका नाम श्यामू था। एक दिन उसको नारियल की जरूरत पड़ गई। वह नारियल लेने बाजार पहुंचा। उसने दुकानदार से पूछा, एक नारियल कितने का? दुकानदार बोला, 1 रुपए का। श्यामू बोला, 1 रुपए में 2 दे दो ना। दुकानदार बोला, आगे मिलेंगे। वह आगे गया, वह 1 रुपए में 2 नारियल मिल रहे थे।
0: 2 नारियल मिल रहे थे, ठीक।
1: श्यामू बोला, 1 रुपए में 4 दे दो ना। दूसरा दुकानदार बोला, आगे मिलेंगे। वह आगे गया, वहाँ 1 रुपए में 4 नारियल मिल रहे थे। श्यामू बोला, 1 रुपए में 8 दे दो ना। तीसरा दुकानदार बोला, आगे नारियल का पेड़ है, वहाँ से तोड़ लो, कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। श्यामू पेड़ के पास पहुँचा। उसने पेड़ पर चढ़कर पहले कभी नारियल नहीं तोड़े थे। वह पेड़ पर चढ़ गया, खूब सारे नारियल तोड़ लिए। पर जब उतरने को सोचा तो डर लगने लगा।
0: बच्चों की सी मस्ती इसी के साथ, इसी कहानी कविताओं के साथ आज का हमारा नानी दुनिया का ये सफर यहीं समाप्त होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अंजो दीदी को दीजिए विदा। जय हिंद।

0: रुपए किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: वेक्टर जनित रोग, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
6: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
5: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
1: UPI के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
2: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जन धन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। झारखंड में 22 परीक्षाएं रद्द करने के मामले में हाईकोर्ट ने सहायक निदेशक सह वरिष्ठ वैज्ञानिक परीक्षा रद्द करने पर रोक से किया इनकार। सरकार और जेपीएसएससी से 2 सप्ताह में मांगा जवाब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रक्षाबंधन पर बेटियों की शिक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण का संकल्प लेने की अपील की। धनबाद में साइबर सुरक्षा अभियान को दूरसंचार विभाग और आईआईटी आईएसएम का मिलेगा सहयोग। साइबर साथी बनकर 1 साल तक लोगों को जागरूक करेंगे छात्र। और मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, कल दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद और कोल्हान के जिलों में भारी बारिश की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को सुलभ बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
3: केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में

0: चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। मंत्रालय ने घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और आपूर्ति में कृत्रिम कमी को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार देश भर में चीनी की कीमतों और स्टॉक पर कड़ी नजर रख रही है। राज्य में 22 परीक्षाओं को रद्द करने के सरकार के फैसले से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई की। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की एकल पीठ ने विज्ञापन संख्या 10/2025 के तहत सहायक निदेशक सह वरिष्ठ वैज्ञानिक की परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने राज्य सरकार और जेपीएससी को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता रोमा कुमारी की ओर से दायर याचिका की जानकारी अधिवक्ता नीतेश्वरी कुमारी ने दी। याचिका में जेपीएससी में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति से जुड़े मामले को अदालत के समक्ष उठाया गया है।
1: उनका जो सिलेक्शन हो रहा है दैट इज कम्प्लीटली बाय द गवर्नमेंट, वहाँ से शुरू हो रहा है। दैट्स वाई द पिटिशनर प्रेस फॉर इन दिस पिटिशन दैट कि एक हाई पावर सर्च कमेटी बनाया जाए जिसमें सीएम हो, नेता प्रतिपक्ष हो और सीनियर मोस्ट जज हो, वो डिसाइड करें कि वो चेयरमैन कब कौन बनेंगे।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रक्षाबंधन के अवसर पर राज्यवासियों को बधाई, शुभकामनाएं और जोहार कहा है। सोशल मीडिया पर जारी संदेश में उन्होंने कहा, रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और विश्वास के साथ परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भी पर्व है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं और बेटियों को शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने सभी से बेटियों की शिक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण का संकल्प लेने की अपील की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद जिले में चलाए जा रहे विशेष साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान को भारत सरकार के दूरसंचार विभाग और आईआईटी आईएसएम का सहयोग मिला है। ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब ने बताया कि आईआईटी आईएसएम के प्रशिक्षित छात्र साइबर साथी के रूप में अगले एक वर्ष तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को साइबर ठगी, फर्जी कॉल, संदिग्ध लिंक और ओटीपी साझा करने से होने वाले खतरों के प्रति जागरूक करेंगे।
2: रिक्रूट करते हैं और उनको ओरिएंटेशन देते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग, तो उनको एनसीआरपी 1930 चक्षु पोर्टल और संचार साथी पोर्टल और बाकी सारा जितना भी डिजिटल इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अवेलेबल किया गया है वो सारा एरियाज में उनको ओरिएंटेशन दिया गया है ताकि पब्लिक तक ये लोग जाके अपना जागरूकता शुरू कर सके।
0: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने खनिज और खनिज पदार्थ विकास एवं विनियमन कानून यानी एमएमडीआर कानून को देशहित में बताया है। उन्होंने हेमंत सरकार और उनके सहयोगी दलों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे एमएमडीआर कानून को लेकर राज्य की जनता को गुमराह कर रहे हैं।
3: एक्ट आखिर सरकार ने क्यों लाई, उसके पीछे का कारण भी हमें समझना पड़ेगा। एक्ट सरकार ने इसलिए लाई केंद्र सरकार ने, क्योंकि राज्य सरकार अगर मनमानी तरीके से अपना जो कर उपकर जो लगाएंगे तो स्वाभाविक रूप से खनिज की कीमतों में बढ़ोतरी होगी और उसका नुकसान उसी राज्य को होगा और उस राज्य में जो उद्योग धंधे है वो भी प्रभावित होंगे।
0: नेपाल में आई बाढ़ के बाद पलामू के हैदरनगर प्रखंड के बरवाड़ी गांव निवासी 50 वर्षीय महेंद्र विश्वकर्मा लापता हैं।

राज्य में अगले चार दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम केंद्र रांची ने 31 अगस्त तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवा को लेकर चेतावनी जारी की है। कई इलाकों में हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का अनुमान है। कल दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। झारखंड में 22 परीक्षाएं रद्द करने के मामले में हाईकोर्ट ने सहायक निदेशक सह वरिष्ठ वैज्ञानिक परीक्षा रद्द करने पर रोक से किया इनकार। सरकार और जेपीएसएससी से 2 सप्ताह में मांगा जवाब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रक्षाबंधन पर बेटियों की शिक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण का संकल्प लेने की अपील की। धनबाद में साइबर सुरक्षा अभियान को दूरसंचार विभाग और आईआईटी आईएसएम का मिलेगा सहयोग। साइबर साथी बनकर 1 साल तक लोगों को जागरूक करेंगे छात्र। और मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। कल दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद और कोल्हान के जिलों में भारी बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे हजारीबाग जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे हजारीबाग संवाददाता।
1: हजारीबाग में आयोजित जनजातीय गौरव उत्सव के समापन समारोह में सूबे के राज्यपाल संतोष गंगवार पहुंचे। इन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाली महिला उद्यमियों को बधाई देते हुए कहे,
2: भारत और वोकल फॉर लोकल जैसी पहलों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों, कारीगरों, छोटे उद्यमियों और महिला को आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ने पर विशेष बल दिया है। उनका यह दृष्टिकोण है कि भारत की विकास यात्रा तभी व्यापक और समावेशित होगी जब गांव, जनजातीय क्षेत्र, छोटे उद्यमियों और महिलाओं को प्रतिभा एवं क्षमता को अवसर मिलेगा।
1: हजारीबाग में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में 50,000 से अधिक खिलाड़ी और नमो फुटबॉल टूर्नामेंट में 1500 से अधिक टीम हिस्सा लेने की संभावना है। सांसद मनीष जायसवाल बताते हैं,
3: इस साल हम लोग का टारगेट है कि हम लोग 50,000 से ज्यादा खिलाड़ियों को मंच दें और साथ ही साथ नए नए गेम्स को भी और जोड़ें। तो कुछ दूसरा उद्देश्य है कि फिटनेस का जो मूवमेंट है, फिट आदमी फिट रहे, मेंटली फिट रहे, फिजिकली फिट रहे।
1: व्यवस्था सुधार यात्रा की शुरुआत 24 अगस्त को रामगढ़ जिले के नेवरा गाँव से हो चुकी है। यात्रा हजारीबाग पहुंचने पर छात्रों ने जोरदार स्वागत किया है। देवेंद्र नाथ महतो इस दौरान सरकार को चेतावनी देते हुए कहते हैं,
4: ये इसमें घर घर के लोग आ गया है। ये कोई झंडा का लड़ाई नहीं है, ये कोई बैनर की लड़ाई नहीं है, ये कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है। इसलिए मैं हजारीबाग का इस क्रांति का धरती यहाँ बहुत यहाँ के युवाओं में ऊर्जा है। छात्रों पर FIR करना बंद करे, छात्रों को डराने का प्रयास ना करे। अगर FIR करना है तो देवेंद्र नाथ महतो के ऊपर करो, लेकिन कोई भी निर्दोष छात्र को FIR करके डराना का प्रयास मत करिए, ये बहुत गलत हो रहा है।
1: खंड पुलिस द्वारा गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन को बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों तक पहुंचाने के लिए चलाया जा रहा है विशेष अभियान है। इस अभियान के तहत हजारीबाग पुलिस ने 65 मोबाइल फोन उनके असली मालिक तक पहुंचाया है। हजारीबाग SP अमन कुमार बताते हैं,
5: के लगातार अभी वर्तमान DGP मैम कलाशा मिश्रा मैम के नेतृत्व में भी पूरे राज्य में अभियान चलाया भी जा रहा है और हम लोग भी लगातार पिछले 3 महीने से अभियान चला रहे हैं और हर महीने ये अभियान चलेगा। वर्तमान में इस माह में कुल 65 मोबाइल बरामद किए गए हैं और कुछ मोबाइल परसों भी 25 तारीख को भी लोगों को दिया गया था जो आ पाए थे और बाकी कई लोग आज आए हैं। तो आज भी लगभग 40 के आसपास लोगों को मोबाइल वितरित किया गया है। अन्य मोबाइल कुछ लोग बाद में आके भी लेंगे जो कि हम लोग रखे हैं अपने।

0: बस ये अभियान लगातार चलता रहेगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी मोबाइल लोगों का खो रहा है या चोरी हो रहा है या फिर छिनता ही हो रहा है, किसी भी तरीके से जा रहा है, वो हम लोग बरामद करें।
1: राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खेलो इंडिया संवाद खेल की बात पीएम के साथ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हजारीबाग के संत कोलंबस कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विद्यार्थी, शिक्षक, पदाधिकारी और खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना।
2: अभी 20 से ऐसी विधाएं थी पहले जिसमें पार्टिसिपेशन ही नहीं था, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी कमी थी, और अब ये कमी को पूरा किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोग ज्यादा से ज्यादा विधाओं में जुड़े, तो काफी प्रेरणादायी था ये।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से हजारीबाग के छात्र और खिलाड़ी उत्साहित हैं। आने वाले दिनों में इसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेगा। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग।
3: अभी आप सुन रहे थे हजारीबाग जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

अभी आप सुन रहे थे जिले में आजकल आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से एफएम के 101.7 मेगाहर्ज पे। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद।

कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन है, सभी भाई बहन आपस में प्रेम का इजहार कर रहे हैं। बहन भाइयों की कलाई में राखी बांधकर धन्य हो रही हैं। साथ ही ये रिश्ता कायम रहे, यही ईश्वर से दुआएं भी मांग रहे हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में पहला गीत राखी का, जिसे हमने लिया है फिल्म चंबल की कसम से, लता मंगेशकर की आवाज़ है। इस गीत को सुनना चाहा है तुड़ी टोला चाईवासा से मदन ठाकुर, पुष्पा देवी, रोहित कुमार, रोहित ठाकुर, संगीता देवी, लाडू, हरी, खुशी कुमारी, रिया कुमारी, अर्पिता कुमारी। इसी गीत को सुनना चाहा है अमरा टोला चाईवासा झारखंड से गौरख प्रसाद गुप्ता, फूलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और अक्षत प्रसाद। सेंटोला चाईवासा से इसी गीत को सुनना चाहा है भोला राम मधुर, और बड़ा बाजार चाईवासा से सुनना चाहा विनोद कुमार पवन, मीना पवन। न्यू कॉलोनी निमडी से ठाकुर प्रसाद रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना राम, खुशी, खुशबू, अभिषेक, अनीश और मुन्ना। इसी गीत को सुनना चाहा है छोटा निमडी चाईवासा से बाबू राम, शांति देवी, रोहन कुमार, कोमल कुमारी, ऋतिक कुमार, और बड़ा निमडी चाईवासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार, शुभम कुमार। आप सबों की पसंद पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चंबल की कसम का ये खूबसूरत सा गीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम आपकी पसंद में। और अब अगला गीत हम आपको इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म डर से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की, गीत लिखा

है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है शिव हरि ने। इस गीत को सुनना चाहा है चांडिल ग्राम हारूडी से तुलसीदास महतो, मनोरमा महतो, कल्पना महतो, मनमोहिनी दीनबंधु महतो। गांव पोंडाकाटा से नरसिंह महली, साबन महली, रॉकी महली, कविता महली, सुहानी महली, हर्षमणि महली, नंदनी महली, संजय सोरेन, संजीव सोरेन, पार्वती महली पातूर और डॉली, आप सब। और आप हैं कुचाई तोड़ांगडी से विजय महतो, मुकेश महतो, दिलीप महतो, सुमन महतो, सूरज मणि महतो, रविंद्र महतो। कुचाई बिद्री से केपी सोय, दुर्गा मती सोय, रेशमी राजकुमारी, विशाल मुन्ना सन्नी। खरसमा से सुकरा नायक, मंजू नायक, जनेश्वर नायक, गौरव नायक, भाई एस देहुरी। और इसी गीत को सुनना चाहा है बड़ा बम्बो सुपाई साय से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा, प्रकाश ललित प्रधान, श्यामदेव नायक, सुदर्शन प्रामाणिक। चक्रधरपुर ग्राम गेलिया लोहर से बनमाली बेसरा, कोमल बासंती, शीत कुमारी और पूजा। अब सबों की पसंद पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म डर का ये गीत।

दिल कितना नादान है। इस कार्यक्रम का ये अगला गीत कुमार सानू की आवाज़ है, फैज़ अनवर की रचना, संगीत अनु मलिक के हैं। इस गीत को सुनना चाहा है कुचाई ग्राम इचाहतु से गोलाराम लोवादा लुद्री सोमनाथ पुर्तिमा लाल मुनि बिंजना लोवादा परिवार, लोसो दिकी से कोमल महतो प्रेमी महतो गोविंद जीतू साइमन महतो। इसी गीत को सुनना चाहा है मोहल्डिया सोनवा से नंदकिशोर महतो राधामणि महतो रविवारी बंदने दीपक संतोष राहुल बिट्टू आयुष गीतेश अनु तनु डिस्को महतो भाई नंदू महतो। मेन रोड सुनवा झारखंड से गुरुचरण नायक अनुसुईया नायक प्रियंका नायक देवाशेष नायक गुलशन नायक पिनाक पाणी प्रधान तनुश्री प्रधान नील पाणी प्रधान निक पानी प्रधान। इसी गीत को सुनना चाहा है दलाई के केला पदमपुर जिला सरायकेला से लक्ष्मण सोए बिरसा सोए राज सोए अनीता सोए मनीष पूनम सोए और समस्त सोए परिवार। और घाटशिला से इसी गीत को सुनना सहा है संतोष कुमार भगत श्रीमती बासंती भगत मृणाल कांति भगत चांदनी भगत मास्टर आयुष भगत मिस्टर संतोष आनंद। और इसी गीत को सुनना चाहा है ग्राम उधड़िया से नायडू महतो उषा महतो प्रिया महतो डॉली महतो तरुण महतो पंकज महतो और समस्त महतो परिवार। तो आप सभों की

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल,

0: ਸੈਨਾ ਸਵਯੰ ਹੀ ਘਟ ਪੜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ।
1: इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम आपकी पसंद में, और अब हम आपको अगला गीत सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर कुमार सानू की आवाज़ से हैं, फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस गीत को सुनना गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं जतिन ललित। गीत को सुनना चाहा है भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा। आदर्श नगर भलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, सौरव शर्मा। आदर्श नगर भलोट से आफे बेर्डी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमचे, वैष्णी डोमचे, चंचल डोमने और अर्जुन गविनकर, धीरज सब्बासेरे। इसी गीत को सुनना चाहा है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जैतक विरक, मीका विरक। आप सबों की पसंद पे मैं हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का ये गीत।

और अब कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये खूबसूरत सा गीत। किशोर कुमार की आवाज़ है, आनंद बख्शी के बोल है, आरजी बर्मन के संगीत है। इस गीत को सुनना चाहा है भाटापाड़ा दत्तनेगी छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सफुद्दीन डोम, कुमारी वनी डोम, कुमारी डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा से वशीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्लाह आसमा बेलदार, सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा। इसी गीत को सुनना चाहा है पटेल नगर भरोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया। गांव नारायणपुर आमदा से नायडू महतो, खेतु मोहन साहू, कैलाश बाबा, उषा महतो, प्रिया महतो, डॉली महतो, तरुण महतो। आप सबों की पसंद पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये खूबसूरत सा गीत।

हरे रामा हरे कृष्णा इस फिल्म के, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी पसंद अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं और अब प्रस्तुत है फरमाइशें फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

कार्यक्रम रजनीगंधा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। इस कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म कर्मा से। आवाजें हैं कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज और साथियों की। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनना चाहा है राजनाथ गांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा, बरेडी से हुकुम कर्मकार, सुनीता कर्मकार, हार्दिक कर्मकार, प्राची कर्मकार, तनु कर्मकार, जिल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी, सरायकेला पहाड़पुर से शिवम, शिवाजी मुंडरी, शुरुमणि मुंडरी, हीरामणि मुंडरी, हेमंती मुंडरी, डोबरो मुंडरी, साजन मुंडरी, सिद्धेश्वर मुंडरी, पाड़ापुर शिवाजी, डोबरो मुकेश, कुशल मुंडरी, जामुन सिंह मुंडरी, जानुम सिंह मुंडरी, सिद्धि बोस, सोना बाबू सोना, एफएम शिवा मुंडरी। इसी गीत को सुनना चाह है इंदिरा बिहार रायगढ़ से वसीम अकरम नूरजहाँ, डब्लू अकरम नूरजहाँ, वली अकरम नूरजहाँ, अल्लाह अकरम नूरजहाँ। अगला गीत सुनने के लिए फरमाइश भेजा है शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिस श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशी लाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। आप सबों की फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कर्मा का ये गीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इस विराम के बाद अब अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म दिल दीवाना से। आवाज़ है उदित नारायण की। इस गीत को सुनना चाहा है टाटा नगर किताड़ी से चंद्रमोहन पात्रो, चंद्रावती पात्रो, निखिल पात्रो, उजाला पात्रो, युवराज, शिवान और बिराज। आदर्श कॉलोनी सरायकेला से निकिता, बिट्टू, विक्की, मिंटू, उत्पला, समीर, रानी, जितेन, राधा दीदी और शिवम। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है पंचशील रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुर जिला बुलढाणा से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर, गोपाल पाटिल। आप हैं महादेव घाट अमलेश्वर से डुमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, उजाला सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, यांस ठाकुर। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धा नंद आर्य, अभय नंद आर्य, वर्मा नंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है हमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति, सत्या साहू, प्रतीक कुमार। आप सबों की फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल दीवाना का ये गीत।

और अब अगला गीत सुनते हैं अलका याग्निक, कुमार सानू की आवाज़ों में, समीर के बोल हैं, संगीत नदीम श्रवण के हैं और फिल्म का नाम है दीवाना। इस गीत को सुनना चाहा है दौलत बाग मुरादाबाद से।

आप सुन रहे हैं शुरदा आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से फरमाइसी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा दोस्ताना। इस कार्यक्रम का ये अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, आनंद बख्शी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत है। इस गीत को सुनना चाहा है दंतरेकी से भागवत वर्मा, लेबई से गुलाबदास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, मावली सिंगारपुर से सालिक पुजारी। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, करनाल से जग्गी दुआ। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिरे, राधिका गजभिरे, बेबी अंशिका, तन्मय गजभिरे। आप हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही महराज जहां, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर पांधा, गोलू काकू, जी एस रामगढ़िया। आप सबों की फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दोस्ताना का ये खूबसूरत सा गीत।

दूर गगन की छाँव में इस गीत को अब हम आपको सुनवा रहे हैं। किशोर कुमार की आवाज़ है। सुनना चाहा है कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक, वंश बत्ता। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है नारायण

मन की, छत्तीसगढ़ से नारायण खांडे, रजनी खांडे, तुषार, समीर, मनकरण, संतन, सुरेश, दिनेश, रुपेश खांडे, और जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, अंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया, गांव कीता सरायकेला से राधा कृष्ण गोप, अमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक गोप, आशीष गोप, सुमित गोप, शुभम, विक्की, राजू, विनोद, गीता और गीता देवी, रीता देवी, सुनीता देवी, अनामिका कुमारी। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है औरंगाबाद से राजेश सामले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश। आप सबों की फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म दूर गगन की छाँव में।

और अब इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म छोटी बहना का ये गीत, लता मंगेशकर की आवाज़ है और इस गीत को सुनना चाहा है जामठी वरुण, अमरावती से मुकेश दिनकर कासेलकर, बीमल विशाखा कासेलकर। और इसी गीत को सुनने के लिए

फरमाइश भेजा है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला भाई, नशीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा सालिया, सोयब खान, पोतरा मुज्तवा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, बाबा कुटी उफरा पाटन से प्रेम साहू, यमुना साहू, सहाबर टाउन जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है कृष्णा नगर टीवी टावर सेमिनरी हिल्स नागपुर से नाना डोंगर दिवे, रमाताई डोंगर दिवे, सीमाताई डोंगर दिवे, रीमाताई डोंगर दिवे, दीक्षाताई डोंगर दिवे, राहुल डोंगर दिवे। इसी गीत को सुनना चाह है आपका बरेली कैंटर रेलवे के इनके पास से विनेश कुमार, रागिनी श्रीवास्तव और मुस्कान, और आप हैं भलोट कैंप पंजाब से सतीश मिंगलानी, सीमा शाइना, विशाल मिंगलानी, सुप्रिया, अनमोल, धर्मपाल, महावीर साहू, रमेश मिंगलानी। आप सबों की फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म छोटी बहना का ये गीत।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार संध्या में क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के वेलवन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकश से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से कोई संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाकों से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
1: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
0: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस उड़ान में डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रेकी टीम के 11 सदस्य भी शामिल हैं। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिम चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भोटे कोशी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण त्रिशूली क्षेत्र के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का आदेश दिया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की और हर संभव सहायता देने की पेशकश की।
2: They told me about exactly what happened to them, how the floods came.
3: उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ असल में क्या हुआ था और बाढ़ कैसे आई थी। वे बहुत आभारी हैं, खासकर नेपाल सेना के, जिन्होंने उस बेहद मुश्किल जगह से निकालने के लिए इतना बड़ा प्रयास किया। इसलिए अभी हमारा प्रयास लोगों की राहत और बचाव कार्यों में नेपाल की मदद करने का है। आज सुबह ही मैंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की है। हमने उन्हें कई तरह की सहायता की पेशकश भी की है।
2: We have given them range of support offers.
0: सिक्किम सरकार नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार वहां फंसे सिक्किम निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठा रही है।
4: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांगोले ने सिक्किम के 8 निवासियों से फोन पर बात की। जानकारी मिली है कि सभी 8 लोग सुरक्षित हैं। फंसे हुए सिक्किम का निवासियों के लिए सिक्किम सरकार ने कल नेपाल फ्लैश फ्लड टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स को स्थिति से प्रभावित सिक्किम के नागरिकों के लिए आवश्यक सहायता के समग्र समन्वय, निगरानी और सुविधा प्रदान करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। टास्क फोर्स भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बनाए हुए है और संबंधित सिक्किम निवासियों तथा उनका परिवारों के साथ भी लगातार संपर्क में है। मोइनक चटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है। कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है। आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला? मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
6: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जन धन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जन धन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेफ के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
8: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं।
9: पाक्षिक कोटा के अंतर्गत चीनी मिलों को आवंटित मात्रा से कम 40% चीनी पहले सप्ताह में और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। मंत्रालय के अनुसार नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। अक्टूबर महीने के दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन होने की उम्मीद है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की भी अनुमति दी है, जिससे नए सीजन का उत्पादन जल्द से जल्द घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी का उत्पादन लगभग 45 लाख रहने की उम्मीद है, जिससे घरेलू खपत के लिए चीनी की अतिरिक्त आपूर्ति में पर्याप्त वृद्धि होगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल ये झूठा प्रचार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार किसानों के हितों के खिलाफ समझौते कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कृषि मंत्री ने विशेष रूप से पंजाब सरकार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू न करने के लिए जिम्मेदार ठहराया।
10: भारत सरकार ने योजना बनाई किसानों की आमदनी बढ़ाने की, आय बढ़ाने की। हम पंजाब में भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी भ्रष्ट सरकार के कारण हमारी कोशिशें सफल नहीं हो रही। पंजाब के कृषि के लिए एक नया रोड मैप टॉप के साइंटिस्टों की टीम बनाएगी। हम पंजाब की कृषि की दशा बदलेंगे, दिशा बदलेंगे और किसान की हालत बदलेंगे।
0: परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800184747 के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव ईमेल examreformstaskforce@dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: परीक्षा के संचालन, सुरक्षा, जवाबदेही और संस्थागत व्यवस्थाओं के अलावा परीक्षा में अनुचित साधनों का पता लगाने, रोकथाम करने और उनके समाधान सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों के बारे में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। कार्यबल संस्थागत प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने, परीक्षा की निष्पक्षता, उपयुक्त तकनीकों को लागू करने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने के उपायों की जाँच कर रहा है। इसका उद्देश्य मजबूत, सुरक्षित, पारदर्शी, न्यायसंगत और भविष्य के लिए तैयार सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली विकसित करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं के सुगम संचालन और प्रशासन से संबंधित व्यापक सुधारों की जांच के लिए प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकणी की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उत्तर कुंजी ugcnet.nta.nic.in पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इस महीने 60 नवजात शिशुओं की मौत की खबर पर जारी किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के सरकारी स्कूल में पिछले 2 वर्षों से 6 से 8 कक्षा के विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन नहीं परोसे जाने के मामले में मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने संज्ञान लेते हुए 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं। ये आकाशवाणी है। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधियों में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। हालांकि इस अवधि में विकास की गति जून के संशोधित स्तर से कम रही। एक रिपोर्ट।
11: जून में आईआईपी वृद्धि दर 7.3% से बढ़कर 8.8% पहुंच गई थी, जो यह भी संकेत देती है कि जुलाई तिमाही में प्रवेश करने वाली औद्योगिक गति शुरू में अनुमान से अधिक मजबूत रही। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार आईआईपी सूचकांक में सबसे अधिक महत्व रखने वाले विनिर्माण क्षेत्र में जुलाई में 7.3% की वृद्धि हुई, जबकि बिजली और गैस की आपूर्ति में 8.7% की वृद्धि दर्ज हुई। जल आपूर्ति, सीवरेज और अपिष्ट प्रबंधन में 7.4% की वृद्धि हुई। हालांकि खनन क्षेत्र पिछले महीने 0.9% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए पिछड़ गया। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एशविल में श्रीमती सीतारामन की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा आज पारंपरिक छड़ी मुबारक की रस्मों के साथ संपन्न हो गई। ये यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। इस वर्ष 4,80,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। भारत के विल्वन सेंथिल कुमार आज रात बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकश से खेलेंगे। सेमीफाइनल में कल सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया था। नॉर्वे के सम्राट हेराल्ड पंचम का आज ओस्लो में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की शुरुआत में नॉर्वे की यात्रा के दौरान सम्राट हेराल्ड पंचम से अपनी मुलाकात को याद किया। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हुई। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए 3री उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी, मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के वेलवन संथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकट से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम मनोज सिंह राणा विद न्यूज एट 9। Headlines: India sends third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance to flood-hit Nepal. External Affairs Ministry says 320 Indian nationals remain uncontactable. Death toll in devastating Nepal-Tibet flash floods rises to 547. Over 1,500 people remain missing on both sides of the border. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan tomorrow. Government measures improve market availability of sugar, ensure faster movement, ex-mill sugar prices fall by around 20%. India's index of industrial production records growth of 6.7% in July this year. And India's Belawal Senthil Kumar to take on Hungary's Balázs Farkas in the final of PSA Budapest Squash Open tonight. India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu. External Affairs Minister Dr. H.J. Shankar informed this in a social media post. The minister said that the assistance includes portable generator sets, dignity kits, food packets and water purification tablets. Dr. Jaishankar said that an 11-member team of doctors, paramedics and recce team for tunnel rescue operations is also on board. He also reiterated India's support to Nepal's ongoing relief and rescue efforts. Earlier, India had sent more than 47 tons of emergency relief supplies in 2 flights. Meanwhile, the death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 547, with 1,545 people still missing as rescue teams search riverbanks and isolated settlements for survivors and bodies swept downstream. Authorities have evacuated more than 800 people from affected districts and issued fresh warnings after a 5.1 magnitude earthquake struck southwestern China, raising fears of further flooding. India has launched a major rescue and relief operation. The Ministry of External Affairs has said that 320 Indian nationals remain uncontactable or are reportedly missing following the flash flood tragedy on Wednesday. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said around 100 people of Indian origin holding both nationalities also remain uncontactable. Addressing the media in New Delhi today, Mr. Jaiswal said that 63 Indian nationals working at the Shuli 1 hydropower project were rescued from the affected area. He said another 96 Indian nationals who were stranded on the Chinese side have safely crossed into Nepal by land and efforts are underway to evacuate them. Mr. Jaiswal informed the media that 21 Indian nationals from Tamil Nadu who had reached Kathmandu from the flood-affected area yesterday have arrived in New Delhi this afternoon.
1: 21 Indian nationals who had yesterday arrived in Kathmandu from the area that was affected by this flood, they have today landed in Delhi. These 21 Indian nationals, they are from Tamil Nadu and they arrived by Indigo flight which just landed in Delhi. Yesterday, our ambassador had met them in Kathmandu and inquired about their well-being.
12: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today met the group of 21 pilgrims belonging to Tamil Nadu in New Delhi who were rescued from Nepal. Later talking to the media, he thanked the government of Nepal and its army for the rescue efforts.
2: They told me about exactly what happened to them, how the floods came, and they were very thankful, particularly to the Nepal army, which made this great effort to get them out of that
13: a very difficult place where they were. So right now our effort is on supporting Nepal in the relief, in the rescue of people. So even today I spoke in the morning to the Nepal foreign minister. We have given them a range of support offers.
12: On the Chinese side, External Affairs Ministry spokesperson Jaiswal said that around 400 Indian nationals are safe and in contact with their families. He said that the Indian embassy in Beijing is coordinating with local authorities, team leaders and travel agents to facilitate their evacuation. Mr. Jaiswal said that the government has set up a control room in the Ministry of External Affairs, which is working round the clock. He said Indian embassies both in Kathmandu and Beijing have also set up 24/7 health lines.
1: Chinese side, we have 400 Indian nationals. They are safe. They have been in touch with their family because phones, etc., I'm told, is working on that side. Our embassy has been in touch with several of them, in fact, with their team leaders and their travel agent. Many of their family members also contacted us through the helpline numbers that our embassy is running right now in Beijing.
12: Prime Minister Narendra Modi will embark on a four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan tomorrow. In the first leg of the trip, Mr. Modi will reach Uzbekistan's capital, Tashkent, tomorrow. During the visit, Prime Minister Modi and President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, will review cooperation in different sectors. More from our correspondent.
14: India and Uzbekistan have relations that go back to ancient history. India was one of the first countries to recognize the state sovereignty of Uzbekistan after the latter's independence. India and Uzbekistan elevated their relationship to a strategic partnership in 2011. Since then, bilateral relations have expanded substantially across a wide range of areas. The Prime Minister's upcoming visit will reaffirm the close, multifaceted and growing strategic partnership between India and Uzbekistan. Discussions are expected to cover a wide range of areas of mutual interest and identify new avenues for strengthening bilateral cooperation. This engagement will provide an opportunity to highlight the long-standing cultural ties between India and Uzbekistan, as well as important role of academic and people-to-people exchanges in further strengthening bilateral relations. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Tashkent, Uzbekistan.
12: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts.
15: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alerts and on Instagram at AIR News Alerts. Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News Alerts and visit newsonair.gov.in for the latest updates.
12: Welcome back. The government has said that there is no shortage of sugar in the country and all necessary measures will be taken for adequate availability of sugar at reasonable prices. The Consumer Affairs Ministry said that ex-mill sugar prices have declined by around 20% in recent days, while retail sugar prices have also started coming down. The ministry said it has taken a series of proactive measures to ensure adequate availability of sugar and prevent artificial tightening of supplies in the domestic market. The government has been closely monitoring sugar prices, stocks and movement across the country. Our correspondent reports that government has decided to introduce a fortnightly sugar allocation system from next month, replacing the existing monthly quota system to ensure that sugar reaches the market in a timely manner.
16: Under the fortnightly quota, sugar mills will be required to sell at least 40% of the allocation in the first week and remaining quantity in the succeeding week. The ministry said sugar cane crushing for the new season will commence from 15th of October and it is expected that more than 10 lakh tons of sugar will be produced during the month. The government has also permitted sugar mills to

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम महफिल में, और अब अगली गजल हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में।

हम आकाशवाणी के चायवासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पे। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। आज इस कार्यक्रम में हम आपको भाई बहन का पवित्र रिश्तों का पर्व राखी पर चंद गीत सुनवाने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ राधा, नमस्कार और राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। पहला गीत फिल्म राखी से हमने लिया है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म राखी का ये खूबसूरत सा गीत। जी हाँ श्रोताओं, कच्चे धागों से बंधा ये प्यार भाई बहन का अटूट रिश्ता है। भाई का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता, वह दूर भी हो तो गम नहीं होता। सुंदर सा ये रिश्ता पवित्र बंधनों में सिमटा रहता है। बहुत सुंदर, भाई बहन के लिए दुआ मांगता है, दोनों भाई बहन एक दूसरे के लिए मंगल कामना करते हैं। आज के इस खास मौके पर आप सुन रहे हैं राखी विशेष पर खूबसूरत गाने, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अनपढ़ का गीत लता मंगेशकर के स्वर में।

रक्षाबंधन, भाई बहन के प्रेम, अटूट विश्वास और सुरक्षा के संकल्प का एक बहुत ही पवित्र और पावन पर्व है। रक्षाबंधन दो शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा यानी सुरक्षा, बंधन यानी धागा या रिश्ता, उस रिश्ते को सुरक्षा प्रदान करना। जी हाँ, दोनों भाई बहन रिश्ते को सुरक्षा प्रदान करते हैं अपने प्रेम और अटूट विश्वास के जरिए। तो आइए सुनते हैं बेईमान फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत मुकेश और लता मंगेशकर के स्वर में।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। आज इस कार्यक्रम में हम राखी पर विशेष गीत आपको सुनवा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बहन बांधती है और उनकी लंबी उम्र सुख समृद्धि की ईश्वर से प्रार्थना करती है। भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं और हर परिस्थिति में साथ रहने का, रक्षा करने का ये वादा करता है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म तिरंगा का गीत साधना सरगम की आवाज़ों में। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग में राखी विशेष पर कार्यक्रम। अगला गीत अंधा कानून से हमने लिया है। आशा भोसले के सुर कुमार की आवाज़ है, आनंद बख्शी के बोल है, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के।

राखी का त्यौहार जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। ये बंधन ना टूटने वाली बंधन होती है जिसमें भाई बहन का प्यार होता है। तो आइए, इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं माँ बेटी का ये गीत, अनुराधा पौडवाल और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में।

इस गीत के साथ ही श्रोताओं का एक क्रम शुरू के रंग अब यहीं पे समाप्त होता है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे, समाचार क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक आई बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाके से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
1: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
0: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित

0: सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल यह झूठा प्रचार कर रहे हैं। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधि में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज भारत में यूरोपीय संघ के निवर्तमान राजदूत हर्वे डेल्फिन को विदाई दी। डॉक्टर जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत बनाने में निवर्तमान राजदूत के योगदान की सराहना की। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हुई। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेलवन सेल्थिन कुमार आज रात पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकस से खेलेंगे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar informed this in a social media post. The minister said that the assistance includes portable generator sets, dignity kits, food packets and water purification tablets. Dr. Jayashankar said that an 11-member team of doctors, paramedics and Reiki team for tunnel rescue operations is also on board. He also reiterated India's support to Nepal's ongoing relief and rescue efforts. Earlier, India had sent more than 47 tons of emergency relief supplies in two flights. Meanwhile, the death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 547, with 1,545 people still missing as rescue teams search riverbanks and isolated settlements for survivors and bodies swept downstream. Authorities have evacuated more than 800 people from affected districts and issued fresh warnings after a 5.1 magnitude earthquake struck southwestern China, raising fears of further flooding. India has launched a major rescue and relief operation. The Ministry of External Affairs has said that 320 Indian nationals remain uncontactable or are reportedly missing following the flash flood tragedy on Wednesday. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said around 100 people of Indian origin holding other nationalities also remain uncontactable. Addressing the media in New Delhi today, Mr. Jaiswal said that 63 Indian nationals working at Trishuli 1 hydropower project were rescued from the affected area. Mr. Jaiswal informed the media that 21 Indian nationals from Tamil Nadu who had reached Kathmandu from the flood-affected area yesterday have arrived in New Delhi this afternoon. External Affairs Minister Dr. Jaishankar met the group of 21 pilgrims belonging to Tamil Nadu in New Delhi who were rescued from Nepal. Later, talking to the media, he thanked the government of Nepal and its army for the rescue efforts. On the Chinese side, External Affairs Ministry spokesperson Jaiswal said that around 400 Indian nationals are safe and in contact with their families. Mr. Jaiswal said that the government has set up a control room in the Ministry of External Affairs, which is working round the clock. He said both Indian embassies in Kathmandu and Beijing have also set up 24/7 helplines. Prime Minister Narendra Modi will embark on a four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan tomorrow. In the first leg of the trip,